सखियों ने घूंघट खोले हर फूल पे भौरा डोले। मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी दिल ने फिर याद किया। मेरे बेचैन दिल को चैन तूने दिया शुक्रिया।

मेरे बेचैन दिल को चैन तूने दिया शुक्रिया। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। फ्रॉम द मूवी मन की आंखें से हम पेश करते हैं मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं।

मन की आंखें इसी फिल्म से हमने पेश किया है सुनने वालों। दिल कहे रुक जा रे रुक जा मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे और म्यूजिक दिए हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी। देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं द टाइटल फ्रॉम द मूवी प्यार ही प्यार।

देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार। सुनने वालों, एक गीत हम चलाने वाले हैं आप सभी के वास्ते, और फिल्म का नाम है मर्यादा। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं जुबा पे दर्द भरी दासता चली आई।

अभी आप सुन रहे थे जुबा पे दर्द भरी दास्ता चली आई, बाहर आने से पहले हिजा चली आई। द मुएत यानी द मायती मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। भूले से मोहब्बत कर बैठा ना दा था बेचारा, दिल ही तो है

भूले से मोहब्बत कर बैठा, नादा था बेचारा, दिल ही तो है। फ्रॉम द मूवी दो रास्ते से हम पेश करते हैं दो रंग दुनिया के और दो रास्ते।

मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में वो मुझको मिल सके ना सुबह के उजालों में। अभी आप सुन रहे थे द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी हसरत छुपी रहे। फ्रॉम द मूवी इज्जत से हम पेश करते हैं सुनने वालों

क्या मिलिए ऐसे लोगों से, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में, फ्रॉम द मूवी इज्जत से हमने पेश किए हैं सुनने वालों। धीरे धीरे मचल ऐ दिले बेकरार, कोई आता है।

0: चलो मुंह हाथ धो लो, याद नहीं आज दावत पे जाने।
1: अभी तो बहुत वक्त है, गीत अधूरा रह जाए तो अच्छा नहीं होगा।
0: मुझे बहुत दुख होता है, मैंने अच्छी तरह से गाना सीखा।
1: जितना सीखा उतना ही बहुत है मेरे लिए अरुणा, उम्मीद से ज्यादा मिल जाए तो ऐसा मालूम होता है जैसे आदमी उसके लायक ही।
0: मैं बताऊं ऐसी बातें तुमने कहां से सीखी?
1: कहां से सीखी?
0: सीखी भी नहीं, चुराई है मेरी बातें से।

मेरा साया साथ होगा, अभी आप सुन रहे थे तू जहाँ जहाँ चलेगा। जरा सा हम देखे तो चंद्रमुखी है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से द टाइटल हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते।

नए निका चैन चुरा कर ले गए, कर गई नींद हराम, चंद्रमा का मुख था उसका, चंद्रमुखी था नाम। मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे, सुनने वालों, महेंद्र कपूर जी और आशा जी आपको मिलकर सुनाने वाले हैं, इन हवाओं में इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे।

अभी आप सुन रहे थे इन हवाओं में इन फिजाओं में, आशा जी के साथ में महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले थे, दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार करे। फ्रॉम द मूवी वक्त से हम पेश करते हैं एक बार फिर से आशा जी के साथ में महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार करे। फरार है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं जिंदगी क्या है यारों की बारात।

फ्रॉम द मूवी फरार से हमने पेश किए हैं द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में जिंदगी क्या है, यारों की बारात, सहमों की बारात। एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले,

एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले, अभी आप सुन रहे थे द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में फ्रॉम द मूवी जिंदगी और तूफान। सुनने वालों, एक बार फिर से फिल्म फरार से हम पेश करते हैं एक बहुत सा सुंदर गीत है, ये संसार है एक नदिया। क्षमा करना सुनने वालों, यानी फरार नहीं, रफ्तार है फिल्म का नाम। चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे संसार है एक नदिया फ्रॉम द मूवी रफ्तार से हमने पेश की है मुकेश जी की आवाज में। सुनने वालों, बोल रे कठपुतली डोरी कौन संग बांधी, लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी कठपुतली से हम पेश करते हैं।

बोल रे कठपुतली डोरी कौन संग बांधी, फ्रॉम द मूवी कठपुतली से हमने पेश किए हैं। लता जी आपको सुनाने वाले थे। सुनने वालों, तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया, मैं हो गई किसी की कोई मेरा हो गया। लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी उजाला से। चलिए मिलकर सुनते हैं।

मेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी उजाला से हमने पेश किया है। सुनने वालों, लता जी आपको सुनाने वाले थे। दिन सारा गुजारा तोरे अंगना, फ्रॉम द मूवी जंगली से आप सुनेंगे लता जी के साथ में। मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं।

दिन सारा गुजारा तोरे अंगना। अभी आप सुन रहे थे लता गीजी के साथ में, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी जंगली से हमने पेश किए है। सुनने वालों, आ तू आ जरा दिल में आ, फ्रॉम द मूवी फूलों की सेत से हम पेश करते हैं। लता जी के साथ में मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं।

फूलों की से छह फिल्म का नाम इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। लता जी के साथ में मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे आ तू आ जरा दिल में आ। अय्या सुकू सुकू

बेबसी सहमी सहमी हर घड़ी बिन चाहत क्या जिंदगी जीता मैं किस लिए अय्या करूँ मैं क्या सुकू सुकू हो गया दिल मेरा सुकू।

क्या करूँ मैं क्या सुकू सुकू अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों फ्रॉम द मूवी जंगली से हमने पेश किए हैं मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं, निकला ना करो तुम सज धज के। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी राजकुमार से हम पेश करते हैं सुनने वालों, और ये गीत खास करके मांग की ये है मून जी बोध जी अपनी प्यारी प्यारी प्रीतमा माला जी के वास्ते बहुत बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ।

का नाम है सीमा। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं जब ये दिल उदास होता है जाने कौन आस पास होता है। मोहम्मद रफी जी के साथ में शारदा जी आपको सुनाने वाले हैं, चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे, जब भी ये दिल उदास होता है जाने कौन आस पास होता है, शाडा के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी सीमा से हमने पेश किए हैं। सुनने वालों, हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को, सरस्वती चंद्र है फिल्म का नाम। चलिए इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मुकेश जी की आवाज़ में।

हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को। दमायती मुकेश जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी सरस्वती चंद्र से हमने पेश किया है। सुनने वालों, मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। कन्हैया है फिल्म का नाम। एक बार फिर से मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं।

मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। अभी आप सुन रहे थे नमायती मुकेश जी की आवाज़ में, फ्रॉम द मूवी कन्हैया से हमने पेश किए हैं। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, फिल्म का नाम है हरियाली और रास्ता।

0: से
1: तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ। फ्रॉम द मूवी हरियाली और रास्ता से हमने पेश किए हैं सुनने वालों, गायत है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं दिन ढल जाए हाय रात न जाए तू तो ना आए तेरी याद सताए। मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं।
2: लेकिन जब उतरता है

दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तू तो ना आए तेरी याद सताए। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे, फ्रॉम द मूवी गाइड से हमने पेश की है। सुनने वालों, हमने जो देखे सपने सच हो गए वो अपने, परिवार है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते लता जी के साथ में महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं।

हमने जो देखे सपने सच हो गए वो अपने भी आप सुन रहे थे। फ्रॉम द मूवी परिवार से हमने पेश किए हैं सुनने वालों, और आपको सुनाने वाले थे लता जी के साथ में महेंद्र कपूर जी। तेरे दिल में जरा सी जगह अगर मिले, मोहम्मद रफ़ी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी अनोखी अदा।

0: राकेश नमस्ते, ये लव लेटर आपने मेरे नाम लिखा है?
1: लाइए ना।
0: ये अब सीधे अंकल के पास ही मिलेगा।

मेरे दिल में जरा सी जगह अगर मिले, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी अनोखी अदा से हमने पेश किए हैं सुनने वालों। तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे, मोहम्मद रफी जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी रखवाला से।

दिल ने दिल से न जाने क्या कहा, तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी रखवाला, से हमने पेश किया है मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में। लता जी आपको सुनाने वाले थे तुमने मुझे देखा होकर मेहरबा, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी तीसरी मंजिल से आप सुनेंगे।

हमने मुझे देखा होकर मेहरबा तीसरी मंजिल से हमने पेश किया है सुनने वालों, फ्रॉम द यानि मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। छुप गए सारे नज़ारे, ओए क्या बात हो गई। मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी दो रास्ते से।

चुप गए सारे नजारे और क्या बात हो गई। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी दो रास्ते से, लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा।

मित्रों, मैं आपको इस भजन के माध्यम से कुछ बतलाना चाहता हूँ। जो लोग मंदिर जाते हैं, मतलब सभी नहीं, कुछ लोग जो मंदिर जाते हैं, तीर्थ करते हैं और कहाँ कहाँ ये पूजा स्थल पर जाते भी हैं, तो उन लोगों से हम ये कहना चाहता हूँ कि इस भजन को सुनिए। अगर आप इसी श्रेणी में पढ़ते हैं, लागू हैं, तो जरूर सुधर जाइए। और अगर आप इस लाइन में नहीं हैं, तो आगे चलते रहो, चलते रहो।

मित्रों, आत्मविश्वास, भरोसा अपने आप पर और दृढ़ निश्चय, प्रेरणा और समर्पण के साथ अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। और यदि आपको विश्वास है कि सभी चीज़ों संभव है और आप इसके लिए प्रयास करते हैं तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। आप लगभग कभी नहीं गिरेंगे या निराश होंगे।

साथियों, भरोसा एक रबर यानी एक इलास्टिक की तरह है जिसे दो लोग खींचते हैं। जब तक दोनों पकड़े रहते हैं तब तक वे खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनमें से एक चला जाता है तो दूसरे को भयानक दर्द होता है। इसलिए ये अति अधिक सलाह दी जाती है मित्रों कि किसी पर भी भरोसा ना करें या उससे कोई वादा ना करें, और करना है तो समझ बूझ कर जानो किस से वादा और किस पे भरोसा करते हैं। मित्रों, क्या आप कृपया इसे सोच समझ कर अपने जीवन में लागू करेंगे?

साथियों, जब हम अपने चारों ओर निरंतर अशांति और प्रजातीय घृणा देखते हैं तो शांति के बारे में बात करना भी व्यर्थ लगता है। और ये संतोष की स्थिति है, वे हमें शांति का एक निजी स्रोत खोजने के लिए मजबूर करता है, ताकि हम इससे शांति पाकर हमेशा शांति से रह सकें। फूलों को देखो मित्रों, वो भी लगातार परेशान परिस्थितियों में रहते हैं। उन्हें इस भौतिक संसार का प्रदूषण अपने साथ ले जाना पड़ता है, लेकिन वे जहां भी पाए जाते हैं, चाहे वे व्यस्त सड़क के किनारे, कांटों के बीच, दलदल के पास हो, या कभी कभी गोबर के ढेर पर भी, वो सुगंध के साथ हमेशा सुंदर खिलते रहते हैं और अपनी खुशबू फैलाते रहते हैं। तो मित्रों, फूलों का प्रयोग हर अवसर पर किया जाता है। फूल शांति के प्रतीक है, ये उसका स्वभाव है। और साथियों,

शांति की स्थिति में रहकर हर जगह अपनी खुशबू फैलाएं। मित्रों, कोशिश करना, कोशिश करते रहना। ऐ मेरे कृष्णा, मेरे अंतर्यामी, तुझसे अब क्या कहूं मैं। सबों से दुखी और हार कर अब आकर तेरे पास बैठा हूं।

एक बार फिर यहाँ से आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है। इस बार यहाँ से आपके स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम आरंभ करने को जा रही हूँ। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। आकाशवाणी रेडियो फाउन के सुनने वालों, प्रिय आत्माओं, प्रिय भक्त जनों, स्वीकार कीजिए सेविका शांता के प्यार भरे नमस्कार। आज से बेहतर कुछ भी नहीं, आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। सभी को हार्दिक से स्वागत है स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम में। आरंभ को करने जा रही हूँ देन हाखलेस कफेन फोर पार्क से। देन हाखलेस कफेन फोर पार्क से बाउ एंड ऑनरहाउस बद्रेव, बाउ एंड ऑनरहाउस बद्रेव, इनका मालिक जो है श्रीमान हरिदत्त रोहित देव नारायण जी, इनके तरफ से हम यहाँ से आरंभ को करने जा रही हूँ हनुमान चालीसा।

जय जय हो। उदित नारायण जी की आवाज में यहाँ से हमने श्रवण की है। आज के प्रोग्राम में हनुमान चालीसा के साथ आरंभ किया गया है। जो शुभ कार्य आज कर सकते हो, जो शुभ कार्य आप आज कर सकते हैं, उसे कल पर ना छोड़ो। कौन जाने कल कब आएगा, आए भी तो ना जाने उस समय परिस्थितियाँ कैसी होगा, उस समय परिस्थितियाँ कैसे होगा। तो जो आज करना है तो अभी कर लो, जो अभी करना है तो अभी आज कर लो। पेश किया गया है दनाखलाइस कफेन फोर पार्क से ऑनर हाउस बद्रेव। इनका मालिक जो है श्रीमान हरिदत्त रोहित देव नारायण। इनके तरफ से हनुमान चालीसा के साथ आज स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम आरंभ किया गया है। दनाखलाइस कफेन फोर पार्क से इस बार है आनंद अर्जुन शर्मा। आनंद अर्जुन शर्मा ख्रोथ हांडल बेफे के साथ सुनेंगे हम गणेश जी की आरती।

गणेश जी की सुंदर सा भजन यहाँ से हमने श्रवण की है, पेश किया गया है दनहा खलैस कफेन फोर पार्क से आनंद अंजु शर्मा क्रोधान बेफी के तरफ से। दनहाग से श्रीमती लन बाबू राम जी के तरफ से हम यहाँ से श्रवण करेंगे एक बार फिर सुंदर सा गणेश भजन। बेहतरीन कल के लिए, बेहतरीन कल के लिए आज को बेहतर बनाना पड़ेगा।

अति सुंदर, अति सुंदर। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, आपके तमाम उलझने ऊपर वाला सुलझा देगा। पेश किया गया देनहाग के रहने वाली श्रीमती लेन बाबू राम जी की तरफ से। देनहाग लाइस कैफे इन फोर पार्क से इस बार है बाव एंड ओनर हाउस बदरेफ। बाव एंड ओनर हाउस बदरेफ इनका मालिक जो है श्रीमान हरिदत्त रोहित देव नारायण, इनके तरफ से सुनेंगे।

सुंदर गणेश भजन आपके लिए पेश किया जाता है आपका स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम जो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से हम यहाँ से आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। शब्द शब्द में ब्रह्म है, शब्द शब्द में ब्रह्म है, शब्द शब्द में सार है, शब्द शब्द शब्द ऐसा कहो जिसमें उपजे प्यार। पेश किया गया है दनाखलास कफेन फोर पार्क से बाव एंड ऑनर हाउस बद्रेव, इनका मालिक जो है श्रीमान हरिदत्त देव नारायण के तरफ से हमने श्रवण की है। आपको लेकर चलते हैं दनहाख के रहने वाली श्रीमती लिलियन मोतीराम जी के तरफ से शुभ प्रभात कहते हुए सभी को।

सुंदर अति सुंदर, चलो खुशियों का जाम हो जाए, लेके बप्पा का नाम कुछ अच्छा काम हो जाए। पेश किया गया है दनाख से श्रीमती लिलियन मोतीराम जी की तरफ से, सभी को एक शुभ दिवस, मंगलमय जीवन, मंगलमय जीवन और मंगलमय दिवस पेश कर रही है। सुरीनाम लिफोर्नो मैन का नाम हुक इंदिरा गांधी वैक्सीन, श्री भक्त राज शिव पार्वती मंदिर से श्री पंडित सुभाष महावीर खूबसूरत दिवस में भजन माला कार्यक्रम में शुभ प्रभात कहते हुए।

0: Frontier.
1: सुंदर अति सुंदर। पेश किया गया है श्री नाम अर्ली फॉर नोमैन का नाम हुक इंदिरा गांधी वैक से श्री भक्तराज शिव पार्वती मंदिर से श्री सुभाष महावीर श्री पंडित सुभाष महावीर के तरफ से खूबसूरत दिवस में सुप्रभात और मंगलमय दिवस हम सभी को कह रहा है। अच्छे ख्वाबों के साथ सोना और नए उम्मीदों के साथ जागना। देना मका इस रात नंबर 6 से फाहोन हिंदू बास स्कूल फरेनखिंग अलखमेन हिंदू ऑंडरवेस के तरफ से

0: के दाता गजाधन श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश आप सभी को गणेश जी की कृपा से हर दिन फलदायक हो हम सभी का पेश किया गया दनहाखमा का इसरात नंबर 6 से हिंदू बासो स्कूल फाहुन फरेनखेन अलखमेन हिंदू ऑनरवेस नीदरलैंड के तरफ से आगे चलते हैं सुनने के लिए हे क्नुटरस्ट्रात नंबर 10 से संस्था हिंदी प्रचार जो परिवार चांगुरबिन के निर्देशों में श्रद्धा भक्ति के साथ
1: नमो

अति सुंदर, एक बार फिर अति सुंदर, अति सुंदर। प्रथम पूज्य भगवान गौरी पुत्र गणेश जी की कृपा से आपका हम सबका दिन सुखद में और मंगल में रहे। पेश किया गया है नंबर 10 से संस्था हिंदी प्रचार। संस्था हिंदी प्रचार जो परिवार चांद गुरबिन के निर्देश में है, आपको लेकर चलते हैं इस बार रोटरडम। रोटरडम हॉगवलीट टेक्सास वेग नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर संस्था जागृति संस्था हिंदी सेवा संघ श्री गंगा माता मंदिर साथ में रोटरडम वेस्ट ब्लॉक माकर स्ट्रात 64 तक से श्री सरस्वती माता भवन से मंडली सभापति श्री पंडित राजकुमार महातम जी के तरफ से शुभ प्रभात और एक शुभमय दिवस, एक शुभमय जीवन हम सबको अवश्य इनके लिए प्रार्थना करता है।

मंत्र पुष्पांजलि यहाँ से हमने श्रवण की है। हर सुबह एक नई शुरुआत होता है, हर सुबह एक नई शुरुआत होता है, एक नई आशीर्वाद, एक नई आशीर्वाद, एक नई आशा है। सुख सुबह जैसा होता है, मांगने पर नहीं पर जागने पर मिलता है। पेश किया गया है रोटरडैम होगफ्लीट टेक्सास वेक नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर संस्था जागृति संस्था हिंदी सेवा संघ श्री गंगा माता मंदिर से और रोटरडैम वेस्ट ब्लॉक मार्केटस्ट्रैट से श्री सरस्वती माता भवन से मंडली सभापति श्री पंडित राजकुमार महाथम जी की तरफ से ये सुंदर सा पुष्पांजलि मंत्र पेश किया गया आपके लिए। फाहोन रेडियो की स्टाफ डायरेक्टरी पर्सनल सभी फ्रेवेलर्स की तरफ से मेरे प्यारे सुनने वालों तोहफा के रूप में सभी स्पॉन्सर सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के वास्ते

हाँ हाँ जाने जाने हनुमान जी। अच्छे ख्वाबों के साथ सोना और नई उम्मीदों के साथ उठना जागना, और इसके बाद तो गणेश जी की कृपा हर दिन हम सब पर फलदायक दे। पेश किया गया फोन रेडियो की डायरेक्टर स्टाफ पर्सनल के तरफ से और सभी फेरेवेल अखर के तरफ से मेरे प्यारे सुनने वालों, तोहफा के रूप में सभी स्पॉन्सर, सभी सुनने वालों, सभी भक्त प्राणियों के वास्ते आपके सेवा में पेश किया गया है। सभी भक्त प्राणियों के वास्ते, सभी सुनने वालों के वास्ते भजन माला कार्यक्रम को तमाम खुशियाँ खुशनसीबियाँ पेश किया जाता है। स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद किया जाता है, और स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरे नमस्कार। एक शुभमय दिन, एक शुभमय दिन हो, शुभ प्रभात, मंगलमय दिवस होवे।

0: Gustav Wiggeland Jenner.
1: उज़्बेकिस्तान से ये सुंदर सा गीत आपके लिए यहाँ से चला दिया गया है। ये पल आपको बहुत सारे खुशियाँ लाए, जहाँ पे भी हो, जिस वक्त पे भी, जहाँ आप रहे, वहाँ के माहौल जरूर से, वहाँ के महफिल, वहाँ इर्द गिर्द जो है, जब जिस समय बस मुस्कुराते, हंसी खुशी में बीते। यहाँ से कुछ दो लाइन आपके सुनाना चाहती हूँ। लाइन के बोल ऐसा शुरुआत है, घटिया लोक, घटिया लोक। उसके एक उदाहरण है, उदाहरण की जगह से हम आपको सुनाएंगे कि घटिया लोक कैसे होता है। उदाहरण के रूप में ऐसा है कि प्याज को जितना भी प्यार से क्यों ना काटे, आंखों में आंसू ला ही देते हैं। उसी प्रकार कुछ लोग भी हमारे जिंदगी में ऐसे ही होते हैं, जिन्हें हम कितने भी प्यार, सम्मान और इज्जत दे दे, लेकिन वो आखिरकार अपनी घटिया हरकतों, अपनी घटिया हरकतें दिखा ही देते हैं। तो प्याज के उदाहरण से घटिया लोग के एक उदाहरण दिया गया है, तो आपसे हम यहाँ पे बांट ली है। जी हाँ, आपके लिए अल्ताफ राजा जी।
2: जाने प्यार के नाजुक रिश्तों की गहराई को, मेरी आंखों ने झेला है रातों की तन्हाई को। मेरे दिल की हालत क्या है मैं जानूं या दिल जाने, मेरे अलावा कौन बताए जाके उस हरजाई को।

दर्द को जाहिर करने से तो दर्द का सहना ही अच्छा है। दर्द को जाहिर करने से तो दर्द का सहना ही अच्छा है। अपनी ही रुसवाई होगी, कुछ ना कहना ही अच्छा है। कौन है अपना इस बस्ती में, किससे दिल का भेद बताएं। ओ हर जाई तेरे बारे में चुप रहना ही अच्छा है।

जीना इसी का नाम है मेरे दोस्त, जीना इसी का नाम है। तो चलो हम आपसे बता दें कि जीना किसका नाम है। जीना इसी का नाम है कि शरीर को चंगा रखो, शरीर को चंगा रखो और दिमाग को ठंडा रखो, जेब को, जी हाँ जेब को गर्म रखो। जेब को गर्म रखो और यानी कि ढेर से पैसा उसमें होना चाहिए। और आंखों को, आंखों में शर्म रखो। जुबान, जुबान को नरम रखो। जी हाँ जुबान को नरम रखो। दिल में रहम रखो, दिल में रहम रखो और क्रोध पर लगाम रखो। व्यवहार, व्यवहार को साफ रखो, व्यवहार को साफ रखो और खास तौर पे होंठों पर मुस्कान रखो। अगर आपके होंठों पे मुस्कान जो आ गए ना, तो आपके आंखों में शर्म रहेगा, जुबान नरम रहेगा, दिल रहम रहेगा, क्रोध पर आप यूं ही यूं लगाम रख पाओगे और व्यवहार आपके तो साफ हो जाएगा।

शामिल कर दिया गया है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के प्रोग्राम में पंकज उदास जी को। घर में दर्पण लगाते समय ये गलती कभी ना करना। आपने ठीक सुना, घर में दर्पण लगाते समय ये गलती कभी ना करना। दर्पण को कहते हैं आईना, स्पीकल। कहाँ पर आपको दर्पण नहीं लगाना चाहिए? पहला है मुख्य द्वार के सामने दर्पण ठीक नहीं है लगाने में। मुख्य द्वार यानी कि होफ एनखांग, बैत के सामने यानी कि स्लाब कामर में आपके बिस्तर जहाँ है उसके सामने दर्पण लगाना ठीक नहीं है। बैत के सामने दर्पण लगाना ठीक नहीं है। दक्षिण दिशा में दर्पण लगाना ठीक भी नहीं माना जाता है। दक्षिण यानी कि सौदन। दर्पण को अंधेरे में रखना ठीक भी नहीं माना जाता है। और कमरे में बहुत सारे दर्पण होना भी ठीक नहीं माना जाता है। सीढ़ियाँ के सामने दर्पण लगाना भी ठीक माना नहीं जाता है। सीढ़ियों के सामने दर्पण होना ठीक नहीं है। टूटे या धुंधले दर्पण का इस्तेमाल करना ठीक भी नहीं है। टूटे या धुंधले दर्पण। रसोई में दर्पण लगाना ठीक नहीं है। और दर्पण का मुंह नीचे की ओर रखना भी ठीक नहीं है। यानी कि मुंह नीचे यानी कि स्कंस। और दर्पण को गंदा या धूल भरा रखना भी ठीक नहीं है। हेडब्रेंग अलेमा नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट ओक नेगेटिव एनर्जी। ये सब बात आपको बता दिया गया है वास्तु शास्त्र के अनुसार।

पंकज उदास के आवाज में कि आइए ये मौसम आपके लिए। इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका हृदय टूटा, सपने भी टूटे, अपनों भी रूठे, फिर भी कहते हैं मैं ठीक हूँ।

जब किसी पर से भरोसा उठ जाता है ना, जब किसी पर से भरोसा उठ जाता है तब सामने वाले चाहे आंसू बहाए या कसमें खाए, असर नहीं होता। नो, जिंदगी दोबारा वापस नहीं मिलता है, जो वक्त गुजर गया सो गुजर गया। आज में जी लो, आने वाला कल का पता नहीं, पर भरोसा में है हम जीते हैं। जिंदगी दोबारा वापस नहीं मिलता, इसलिए इसे दुख में, गुस्से में, नाराजगी में, नफरत में या किसी से ईर्ष्या झगड़ा करने में बर्बाद मत करना।

पंकज उदास, पंकज उदास के आवाज में सुंदर सा गजल पेश किया गया। क्या क्या दोपहर में सोना चाहिए, जिसे हम कहते हैं मिदाखदुच, इस दात वेल खुद इस द फ्राग। क्या दोपहर में सोना चाहिए, जरूर सोना चाहिए, जरूर से सोना चाहिए। तो आपको यहाँ हम बता देते हैं क्योंकि क्या फायदा है अगर आप दोपहर में थोड़ा से सो जाए। दोपहर में 15 या 20 मिनट तक आप जो सो जाए तो उसका फायदा क्या होता है, हम आपको यहाँ से बता देते हैं आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। द एनख एख्त आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। अगर आप दोपहर में 15 से 20 मिनट तक सोते हो तो ये शरीर के लिए फायदेमंद होता है। दिस हेल्प गुड फॉर यू लिखाम, हमारा दिमाग बेहतर काम करता है, हमारा दिमाग बेहतर काम करता है। दोपहर के नींद से याददाश्त बढ़ती है, दोपहर के नींद से याददाश्त बढ़ती है। ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड ग्लूकोज का खतरा भी कम होता है और दिल स्वस्थ रहता है, तनाव कम होता है। Door 15 tot 30 minuten te liggen op een middag heeft zijn voordelen. Moet je 's middags slapen? Een paar voordelen wat het slapen 's middags doet. Als je 's middags 15 tot 30 minuten slaapt, is het goed voor het lichaam. Onze hersenen werken beter. Middagslaap verbetert het geheugen. Ook het risico op een hoge bloeddruk neemt af en het hart blijft gezond en stress vermindert. Dus het heeft zijn voordelen. Als u in het gelegenheid bent, gewoon doen. Even 15 minuten, 10, 15 minuten hoog uit 30 minuten. Als u uitrust, bent u opgeladen. In sommige landen heb ik gehoord en ook gelezen dat ze tijdens het werk gewoon moeten stoppen om 15 tot 30 minuten om gewoon uit te rusten. Ze zijn gewoon verplicht om dat te doen, om het te kunnen opladen om verder te kunnen. और वैसे हम सूरीनामों में भी मिदाख दुच लेते हैं।

की आवाज, दूर की आवाज आपके करीब और पहुंच आ गए हैं। फाउनी मुस्तानी रेडियो के जरिए से मेरे प्यारे सुनने वालों,

तेरा भी दिल बोले, मेरा दिल भी दिल बोले कुकू कुकू। क्या मौसम है, क्या नजारा है, क्या हकीकत है। और यहाँ से आपको लेकर चलते हैं फिर से सुनने के लिए मुकेश जी की आवाज में।

के इस चांद माथोर जी और लता जी की आवाज में कि चांद तेरा मुखड़ा यहाँ से फरमा दी है। और कहते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, और क्या कहते हैं जरूर से आपको बताएंगे। नदी का पानी मीठा होता है, नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वो पानी देते रहते हैं। सागर का पानी खारा होता है, खारा यानी कि कड़वा नीमकी। सागर का पानी खारा होता है क्योंकि वो हमेशा लेते रहता है, हमेशा लेता रहता है। और नाले का पानी हमेशा गंदगी दुर्गंध देता है क्योंकि वो रुका हुआ होता है। यही हम अपने जिंदगी के साथ तुलना कर सकते हैं। यही जिंदगी है, देते रहोगे तो सबको मीठे लगोगे, लेते रहोगे तो कड़वे लगोगे, और अगर रुक गए तो सबको बेकार लगोगे। यही है लगभग जिंदगी का। जिंदगी का तुलना आप ऐसे भी कर सकते हो। रिफियर वादर इज सुत ओमदात वादर ब्लाइफ गेवन एंड से वादर इज सौत ओमदात है आल्टेट ब्लाइफ नेमन हेत आफुर वादर रुक आल्टेट स्लेख्ट दैट वेट ही ओक ओमदात हेत गस्टॉप्ट इज। Dit is het leven. Als je blijft geven, mijn lieve mensen, word je door iedereen, bij iedereen geliefd. Als je blijft nemen, zal het zout smaken. En als je stopt, lijk je voor iedereen nutteloos. तो आप सोचो कि आप कहाँ पे हो, कैसे हो और क्या कर रहे हो। सुख हम बलांस अरेन

मेरा दिल न तोड़ो, राजा बाबू से निकाल दिया गया है। आहा, जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है मेरे दोस्त। हाँ, जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि वक्त जो सिखाता है वो कोई और नहीं सिखा सकता है।

मैं चुप रहूंगी। हाँ हाँ, मैं तो चुप नहीं रहूंगी, बल्कि फिल्म का नाम है मैं चुप रहूंगी। ये सुंदर सा दुएत आपने सुने हैं लता और मोहम्मद रफी जी से। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं चुप रहूंगी फिल्म का नाम जैसे हमने कही है, सुनील दत्त और मीना कुमारी का इसमें अपना कला दिखाई है। मौका मिले तो जरूर से समय निकाल कर और देख लेना ये सुंदर सा फिल्म। द बेस्ट लेयर मेस्टर इन एट लीफन इज द टाइट मैन लिफमेंस। द बेस्ट लेयर मेस्टर इन एट लीफन इज द टाइट। वो द टाइट ओंस लेयर कान निमांत ओंस लेरन।

जी मेरे प्यारे सुनने वालों कि तुझे पहचान लिया है और आपको अपना मान लिया है, कितनी सुंदर बयान है आपके लिए पेश किया गया।

गंगा पर इतना भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे कर्म, जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। आप समझ गए ना मेरे दोस्त।

0: उमर खयाम की सगे क्यों लुटिया डुबोने वाला है? अगर पुलिस आ गई तो सीधे जेल जाएंगे।
1: पुलिस जहांगीर का क्या बिगाड़ सकती है? अब्बा हुजूर अकबर आजम से कहकर इन पुलिस वालों की धज्जियां उड़ा दूंगा। मलिका आलम नूरजहां।

0: जानती हो मैं कौन हूँ?
1: जानती, मैं दीवानी क्यों, तुम दीवानी।
0: हर रोमियो
2: दीवाना
0: हुआ करता है मेरी जूलियट।
1: जूलियट?
0: हाँ, तुम जूलियट और मैं रोमियो। तो देखो, तुम बालकनी में खड़ी हो और मैं नीचे गा रहा हूँ।

0: जाना
1: हमें पकड़ लिया याने सीजर और क्लियोपेट्रा को पकड़ लिया पहला समझे रोम वाले
2: रोम वाले नहीं हिंदुस्तानी जेल वाले
1: हिंदुस्तानी जेल वालों ने सीजर और सारी दुनिया की हसीन तरीन औरत क्लियोपेट्रा को पकड़ लिया

तो सोचो जहाँ तू है वहाँ पर चांदनी को फिर कौन पूछेगा। आओ प्यार करे, आओ प्यार करे तो पता चलेगा कि जहाँ आप है तो वहाँ पर चांदनी को कौन पूछेगा। फिल्म का नाम है मेरा दोस्त, फिल्म का नाम है आओ प्यार करे, मोहम्मद रफी जी की आवाज में रोमांटिक सॉन्ग आपके लिए। आप ही का फाहन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से पेश किया जाता है। वे इस नोइट बंक फोर है तोंकर द मान स्कैंट ओक्सनाक्स ऑब्स्टाकल्स एंड नित हैत एंड द फन द रेस ऑब्स्टाकल्स सैन नित हैत एंड द फन द रेस खदोल्त लेट tot een weg, geduld leidt tot een weg. Geen enkele moeite is verspild. Aapne theek suna ki geen enkele moeite is verspild. Elk stap wordt een ervaring. Jiha, elk stap wordt een ervaring. Falen is geen nederlaag. No. Falen is geen nederlaag. Een mens groeit door strijd. Een mens groeit door strijd.

एक बार फिर आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है आज के प्रोग्राम में, इस पल के प्रोग्राम में। खामोशी से मतलब नहीं, खामोशी से मतलब नहीं बातों से है मेरे दोस्त। दिन तो गुजर ही जाएगा, मसला रातों का है। पल ये समय आपको बहुत सारे बधाइयां दे रहे हैं।

यही तो बात है, कल हो ना हो आज तो है, ये पल तो है, इसे में इसी के एक अच्छा यादगार बना लो। मौका इसी पल में है, कल हो ना हो टाइटल सॉन्ग से हमने सुने सोनू निगम जी की आवाज में, रोज सुन सकते हैं इतना मधुर आवाज में, और इसमें कितना मतलब है।

स्पेशल स्पेशल सॉन्ग्स आपके लिए चुनकर और लाई हूँ आज के वक्त में। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से हम सब जुड़े हैं, स्पेशल स्पेशल आप ही के लिए है।

हे दो पल की जिंदगी है मेरे दोस्त, इसे जीने के लिए सिर्फ दो ही उसूल बना लो। हाँ, सिर्फ दो, रहो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। जिंदगी के हम सफर में हो तो बात पे यकीन तो नहीं था, पर तुम आए तो यकीन हुआ। और सफर जो है मोहब्बत ही से भर गया है।

आज 13 तारीख हो चला है, 13 तारीख यूनी है, यूनी हाँ, छठा महीना चल रहा है सेस द मंथ इस साल का तो हो गया है। और आज शनिवार का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं।

ये समाचार आप ही सुन लो, 5 मिनट बाकी है 10:30 बजने में। ऑटोमोबिलिस्ट रेट मेट 176 किलोमीटर पर यूर दूर टनल। हाय मी मामा, सुतमेर के बाद है अन ऑटोमोबिलिस्ट रेट फ्राइडाग 5 यूनी के बाद है मेट 176 किलोमीटर पर यूर दूर द एरोपा टनल इन सुतमेर तरवेल ये दार maar 70 mag rijden. De politie nam direct het rijbewijs van de snelheidduivel in. En bij een controle bleek dat de automobilist het wel erg bont maakte, aldus de politie op social media. De bestuurder reed De bestuurder reed.

कलम दिल चाहता से सुने हम शेखर महादेवन शान और के की आवाज़ में कि दिल जो भी कहे परवाह नहीं, हम तो अपना राह सीधे चल रहे हैं। इन लेफन हु द्रुक ये हैत ओक हैप मैन लिफ मेंस भाइयों बहनों इन लेफन हु द्रुक ये हैत ओक हैप नेम द तैत om met je dierbaren te praten. Wat doe je anders met die tijd als ze er niet meer zijn?

अच्छा समय अच्छा गीत आपके लिए। हमारे अच्छे अच्छे लोग जो सुन रहे हैं फाओ हिंदुस्तानी रेडियो, दुनिया के जिस गली में आप जहां भी जैसे भी हो, आपका इंटरनेट है तो आप वर्ल्ड वाइड सुन सकते हो फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो।

के घुंघरू टूट गए इसी वक्त, वही से मैं यहाँ सोचकर और सोचते रहते कि घुंघरू कैसे ही टूट गए पता नहीं। मेरे दोस्त कहते हैं कि ये कहते हैं कि जैसे सोचोगे वैसा ही बनोगे। विचार ही आपकी पहचान है मेरे दोस्त, विचार ही आपके पहचान है।

Zware tornado's laten sporen van vernieling achter in VS. Honderdduizenden mensen in de staten Illinois en Indiana zitten zonder stroom. ये फेस का बात है, ये फेस का समाचार यहाँ से आपके लिए रख दी है।

तो बहुत अच्छा बात है कि आप मिलकर और बताओगे, अच्छा बात है। तो हम इंतज़ार भी कर रहे हैं उस पल के लिए। द मुथेफ द वार है द अनफार्दन, वी द मुथेफ द वार है द वार है द अनफार्दन एंड द इंटेंसी हेफ ओम द फरांदरन कान फेल फेल लेरन हो फेल मेंसन हर कैनन ओंस। दैट टूट एर एंगलक नीतू, मार आस यू बरेड बैन द वार है ओंदर द अनफार्दन, dan gaat u zeker heel veel verbetering vooruit. Fibromyalgie, mijn lieve mensen, het is een chronische ziekte. Ja, dit is niet zichtbaar, maar die is er. Fibromyalgie, de symptomen, vermoeidheid, slaapproblemen, breinvog, stijfheid in de ochtend, overweldigende pijn, geheugenproblemen, gevoelige darmen, angst, lage rugpijn, hoofdpijn, gevoeligheid voor weer. Temperatuur, gevoeligheid, pijnlijke gewrichten. Fibromyalgie is niet zichtbaar, maar de pijn is echt.

फिल्म वॉर से निकाल दिया है जय जय शिव शंकर। सीटी भी बजा दी है आपके

5:30 हो चला है, 5:30 आज सुबह का वक्त जो आपके लिए लाइव एंड डायरेक्ट पेश हो रहा है प्रोग्राम फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से।

तुमसे मिलकर दिल का और यहाँ से है वो लड़की है कहाँ, सोचो तो। Over 11:30 zaterdagochtend programma.

फिल्म धूम नंबर 2 से निकाल दिया गया है, जिसमें कलाकार है ऐश्वर्या राय, ऋतिक रोशन, सुनिधि चौहान। इश्क है, हाँ इश्क है।

0: अब तो फॉर एवर सैफ अली खान रानी मुखर्जी ये फिल्म में अपना कला दिखाई है श्रिया घोषाल और के की आवाज़ में। और इसी गीत के साथ मैं यहाँ से आपसे रुखसत हो रही हूँ आज के लिए। 2 मिनट बाकी है 12 बजने में। देने सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद किया कर रही हूँ। स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी। नमस्कार, टेक केयर।
1: म्यूजिक एन इंफॉर्मेशन बाय वाहन हिंदुस्तानी रेडियो।

मोहब्बत और मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत जो है वो बहुत बड़ा काम का चीज़ है और कभी कभी मोहब्बत में बहुत बहुत गलतियाँ हो जाती है दोस्तों। और गलतियाँ तो हमारे लोग का भी एक हिस्सा है हमारे दोस्तों। तो आज हम आप लोग को कुछ प्यार भरी शायरी सुनाएंगे, कुछ गाना हम सुनाएंगे एक घंटे के लिए, और उसके बाद तो हमारा प्रोग्राम को और आगे को हम बढ़ाएंगे। कहते हैं तेरे ख्याल में जब बेख्याल होता हूँ, तेरे ख्याल में मैं जब बेख्याल होता हूँ, जरा सा देर को ही सही बेमिसाल होता हूँ। थोड़ा से देर होइगे बाकी फिर भी बेमिसाल होता हूँ। तो हम चलते हैं दोस्तों। मुझे नींद न आए, आपको आते हैं? आपको क्या आते हैं? अभी क्या आएंगे दोस्तों, लेकिन आएंगे जरूर। हम चलते हैं एक पुराना नंबर की ओर।

और मुझे नींद न आए, और मुझे नींद न आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का ये फिल्म दिल मूवी का नाम है दोस्तों। अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने ये गाना को गाया है। और हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, और यहाँ से हम अपना प्रोग्राम को और आगे को चलाएंगे और सुनाएंगे, और कुछ शायरी एक दो बीच बीच में हम कर देंगे। और हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, हम चलते हैं, और ये दर्द की बात है। और दर्द में क्या होता है दोस्तों, दर्द में आंस गिर जाता है, दिल रोई पड़ता है, दिल धड़क जाता है। और जब दिल धड़क जाता है तो क्या होता है, आप खुद ही सुनिए।

और न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया, और जो अगर छू लिया तो उसके आगे आपको क्या होता है दोस्तों, ये मैं क्या करूं, आप तो खुद ही जानते हैं। और कहते हैं होठों पर मोहब्बत की फसाना नहीं आती, होठों पर मोहब्बत की फसाना नहीं आती, साहिल पर समंदर की खजाना नहीं आती। और आगे को हम चलते हैं दोस्तों कि कहते हैं इश्क मोहब्बत दीवानगी ये बस लफ्ज ही थे, जब तू मिला तब इन लफ्जों को मैंने मिले। और दोस्तों ऐसे ऐसे कुछ शेरे आज आप लोग को हम जरूर सुनाएंगे, और हमें यही आशा है कि आपको जरूर अच्छा लगेंगे। कहते हैं फूल खिलते हैं बहारों का शमा होता है, फूल खिलते हैं बहारों का शमा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवान होता है। दिल की बातों को होठों से नहीं कहते, ये फहसाना तो निगाहों से बयान होता है। यस मींस रोकेर, फूल खिलते हैं बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में तो प्यार जवान होता है। दिल के बातों का होठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयान होता है दोस्तों। और इस बयान में हम आप लोग के चलते हैं सुबह से लेकर क्या होता है, खाना तो नहीं होता है दोस्तों, और कुछ होता है, वो क्या होता है आप सुनिए।

हम चाहते हैं सिर्फ प्यार करो दोस्तों, और हम अपना प्रोग्राम को और आगे लेकर चलते हैं। हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों कि कहते हैं, प्यार करने वालों कहते हैं कि कब तक वो मेरे होने से इनकार करेंगे, कि कब तक वो मेरे होने से इनकार करेंगे, खुद तो करके वो एक दिन मुझसे प्यार करेंगे। प्यार की आग में हम उसे उसको इतना जलाएंगे कि सारे दिन हमसे प्यार ही करते रहेंगे। यस मेंस, आज हम प्यार के मूड में हैं, इसीलिए प्यार के कुछ शायरी हो जाए। और कहते हैं कि एक पल मैं जो आकर गुजर जाऊं, एक पल में जाकर गुजर जाए, ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहते हैं दुनिया जिसे, एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं दोस्तों। तो ये सब बात शायरी में लोग लिख के धर दिया है, और आज अपनी जिंदगी के कुछ बातें हम आप लोग को सुनाएंगे, और वो क्या है दोस्तों, आओ मिलकर सुना

जिंदगी में, और मेरे जिंदगी में जब आप आए हो तो बहार बन के आए हो। और फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गाना है दोस्तों जो आपके हमने सुनाया है, और हम चलते हैं और आगे को दोस्तों। मुझे उस जगह से भी मोहब्बत हो जाती है, आप तो जानते हैं जब लोग कभी मस्त हो जाते हैं तो वो जगह नहीं छोड़ता है, जगर उसको कुछ सोचना है तो जाकर वहाँ पर बैठ जाता है, और बैठ के और जैसे दोस्तों जब हम कुछ लिखते हैं तो मुझे वो स्पेशल जगह होता है जहाँ पर हम बैठ के कुछ लिखते हैं। ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जब जो प्यार के मूड में होता है तो वही जगह वो खोजता है, और कहते हैं मुझे उस जगह से भी मोहब्बत हो जाती है जहां बैठकर एक बार तुम्हें सोच लेता हूं। जी हां दोस्तों, और कहते हैं इस दुनिया में लाखों लोग रहते हैं, कोई हंसता है दोस्तों तो कोई रोता है, पर सबसे सुखी वो होता है जो शाम को दुई बोरल मार के सोता है। एक शायर हुई के भैया ये हंसते हुए, सिर्फ प्यार भरे नहीं लेकिन हंसते हुए, नजरे करम मुझ पर इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए बागी हो जाऊं, नजरे करम मुझे पर इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए बागी हो जाऊं, मुझे इतना न पिला इश्क के जाम कि मैं इसके जहर में आधी हो जाऊं। दोस्तों हम चलते हैं कि अगर आपके दिल ने किसी चुरा लिया है तो ये गाना आपको जरूर सुनना चाहिए।

और चुरा लिया है क्या भैया, दिल के बात होता है, दिल के बात होता है हमारे प्यारे प्यारे और सुनने वालों। और दिल बेस्टमैन से हम चलते हैं एक रीमिक्स गाना की ओर, यानी कि रीमिक्स भी बजाना चाहिए और तुम दिल के धड़कनों में रहते हो, उस गाना की ओर जाते हैं हम दोस्तों। अभी हम वापस आ जाएंगे।

बस तुम दिल की धड़कन में और रहते हो रहते हैं। अलका का ये गाना है और इस फिल्म में काम किया है अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी और सुनील शेट्टी ने इस फिल्म में काम किया है हमारे दोस्तों। और हमारे प्यारे दोस्तों, ये गाना है जब बारिश आता है तो ये गाना सुनने में और अच्छा लगता है। हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, फिल्म का नाम है सूर्यवंशी, अक्षय कुमार कैटरीना कैफ के, और इस गाना में, इस फिल्म में यानी गाना को गाया है उदित और अलका ने। आओ मिलकर सुना जाए, तो अभी हम वापस आ जाएंगे।

गुरु दोस्तों, टिप टिप करता और क्या करता है टिप टिप भैया, बारिश होता है टिप टिप, और जब बारिश होता है तो क्या करना चाहिए दोस्तों, आपके तो खुद मालूम होगा। हम चलते हैं और आगे को, और बचना ऐ हसीनों, बचना किससे है दोस्तों, उससे बचना है जो दिल के लुटेरा होता है, उससे बचना।

तमाम रेडियो फोन की सुनने वाले को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरी राम से श्रीकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का समाचार सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार का पैगाम। दोस्तों हर हफ्ता की तरह आज भी हम अपना सूरीनामी और देश विदेश के समाचार लेकर आ चुके हैं। तो दोस्तों क्या क्या हुआ है अपना देश सूरीनाम में, विदेश में क्या क्या हुआ है, उसके बारे में आपको हम जरूर बताएंगे। और दोस्तों आज भी हम फेसबुक के माध्यम से आज हम लाइव है दोस्तों, और जितने लोग हमें देख रहे हैं आपको हम प्यार यहां से प्यार पटाते हैं रेडियो फाहुन के माध्यम से दोस्तों। तो और चला जाए तुरंत हम चलते हैं अपना देश सूरीनाम में। भैया क्या हुआ है, भैया एगो नीदरलैंडर है, नीखन देर तक यार रखा एक आदमी है। तो ये भैया के सिपाही बहुत दिन से खोजे भैया इंटरपोल पे रहा कि कहाँ रहा, और ये आदमी दौक रहा भाई, दौक रहा लुकान रहा। तो ये आदमी भैया चल गए और गैल है यानी कि सूरीनाम से कोलंबिया में भाई। और तो जाने कोलंबिया में क्या होता है दोस्तों, कोलंबिया में जो गए भैया तो वहाँ ड्रग्स के कारोबार में और एक के सबन पकड़ ली से ड्रग्स ट्रांसपोर्टन के बारे में। और बोले द एरस्तासी फोसात दख 6 तारीख जुनाई के, और बोले ना दा द मान अलांगर तेत इंटरनेशनल ख सीनियर स्टोंट में से सबन के खोजत रहा। अब एंडलेक एक पाई गए भैया सिपाही कोलंबिया के, और जे एक पाई गए है तो तुरंत बंद कर दे इसे। और हिया नीदरलैंड बोले हमें तू अदमिया के लीफर कर वो के हम लोन खोजिला, नीदरलैंड विल द मान लातन आउट लीफरन सो दैट है दार फॉर द रेक्टर कान वर्शाइनन द फर्दर अफहंड्रिंग फॉर द साक लिख न्यू बेड बत्रोकन जिसील ऑथोरिटेटन के पास है। दोस्तों और चलते हैं हम जोगी महेंद्र जोगी के ओर हम जाए भैया। ये वही महेंद्र जोगी है सरमक्का वाला फे यहां पे के देना ले थे महेंद्र जोगी। और बोले वो क्यूनन खीर आर बेदस फिंदन ओम द वर्कन, बोले हम लोग के यहां सूरीनाम में कम करते हुए नाम मिले है काम करे खातिन। और बोले है कम करता इंदर दाद में से जो सूरीनाम में जइयो तो कम करता नाम मिले है भाई, तू चिराग लेके खोजियो। पहले मैया लोन बोले था फरामो लेके खोजियो, तब वो कम करता सूरीनाम देश में ना मिले है। बाकी यही के सुनिए बोले बारा पीना करेला, बोले बारा पीना करे बोले स्टेना सागी मिलो गिमुआ बीरीनो। अब बोले आहमा परसिया तरी से हार कर दे, तब बोली कितरा भरिए। तो ये बात है दोस्तों, वो कुनन खीन आर्मेनियस फिंदन ओम ते वर्कन। बोले फेट इज दैट द बेफोल्कन नीट स्लेक्ट द कंपन हीव मेट द प्रॉब्लेमैटिक फॉर द वाटर ओवरलास एंड बिसोंडर स्लेक्ट द वीकन टरवेल वो वर्गेटन दैट वी गेन आर्मेनियस कुनन फिंदन ओम ते वर्कन बेड्रेवन सिटन फॉरलीगन टरवेल वी वर्गेटन दैट द बैंकन होगे रेंटेस एंड होगे रेंटेलास्टन फ्रागन इट सो हास अनमोगलिक ज़ाइन ओम द वर्वांगेस इन्वेस्टेरिंगन ते प्लेगन इन इट लैंड मेंसे अलहोवेल ए रेगलगेविंग bestaat binnen het CARICOM-verband kan Suriname haar vleugels niet uitspreiden naar de overige CARICOM-landen met haar diensten te producteren, mensen. तो सूरीनाम के बात है जो कि भैया बोले कम करता ना मिले भैया वहाँ इंद्रदान फिर मान जाइयो खोजे टेमड़े मान जाइयो खोजे तो कम करता इंद्रदान ना मिले भाई। तो लोन जानो है पुलिसी ब्यूरो में भाई, पुलिसी ब्यूरो है इस फ्लाइट में, और वहाँ पर भैया बहु क्वेक चोरी भइल हैगा भैया, दूध के बाल्टी में सब धरे रहा, हाँ बाल्टी में टैंक में धले रहा, क्वेक चोरी हुई एक
बारे में। जोगी बोले है बोले है कब का बोले हम लोग के हनीश मनोरथ बोले नो टच मी ते ही खत्म बोले उसको तो कत्यास करे तो घर में मसे चोरी हुई गई है। तो हेमंत बुद्धू आपको हम स्वागत करते हैं हमारा प्रोग्राम में जुड़ गए हैं, साथ साथ धर्मेंद्र श्री भी आ गए हैं। आप सबको यहाँ से बहुत प्यार देते हैं, दुलार देते हैं और कहते हैं हमारा प्रोग्राम में भाग लेते ही रहो। तो यहाँ बताए गए अब वो चीज कहाँ मिली भैया क्वेक के बारे में वो इंस्पेक्टर हमें यहाँ इंस्पेक्टर पिनास गए लाउंडर सुख करे सगरो गल ताके इंस्पेक्टर लेन कि कैसे चीजों भैल और चीजों अख्तर द ट्रेन फॉर पुलिस ब्यूरो खैर फ्लाइट में से चोरी भैल है। और दोस्तों जैसे शायद आप लोग को याद होगा कि बहुत चीज खैर फ्लाइट ब्यूरो में से चोरी हुए है ना, ये पहला ना भैया रखेरे और प्रखेरे जब सुनिए ये कुछ गैल हैं तो पुलिस ब्यूरो खैर फ्लाइट में से गैल है। और ये बात है द पुलिस फ्लाइट नीड एट द कोर्ट टर्मिनल ऑन हाउ द सिन प्लांट फिन एट हेड ओपन द अंडर सुक मुड ब्लैक एंड द पुलिस अमतनार ऑल ना नीड बत्रोक सेन खमीर बेरे फॉर ड्वेनिंग इन फॉर द गफालक स्टफ में से। लेकिन बात ये है कि कितना बार सब बोले भैया हम लोग के हनीश मनोरथ के और सबसे बड़का आर्टिफिशियर है हाइतियान और वो हैगा तुलन जाने शाया तो शाया लगे जाओ और पूछो कि कैसे चीजवा है। तो बातचीत यही है भैया लोन कि कोई कोई अपने काम पे भी बैठ के हमारा प्रोग्राम को सुन ले भैया हेमंत बुद्धू तो आपको भी बहुत बहुत यहाँ धन्यवाद देते हैं। तो हेमंत अब देखो क्या हुआ है, बात ये हुआ है कि अब कैसे क्विकवा मिलेगा। सब कोई बोले कैमरा लगाओ भैया हिया आदमी अपन ट्रेन में कैमरा लगावे है, हिया चारों बगल लगावे सूरीनाम में भी कैमरा भैया। तो पुलिस ब्यूरो इतना बड़ा एक जगह है हुआ पे तो फेल है इस कैमरा ना है देसवा हमार कहां जा है भैया, देसवा हमार कहां जा है फेलक्स है कैमरा चाहेगा पुलिस ब्यूरो में लगावे के सेल्फ जहलीवन लगे चाहे लगावे के कि जो भगी तो देखिए कौन कमाली तुर के ऊ भगल है। तो यहां बोले ब फेल है इस की तो कोड एड फॉर लूप के बफ्राइजन ब्लैक दैट ब फेल के फॉर द पुलिस ट्रेन एरनस्टक तो कोड कमिंग फॉर टोन द ऑनरस्टिंगन rondom het terrein is op verschillende plaatsen beschadigd en er ontbreekt een toegangspoort poort door het hyena bhaiya te jarur chori hoi ga hai na batia bhaiya buddhu to poort na bhaiya chor loon ke freye toegang hai aap log ko baat aur bataye bhaiya hemant buddhu aur jitne log ko hai suriname mein jagah jameen hai dharmen je ke tulon jano hai fiya pi ke rakhi रिंग पांच बरिस बैठल हाँ तो उसे बोले रहा कि अपन जगह जो तुल के हैगा हिर परसील ख्रंतन के बोले तुल के मख है जाई के एक दम करवावे के उकर बारे में ख्रंत कॉन्फ्रेंसिक एगो कांतोरु खुलल हाँ अपन बस के ले जाइए। तो ख्रंत इंस्पेक्सी पठाई मिनिस्टर लगे तो मिनिस्टर तो के बोले जा इतना पैसा भर वन इतना के फिर कांत में इधर तो जगह है उकर बाद में जाइए नोतारस में खूब ढेर के पैसा भइयो उकर बाद में तोर कागज जाएगा खलेस में तो खलेस वहाँ पर जाए के सब में स्टैंपल मारी तो उकर बाद में तो जगह सब एखन दम हो जाएगा। तो इरमा राम तहल सिंह आपको हम स्वागत करते हैं तब तो जगह हुई तो पांच बरिस में कानी कैन हजार आदमी खरन कॉन्फ्रेंसिस अपन जगह सब एखन दम करी से। तो आए ले भैया मिनिस्टर फन के बी बेगो मलाई आए ले भैया पेल के और उबा अन स्टैनली सूरो वीरो फन खरन बलेन एम बॉस बहिर खे बी बी के। तो ई का बोले है गा बोले जितना खरन कॉन्फ्रेंसिस के जैसे आए ले बौथर्स के रखेरिंग एनडीपी के रखेरिंग जैसे आए ले हेलमा
grond kon versen, dat je je ban kan deze. Je hebt kooi kan maken op een jagha. Ik heb dom kerk, maar ik heb een admi. Ik heb een hartstikke la centrale bank mee. Ook een zaak chale. Maar ik heb een jijzerekering om een ban kan deze. Nu vragen de mensen hier. Ki jantwa jon aile janta khat aile hai ki apan khat aile janta ki khat tu aile baate bas sab ban kar desega aur yeh ka stelni suro paviro van khron balait en bos bahir ke khaybi bhi ke to banchit i hove bhaiya raj laga aapko bhi pyar se swagat karte hain to raj to imalai ja aile hai khaybi bhi mein to bole khron conference ke chiyo ban hoiga ab ka bole hain bole jitna khron conference ke admi chiyo le raha bole sab ka paisa hum log tarak bhara बोले सबके पैसा तरक बोले बोले जगहियन बोले सही सब तरक ड्राई होए के तो एकर बारे में बहुत घींचा तानी दे आना में भइल है तो उसे पूछेगा तो के 300 मिलियन अपने रक्षक चले तो के पैसा है अदमियन के भरे के अब ओकर बारे में बता कितना रक्षक चले है खैबी भी के बारे में जो आदमी रक्षक पान करी से और ओ खैबी भी चाहे ऊ पैसा भरे के आदमी लोग के और इस सब के पैसा है ना अब बोले हैं जो अदमियन अनफ्रक कर ले रहा बोले ओ अदमियन के बोले कि पैसा हम तरक कर जो लोग जगह या एक दम ना हो पावे तो एकर बारे में बहुत जुगु जुगु भइले बहुत फराख ओके स्टेल करी से तो अब ई का बोले है स्वार्थो नना स्वार्थो स्टेलनी सुरो पावीरो बोले हैगा बोले ना बोले चीजो ऐसे ना है बोले जो अदमियन के सखो अब रोंत ना भइले औ सेंट्रल बैंक में पैसा भर दे से बोले उ पैसा बोले तुरक भरवे म जो आदमी के साख रोंत हो गए जेकन ट्रांसपोर्ट मिल गए है खलिस के और बोले ओके बोले हमें ना के तरह दराई के नहीं इस सब के चलत तो ओहू एक दम ले लेवत और अपन आदमी लोग के बांटे भैया हमारे बात तो सफा है तो लो जानो है खड़ा मजूरी चोखा काम जोनी के काम है बतावे के सोझा रास्ता हम कोई पॉलिटिक के नहीं देखी जैसे है वैसे हम बताएंगे दोस्तों तो आप ये बोले हैगा एरफ पख रेक्ट नार एक नम रीच फॉर लीडर हैवन अफगरोंड नीट इन अमेरिका कोमल फॉर टर्क बताले फॉर द दारफोर बताले बदरा alleen personen op rechtspersonen die het grond en conversietraject niet volledig hebben kunnen afronden, zullen de door hergestorte gelden van de overheid terug ontvangen. De minister stond er uitgebreid stil bij deze kwestie en benadrukte dat het beleid gericht is op zorgvuldige afhandeling van lopende en niet afgeronde grondconversies aanvragen. तो ये सब बात है हमारी जनता अंडरसुक नार संत अफग्राफिंग ग्रांड केक वॉर फोर खसैद ग्रांड कनेक में भैया शांति खुदावे सर मक्का में अब मिनिस्टर बोले एकर अंडरसुक के खाली एली खाल काम हुए हमारे देश में भैया और जब कुछ व्यर्थ होएगा तब देख यहां बतावे हैं द्वंग समुद्र के स्वार और बखरूतिंग फन खीबी भी बोले मिनिस्टर जो बोले हैगा बोले हम लोग के इतना द्वंग सम हैगा फन 300 मिलियन ऐसे दे बदराख बोले देश uitgaven post legt een aanzienlijke druk op de begroting van het ministerie. Volgens Suropawire is het noodzakelijk dat dergelijke schulden in de toekomst worden voorgenomen. Voorkomen. Euro apparetto mangen het milieuke paisa bare bole je me moest kalaya hai. 300 miljoen, 300 miljoen. Abbe tore muri pe karja artu mangen jo nermien khetwa apan kinat raha. Okar paisa bhar ye bhar paiye paiswa to kai hai paiswa bhare ke. To ye sab amate santukhi to सब कोई के बोले रहा कि जेके अपन जगह चलो क्रॉन कॉन्फ्रेंसी से एक दम कर लो आदमी लोग करी से जो नो के शेकर है थे कितना आदमी है वो ट्रांसपोर्ट धर के कागज खेत के और कर्जा निकाले से बैंक में और जाए के घर बाऊ करके हुआ रहे हैं कितने आदमी है गा देखी सो के एक दम काज शुरू करे से आइट ब्रेक करे के अपन जगह जमीन और मलाई आयल है जो एक बारी से और मांगे सब चीज निकाले एंड दैट इज ऑन ईयरलिक मेन से दैट इज सीकर ऑन ईयरलिक तो हम जाए तरी तिलवा के बारे में भैया तिलवा के बारे में अमेरिका सऊदी अरबी के ओर हम जाए ना फॉरेनर स्टेटस तो सऊदी अरबी से फन troon als grootste olie-export ter wereld. De Amerika bole hai, sabse barka grootste olie-export jon kare dunia pe, u Saudi-Arabie hai, hebben de Amerikanen een positie ingenomen die decennia lang werd gedomineerd door Saudi-Arabie en Rusland. De verschuiving markeert een belangrijke verandering in de mondiale energiemarkt en versterkt de invloed van Washington in de internationale oliehandel.
तो पौसे खत्म हो गया है। ए हाँ दोस्तों, तो ये बात है हमारी जनता कि अमेरिका बोले हैगा सऊदी अरबिया फन थ्रोन अस ग्रोस्ट ओली एक्सपोर्टर वीरल। तो बहुत लंबा चौड़ा इसके बारे में लिखा गया है, तेल के बारे में दोस्तों, लेकिन आप लोग को हम छोटे रूप में हम बतावत है कि कैसे है और कैसे ना है हमारे प्यारे प्यारे जनता। अब देखो भैया, एगो 14 बरिस के बातचीत हुए फिर 3 के और मन अनखो नंजो ने को 14 बरिस लड़की के मिस ब्रेक करेला भाई, मिस ब्रेक कर ले रहा हाँ रांच द्रिय फे तक यार रखी को आदमी। त्रियम फिर तक यार रखे के गर्मी ये भैया का करे रहा, ये ससुरा का कर ले रहा मंगलवार के भैया, मंगलवार के एगो 14 बरिस के अपन वीर महिषी के एगो लड़की के भैया सेक्सुअल मिस ब्रेक करी से ओकर माई न मुदर फन स्लाफ तो फिर दे दान गिफ्ट और बतावे गए कि लड़किया बोले नर फोर को मदद मान है महिषी में तू स्टेम फन मुदर अन लिफ्ट गिवन सो हेवन न लतूर मैवा बिटिवा के एगो लिफ्ट देवाए रहा वीर मान के संगे तुन द मुदर इफल लातर बेल द लातर जब बेल कैसे पन बिटिया के तो ओकर बिटिया घरे ना रहा तो न रीस टाइस वास नाम से इस्ते इंसानी नीत ऑफ इस्ते ना इंतार ना उठाई से ओकर बाद मिल रही से तो ये रमिया का करे भैया उ लड़किया के 14 बरस के लड़की के ले ले दे ले भैया तू जाने खोर देनुआ वाला घरवन बहुत ढेर है सरनाम में समझ गए ले ना घरवा आज मैं तू रहे हैं पेंशन वन के बाद बोली ला माऊ सालन हमारे जाने हैं कि कौन खोर देनुआ की बात हम बोली ला पेंशन वन भैया वो तो ले के जइयो पाचे खोर देन लग जाए जैसे नाटक के पर्दा खींच दिए समझ कि भीतर में कोई ना देखे कि कौन वहां जा है और कौन चकल से हुआ अंदर हुए है। तो ये बात है श्रीनाम के खोरदेनुआ वाला घरवन के बाद बतियाई ला। तो ये आदमी 14 बरिस के लड़की के जो मैया बोले रहा बीरमान हम बिटिवा के तेरी घरे पहुंचा दियो तो ये आदमियों के ले के लगा लगा जाई के खोरदेन वाल घर में घुस गए भैया और ओके जाई के वहां पे मिस ब्रेक करिसेगा सेक्सुअल ही मिस ब्रेक इन पेंशन ना द दास सो हेड मेंशन टाइस अफगसेट हेवन द मदर स्कागल नेचुरली अभी जाएगा बैठ के हुआ पे खोरदेल वाला घर में ना लोहा वाला घर में अब रही चक्की पीसे हा तो लोहा के घर में अब उतराली के पीछे जाए के ये भैया हो या ये बात हुए लातूर के बात हुए दोस्तों लातूर में के रहे आप लोग जानो हैं तो ये सब लातूर के बात है जो आप लोग को हम यहाँ पे बता दिया है। तो दोस्तों हम चलते हैं अपना प्रोग्राम को बढ़ाते। अब देखो भैया सेशन 20 मिलियार्ड के बातचीत हुए सूरीनाम में भैया एसआरडी के सेशन 20 मिलियार रैम सेशन 20 सॉरी मैं से सेशन 20 मिलियार खात नार द स्कूलन लास्ट स्कूलन जोन कर्जा भैया ओकर पैसा भरा है सेशन 20 मिलियार भाई यहां पे बताए गए हैं बोलेगा दिस यार टू इरेशन सेशन 20 में Wordt opgeslokt met door rente, oplossing andere financieringskosten en staatsschuld. Uit de nota van de wijziging blijkt dat de via het ministerie van Financiën en Planning 26 miljard is uitgetrokken voor financiële verplichtingen die voortvloeien uit bestaande. स्कूल भैया तो देखो यहाँ पे कितना कितना चीज ले गए पैसा के बारे में मिलियार्ड के बातचीत हुए यहाँ दोस्तों हम बोले तो लोग के बता दे कि देखते रहा फिनांसियन 25.38 मिलियार्ड और यहाँ बतावे है ब्लास्टिंग के 0.91 मिलियार्ड। तो ऐसे ऐसे पैसा के बारे में बहुत लंबा चौड़ा लिखा ले दोस्तों आप लोग खुद पढ़ो और समझो बाउर सूरीनाम में भैया हमारे सरनाम में गरहन लगल है भैया जैसे कोई के शराप लगल है भाई। अरे जब पानी से छुट्टी ना है तो चोरन उधिया है
चोरन जो उधिया है भैया तो हमारे रखेरे कुछ कर ना पावे फन हैस्त्रा सब चिन्ह छित्तीर के बित्तीर होएगा भैया रास्ता बरखा मारी से देश इन बुराई के धरती से भैया सोचो और मित्र लोग इसे दिस बोलेगा ऑफिशियल द टेरकेर फन एल नीनो इन द स्टिल ओशियन बफेस्टर दिस नेचुरलके क्लाइमेट इफेक्ट कैन uitgroeien tot een krachtigste El Nino sinds het begin van de meeting तो बताए गए है भैया सुरीनाम में घर में आदमी के पानी है यहाँ फोटो देखी घरवा आधा बुड़ गए भाई आधा बुड़ गए है और बोले है का बकेर फन मीटिंग नहीं कहती फैक्ट में एक्सपर्ट वॉश क्यों करेला कि वेरल तो एक्स्ट्रा गर्म होगा जैसे इसे पानी इतना जोर बढ़े है ओवर स्ट्रोमिंग हुए है झूरा हुए है आग लगे है क्रख्त स्ट्रोमिंग होएगा और अमेरिकान से मित्र ट्रोल के दिस नोआ इस एरकल्स फन 63% दा देसे एल नीनो इन द नायर इन द विंटर पीक एंड दारमे बहुत तो द ग्रोस्ट ओइट गरगस्ट्रेर तो इतना पानी हम लोग के देश में भरे भैया चारों बगल बुड़ल है गाय गोरू के बड़ी आफत है जनावर के बहुत आफत है खाना पीना का आफत है हमारे जनता के आफत है काम धंधा ना जा सके करे ठीक से भैया तो ये सब बात है हमारे जनता बड़े को फनो को है स्त्रार के रास्ता इतना छित्तिर के बित्तिर है और कोई बनावे ना है जो उन समय पे संतों की रहते सब कोई नूर मोहम्मद वा करियावत रहा नूर मोहम्मद वा करियावत रहा बोले ई का करे फेहा फे के करियावत रहा अब तो भैया और खराब हुई है रस्तवा और बने ना है अब सब बोले बैताली का करे बैताली बोले हम बदरई बाटी ऐसे थोरो बोले मीवान लुक मोनी बोसी फॉर ट्रैकिंग फन फन हो स्ट्रार को फॉलो फन ट्रैक आउटफॉरिंग्स फोनस एगो फोनस चल ले भैया बैताली के और फोनस वा पढ़े के इतना लाती हुई है रास्ता सब छितराई गए हैं ए मां बोले हैगा वन आईडीबी ने बोले वन आस द आईडीबी बैंक स्टार्ट इज ऑन स्टार्ट सुरीनाम एरफान तो वेर होदन ए रेक्लक फोनस आउट टू फोन बतेगन दैट है डी फैक्टो दैट ऑल सुरीनामस बेड्राइवन बे टेंडर्स फ्रॉम द आईडीबी बैंक नीट मेयर कैन रीगन ऑफ द सुरीनामस रेक्लक मख तो ये माँ बहुत लंबा चौड़ा भैया बैताली के बोले है आनी में बतराए बैताली बोले फरतराखिंग भैल है रिहैबिलिटेट प्रोजेक्ट फन फन रूख है स्ट्रात स्लंगन हो स्ट्रात के बातचीत है बोले है का स्टार्ट ओम खान फोनल भैल कर तक दें 10 जुलाई 2025 में और बोले है बदरेव रियाखेदार में नमस्कार के पॉलिटिकल डिस्कशी दी द अफक्लोपन प्रयोग ओवर प्रोजेक्ट इज ऑन स्टान कब बनी कब ना बनी भैया सीफा यानी वार के को बसवार गए हैं और बोले वैसे वार ऑफ हेर और दिलिंग वास आउट को फूड फोकस बाय ताली फॉलो द पाथ नहीं इतने तुरंत अप्रैल आई नो रखिंग ओवर तक हुआ पे भैया फोनस ऑनस जितना चीज है उसे थोड़े देखे कि अर्जेंट है जनता इतना दुख काटे है इस अकवाम इर्दर अरे का बोले अपलोस कर ले कि हम लोग के देशवा के रस्तों अस्तवा तरी बने ऊंची हुआ पे थोड़ो भैया हुआ आलस कम खुद आ बोले तमारा हे अरे चीज बोले मर्ख कम मर्ख बिहान तमारा ते मर्ख करत करत हमारे जनता मर्ख करत करत हम लोग के और रास्ता और खराब हो गया जनता बहुत दुख काटे तरी जाए आम्स्टरडाम की ओर भैया आम्स्टरडाम में और परी आदमी पकड़ा ने भैया आम्स्टरडाम में एगो जबर एक्सप्लोसिव भैल आम्स्टरडाम में बीते हुए रातों में और बोले है क्या कितना ओ तो बस खाद खोई गएगा ए मां सिपाही सबके खोजे है कि कैसे है कैसे ना है इन नख फन दोंदनाख और फ्राइडाख के एगो बड़का एक्सप्लोसिव भैल है एगो स्पोर्ट्स कोल है रिमेनन में और उस दौर पर बन में आम्स्टरडाम में इतना बड़का एक्सप्लोसिव भैल रहा तो ये बात है रकेश मुझ भी आ गया हमारा प्रोग्राम में तो भाई रकेश आपको भी हम बहुत प्यार से स्वागत करते हैं तो जनता हम जाए तेरी अमेरी वेत है भैया अमेरिका बोले उज्जर घर हाँ उज्जर घर है श्वेत है ईरान अकॉर्ड में ऑन मंडलन फन कैरन प्रोग्रामा अरे भैया कैसे में के विश्वास करी तुम के भाई ई बेर बेर बोले है ना ना भैया ना राकेश
बेर बोले खुरुचेस इतरक दंकी वेर केस तो बोले वाशिंगटन बोले है का अकॉर्ड ईरान कर दे कि जितना ओकर केरन वापस सब ओंदमांतल करे है हम ना जानी विश्वास करी कि ना करी दैट लाइक नीट ओवर इन द कोमे में द बरेखते ने ईरान से स्टार्स मीडिया दिस टेल देम दैट ईरान फर्स्ट होत ऑन द ए सेल्फ द कंट्रोल टू होल्ड ओवर द फ्रेक्ट यूरेनियम और बोले है का ई बोले है ट्रिम बोले है और ईरान बोले ना बोले हम अपन यूरेनियम के अपरे से बोले कि हम ओके कंट्रोल करबे बोले ना अमेरिका करेगा मर फोकस अमेरिका तेहरान में बोले है बोले इंस्टेम कर दे से न्यूक्लियर मटेरियल फनीतक वर्ड बोफनी सो ईरान अकॉर्ड सेड मेट इट ओपन फॉर स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्मुज एंड सो हैड लैंड पास टुखांग क्रेगन तो सेन बवरोरन तो खुदन अल से से verplichtingen van de overeenkomst is nagekomen want ईरान के सब बफरीस कर दे से बोले मांगे हॉर्मुज कोलेस्ट्रेट हॉर्मुज जो ने बोटियर पास है हम लोग के तलवा सस्ता है तो रजेश किशुन भी आ गया है रजेश आपको भी यहां से हम बहुत प्यार देते हैं सुरीनाम देश तक तो इस तेल के बारे में भैया जे ओतो चलावे वही जाने कई वजह लेगा लेकिन हमें जाना एक दुनी तरी सस्ता भले आज हम बोलते पास भले तो तरी हम देख लिए बाटी भैया कि कैसे है और कैसे तोरिया ना है हमारे जनता तो और आगे को अपना प्रोग्राम को हम आम बढ़ाते हैं सुनाते हैं तो यहाँ पर देखो क्विक के बारे में जो रहा हम बता रही क्विक दीपस्ताल जो स्कैर फ्लाइट में रहा और यहाँ पे आए नवा न्यूज आई लेम देखी ले दोस्तों बतावे मोकल का बत्रोकन है पुलिसी ऑन द शॉक इन साक क्विक दीपस्ताल अरे बोले सिलेंडर है जाने खास फ्लेशोन सिस्टम है तो सिलेंडर 11 गो चोरी भाई ले पुलिसी ब्यूरो खैर फ्लाइट में बताए रही और बतावे है का और फॉलन इज कि ई केमिकलियम जो है इसे में को कंटेनर में बंद रहेगा अख्तर ने पुलिसी को ट्रेन पे सिपाही के और ऑफ द इन कैपिटल डायरेक्टर ऑन द सुक करे कर बारे में दोस्तों और बोले द सिलेंडर्स वेर रेकनोमन बेन इन ब्रांग बाय द कंटेनर तो यहाँ पे भी बतावे द पुलिसी वर्स की उधर खबरें फन क्विक स्कार्डली केस फॉर द सामेन लीविंग क्विक वा ना मिलल है बाकी हो फ्लाइन वा पली मोखलक बत्रोकन है पुलिसी ऑन द सॉक इन साक अन क्विक दीपस्ताल के बारे में तो लोग जानो क्विक वा सब हन सोना खोजे है ओमा जहर है भैया और क्विक इस खफार में से और क्विक इतना सब बेनलांत में खबरें करे कि क्विक के मछली छिरी खाए लाइक ना भैया वह सब में बीमारी है क्विक इस दिखेमिस इस तो ये बात है हमारी जनता अब देखो हम जाए तेरी ब्रिंसी को वो लगे भाई ब्रिंसवेक का बोले हमारा ब्रिंसवेक तुम्हारा ब्रिंसवेक एक्सपीबी बोले एनडीपी पार्लियामेंटर बोले ईबी जोंस बोले है बोले फ्राक्स एक आवार ओम दोनी ब्रिंसवेक बोले कि इतना नहीं का तीव्रतिया एनडीपी के बारे में बोले जब क्वालिटी मुबां तब बोले जब ना कर पाए तो कहें निकल जाए फोकस एनडीपी इस दिन मनीर ओम तो खान बोले हाँ पर क्वालिटी पार्टनर से लेकिन तो लोग जानो भैया ब्रिंसवेक के मुंह जो है भैया जबड़ है उस बोले है और इस सब के नाम वही लगे है 100 ओम खान अपन क्वालिटी पार्टनर से बोले ही प्रकृत है गा वो बोले ब्रिंसवेक वो द सूप नोइट सो हीट खेतन आल्सो वो अपखदीन और ये बात है जो उस बोले है एनडीपीआर बोले काहे के बोले क्यों इतना नेगेटिव बतिया है तो चिनुआ के देश हम जाए भैया वायरल ट्रेन ओरी प्राइस रिलेटिव लाख हो तो अरे भैया चिनुआ बोले रिलेटिव दुनिया भर के तेल के प्राइस सका करे के बोले 20% फॉर वायरल ट्रेन ओरी फोर्सिंग इन वेख फालन और हमारे से नाम में मांगेगा सिटुएशन का बोले सब्सिडी निकारे और तेलवा और महंगा हुई हमारी जनता ये बात है सुरीनाम के सुरीनाम के अब देखो भैया कड़ाका में सुरीनाम में को जगह नाम बा कड़ाका बोले कोकाइन जरा रे बड़ा जोर से मन करे हंसे के कि कोई सुन न पावे वो बतिया है तू तो बोले कड़ाका में 100 किलो कोकाइन 100 किलो मरवाना बोले जरैली बाटी है भगवान सिपाही कुआ कैसे विश्वास करिए तोरे घर में से क्वेक चोरी हो जाए तू जइयो भैया कोकाइन जरावे अरे भाई पिसान नस्कार सो जाए भैया बड़े डबलावे के समझ गए लो
हम कुछ ना बोली ला तो कराका में भैया इतना ढेर बोले को कई ने सबन जराई से, लेकिन सोशल मीडिया पर मेरी चिल्लाए चिल्लाए खखार खखार हंसे हैं। हम लोग के पॉलिसी के सना में विश्वास ना करे भैया, बैंक में से ना उस सबके क्लेश में से भैया सोनिया चल जाए है, पैसा चल जाए, दृश्य चल जाए है, क्वेक चल जाए, तो ये कई कौन कैसे तू बोलियो भैया की को कई ने जराई से। और हमारा रनीश मनोहरन बेचारा बोले मी आनु बोले नो देश मी बोले हमें ना देश कर बोले हमारा हाथ बड़ी लंबा है। तो यहाँ बतावे गए भैया है किंग ऑफ ड्रिक्स प्रियोड सीफत इन मार्च 2020 तक तो सीफा यूनी तो मार्च में पूरी मिलल है भैया को कहीं ना मिलल है तो वो होएगा भैया तरी सोचो तो सीफ यूनिट तक बोले कि ना द फर्स्ट को की ने वेट ओ सीफ 1350 मिलीलीटर फ्लूई बार को कहीं ना फर्नीता फर्दर बस्तों द पार्टी एट 189.64 ग्राम मरवाना 12.768 ग्राम हाश 235.5 किलो अन असीसी पेलन और ऐसे ऐसे हैगा। तो बड़ा मोइलक है विश्वास करे के राजा का बोली हम सुचित लोग के एगो मोई वाला सोका सोका सुना दे तुम जाने सोका सोका तो अरे दादा प्रिंस हलीमा भैया चटनी सोका सोका। अभी हम आ जाएंगे इस गीत के बांध में हमारे जनता

इली और क्या क्या सुका सुका प्रिंसेस हलीमा का ये जोंग है और ये चटनी सुका थी हमारी जनता जाने सुका सुका पे ओ तो मातिस गोड़वा हतवा हिले लगे तो तेरे जाने चीजवा कैसे जा तो दोस्तों हम चलते ही और आगे को लेकर तो अर्चना देवी का हरनाम भी आ गया है हमारा प्रोग्राम में जुड़ गए आपको हम स्वागत कर चले हैं अर्चना जी तो आप लोग जानो है जेकर जेकर जन्मदिन होवे फरियारी होवे है तो गाना होवे है बजाना होवे है नाच होवे है खवा कटा है कहीं कहीं मुर्गा कटा है कहीं कहीं क्या क्या होते भैया माँ वे माँ का अलमान अनहील ली के दाम में फरियार दा खुद यार रख है दरबीर वाला माल हुत खांत अलमान इन ओवरऑल इस दाद सो वाज नहीं लाउस रे मार इट इज वेल इट्स अंडर्स न्यू मेंस एको फिर फिर तक यार के आदमी भैया ओ कर जन्म दिन रहा अरे अरे मियां बजर मजन में रहा खूब नाचत रहा गावत रहा ओ हीरो आई ओके को तू पकड़ के और हांद बोई करके और लेके ओके चला गए ले मैया ना गए खबा खवावे किनवावे ना पकड़ के बन करी से धोई लाद मार के फर ये के रोज भैया ये रमिया का कर ले रहा ये रमिया का कर ले रहा ये रमिया 2020 जनवरी में एरो अमेरिका डॉलर सफर दस्तर कर ले रहा अपन वेरखी फर के बोले पे वरों को दापे ही मुझियांग उच जुआ कर ले रहा तो बोले ये रमिया नादर बिनेत और एक हल माता की इधर बहुत ऑनलेग बोले पैसवा कहाँ जा है तसब जो ऑन द सुख करी से भैया करीब 8 million एसआर दे ये आदमी काम पर से फॉर दस्तर कर दे रहा भैया और मेरकल इस दर फॉर दाख तो ये जो रोज फरियारी है वो ही रोचक ओएम और खड़बोट के लिए के चला गए ले वो कर फरियारी मनावे तो अपन पास के ही इतना बना दे हिल करी से मीन्स बोले है चोरी करियो भैया तो कर सजा तो भुगतना पड़ेगा है कि ना आप लोग सबको जानो रमावतार सिंह के वो हैगा का बोलेगा फेस के आदमी है एक रूम है रमावतार वेस्ट तो रमावतार सिंह के बाद बतियाला एक बारे में रमावतार सिंह बोले हैं बोले 405 तक दर्जन अमेरिकन डॉलर से नाम भरी सेगा वेहीकल लाइसेंसी किनी सेगा एसटीफीएस खातिर क्यों वहाँ पे समा वही का देख सके हैं और बोले है फीस प्रेसिडेंट जोतर इस्लाम किनी से बफेस्त करील है और बोले दही समा त्रियाल बत्रेफ और खफूलक अंदर वेर स्टेल एक नो वेस्टर मावतार सिंह ने प्रोग्रामा लाला अपसेर वेब पे बोली सेगा दिस ना ब्रोथ एंड स्पेलन अनबीडन एंड हेड फलक खरीट एरफान Word door hun gesteld. Het WK gaat morgen van start in mijn bolle merk. Zo goed als roe hoe je dus toe. O bolle hega. Yo kies trobi nanga a volk ibad bolle he. Indien de regering zo besloten om geen WK uit te zenden. Yo kies trobi nanga volk. Benadrukte de econoom Ramautar Singh. Geef aan de regering enigszins. Wel te begrijpen, je wil wel blijven zitten, je wil niet weggejaagd worden omdat je geen brood en spelen hebt aangeboden. Worden nadruk erop gelegd door de Ramotasi. Bijna mi kot mi banti. Ja, bole, go bole, echter, bole prijskaartje nadat de beschouwing wordt genomen. To bood manga te Ramotasi in kebare me. Al betaai zega ki. इतना इतना पैसा लंटी भरी से और लाइसेंसी किने की किसी नाम में तुम वी का देख पाओ भैया भैया एक आदमी भैया तुम जाने गियरबॉक्स कौन ची के बोले तो हमने नीलांद में बोले ला कॉपलिंग्स ब्लॉक हेल सिंपल कॉपलिंग्स ब्लॉक व्हाट इन नीलांद का सेक्स इन नाम में बोले गियरबॉक्स है दर्जे ग्रर चेक करे तू गियरबॉक्स का नाम कैसे आया भैया पहले जब मोई से अपन कॉपलिंग्स कॉपलिंग वाला दबाइए नले क्लच प्लट वाला दबाइए तो जब दर्जे बोले ग्रर तो क्या बोले गियरबॉक्स कि गियर में चल गए बॉक्स वही नाम श्री नाम में अब तक से बोले गियर बॉक्स मही कॉपलिंग्स बाक
तो एगो 49 यार के में भैया गियर बॉक्स के बोले वो दतरा है तो जाने सिन्हा में सब कहते बच्चे बोले अमाना दतरा हूँ हर एक चीज कोई कुछ जाने बना बोलो दतरा है चीज हुआ कि यार तू जानो दतरा है तो भैया के हम भी बोले लाई दतरा रहा एगो बेच दे ही भैया लेकिन ये दतरा गियर बॉक्स के कौन चक्कर लस करी से हुई तो बतिया है हाँ भैया लोग गियर बॉक्स के अदमिया भैया दतरा का कर गियर बॉक्स के दतरा आदमी लोग से सूरीनाम से डॉलर लेवत रहा अमेरिकन डॉलर लेवत रहा एरो लेवत रहा अब बोले तोर हम कॉपलिंग्स बात मतलब गियर बॉक्स हुआ बोले एकदम मुहूर्त रिफिसी करब कि जैसे नवा हो जाए हाँ बोले जैसे नवा हो जाए बोले कि हम ऐसे तो मौका बोले गियर बॉक्स बना लेवे और आदमी लोग से पैसा लेवे भैया और बोले तो नीतू हेवन 8 आदमी बोले गैल है बोले दतरा के ऊपर गैल है नालिश करे कि हमार गियर बॉक्स हुआ बोले ना बनाए से और पैसुआ खाली से ये के बोले दतरा भैया द पुलिस इज लाइक दैट मेड पर्सनन स्लक्ट ऑफ सेंट कोर्ड फॉर द वेरिफिकेशन फॉर द verdachte in het kader worden personen die ineens geld hebben betaald voor reparatieonderdelen om import van voertuigen onderdelen zonder het afgesproken te hebben ontvangen ये गियरबॉक्स बॉक्स अरे क्या बोले गियर बॉक्स के आदमी भैया एकदम गड़बड़ाइए भैया यहाँ पे हम देखेला एगो बहुत जबर फोटो धरल है लिखल है बड़का में सुन पे कैबिनेट फ्रॉम प्रेसिडेंट एंड मॉन्स्टर दैट ऑन्स फर्स्ट लिंट अरे दादा ई चीज के बोल दे से भाई यहाँ बताए गए है कि 4/2026 में बोले प्रेसिडेंट रेम 1.2 miljard SRD toegewezen van dat bedrag gaat bijna 830 miljoen aan salarissen van 2200 personeel leden otra kamkarten 1,2 miljard maar 830 miljoen kamkarten ke paisa bhara hai een gigantische som die in geen verhouding staat op de prestatie van dit apparaat op bolego van efficiëntie naar inflatie 1990 mee en bolle 50 kam karten ke bolle mopstijden bhaiya bari lamba chowda ekar bare mein likhal hai lekin hum upar bata dela host likhal hai cabinet from the president a monster that owns for slint to ekar bare mein rupesh jagannath adviesraad DNL gelikie sê Suriname kan zich niet model niet lager veroorloven het kabinet moet worden teruggebracht tot een functionale kern तो ये बात है दोस्तों तो टोनी आ गया है टोनी श्री भी आ गया हमारे प्रोग्राम में जुट गए हैं तो भैया टोनी जी आपको भी यहाँ से हम बहुत बहुत प्यार देते हैं और स्वागत स्वागत स्वागत करते हैं हमारे टोनी जी तो जनता जनता जनता SLM के बारे में भैया ऑफिशियल बोले सुसु ऑफिशियल खलान से दोर अंबासादर इन SLM बताना सुसु का है तोनिया लिखल है SUSU सुसु लिखल है भैया सुसु ऑफिशियल खलान से दोर अंबासादर इन SLM भाई तो एकर बारे में बताई सुसु है कौन सी है बोले इन सूरीनाम से म्यूजियम फंड 6 juni officieel bolle hega plaats van Susu een initiatief van 27 april 2027 mee bolle duizenden invloedrijke personen van Surinaamse afkomst en mensen met een warm hart van Suriname blijven wil brengen in een passenger terminal Amsterdam. Het doel is om de gezamenlijke projecten te identificeren en te ondersteunen die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van Suriname. De Susu ke matlab hai de heel lang vreugde van de Susu Summit die april to ee baat hai an Amsterdam ke bare mein dosto lekin hum aur aage batai bhaiya
हुआ क्या सुरीनाम देश में तुलन जाइयो तब देखियो बोर थांगल है तो मैं जाने अरे रास्ता के बोर थांगल है वो तो ऑफिशियल है बाकी बोर्तुआ में तीन चार को बोर थांगल है तो नहीं जहां लिखल पेरसिल तकूब त तक्सीबा त ई है त ऊबा तो मामी जी के भी हमारा नमस्कार तोनी जी तो बात ये है कि अब क्या हुआ तू जाने है दमुआ पे पाल गाड़ल ले तो ओमा दुनिया भर के भैया बहुत आदमी अपन अपन रिक्लाम ठोके रहे हैं तो अब का बोली सेगा श्री नाम के रखीरिंग बोले आनो माख बोले बूटू लगी बोले अपरे तुलो निकाल लो नहीं हम अपन ओ तो पठावे तो हमें तेल जरी कि सब पाल मजे तुल के रिक्लाम बहुत निकाल के तुल अपरो निकाल नहीं तुल के कस के बूटू लगेगा तो जब कोई अपन बोर्ड टांगी से और लांटी के अने स्त्रातन पाल में हाल तू दिन व्यक्त में से अंदर क्राइट चुन खरोट खरोट बिगी बिगी बूटू वन तू जाने लांटी तो पैसा खोजे कि कहाँ से हम निकाली न तू लग अब देखो का भाईल है अब का भाईल है अब बातचीत ये हो रहा भैया ऑन फ्रीड ओवर एयर ब्लेवन फन का फी एयर बतालिंग ontvangers wachten op de 1800 SRD. Toen kitra admi bole he, ki kakafei konchi he. Kakafei konchi he. Kakafei na he kamer van koophandel. Kakafei ka he. Kakafei asai sanam me sa pawe he. Aur konchi he okar bole he ga. Koopkrachtversterking. Santoki ke tijd pe 1800 rupia admi log ke extra mile hai. Jeke yani ki inko umak kam thi bhaiya. Ab kaam bhail hai. का भइल है कितना आदमी ना पाई से कितना आदमी ना पाई से तुलन जानो ही रखे रहेंगे जब बैठे हैं तो कम करतन के पैसा ना रहे भरे तो ई ना अब देखो काका फेल उन आदमी लोन हमार बुढ़िया पुरनियन बैठ के अगोरे है रोई काली कि कैसे हम अपन कोप करा फर्स्ट तैर के वो पाई तो यारी कावासी गीता सी गुलाम भी आग के पहुंच गए हमारा प्रोग्राम में तो गीता जी आपको भी यहाँ से बहुत बहुत प्यार देते हैं साथ ही साथ रोई काली को भी बहुत प्यार देते हैं जो लंगडाउन से हमारा प्रोग्राम को और इतना जोर तोर से सुन रहे हैं तो रॉय अब देखो काफी जोन है और हैगा कोप क्राफ्ट्स टैंक आदमी ना पाई से आदमी लोन अब सोच में पड़ गए हैं कि हम कैसे मुर्गिया की न हाँ भैया ने रकेश केप तक को भात केप तक को भी पलवन में मार ले अंदर दांत तो रजेश जंगली आपको भी हम स्वागत करते हैं तो जो बर्तुआ पे टांगल ले भैया कि यहाँ मुर्गी बिका बकुआ बिका खेत बिका है कौन ची बिका है दिमुत आलमाल दराई जनानी करे लांटी तो के बूटू दे जब तू लांटी के रास्ता वाला पाल में मल्ले रही है तब और हो सके एबीएस भी ना मांगे दोस्तों तो बातचीत यहाँ ये हुए है का काफी के बात आदमी क्लाख करे है बोले हम पैसुए ना पहली बाटी बोले हमार पैसुआ कब है रोज जाए जाए बंकुआ में पैसुआ डाले हैं अपन और देखे ने बड़ा दुख के बात है रजेश बड़ी दुख के बात है कि लांटी के चाहेंगे कोप क्राफ्ट फर्स्टेरकिंग 1800 तो देवे के और हमारे बुढ़िया परनियन जी के पैसा ऐसा ना है उस सब जा है

goed te opnemen, maar constateerde dat het bedrag nog steeds niet zo had overgemaakt naar hun moneycarta. Sommigen vergeleken de huidige situatie met de onder vorige regering. Toen je baantje het hedelstoel te bollega, toen Chan er was, werd de KKV op tijd gestort. Oude bollega zijn tokira aan te bollega, hemelijke koopkracht versterking en pijsa op tijd stort. Wat daar, Jepse Simon Rusland aile he, pijsa hemelijke opstort, maar toen hielo na bijtheilo baato mousie. Mau silon baithai se ta ab jao ab naro bole jab khet chidiya chum gaya to baat mein pastane mein kya rahe gaya hai na Gita ji to ye baat hai to hiya pe likha gaya mino abino wamoni and me reikanta pa ka cafe ala leisi te ayu rakhere dis mus pai a ka cafe na wan problem den sani dis no boom sei hey. Volgens haar had zij de moment zelf geen geld om voedsel te kopen. Terwijl zij bij de automaat stond, vroeg zij een voorbijganger om hulp. Een andere bijvoorbeeld riep haar toe dat er sprake zou zijn van een storting, waardoor de uitbetaling nog niet was verwerkt. Maar ja, als je sociale zaken kan bolle administratieve afhandeling bij de financiën, bolle Servin Falis bevestigd dat de betaling van de KKV nog in de administratieve afhandeling is. Volgens hem ligt de verder verwerking momenteel bij het ministerie van Financiën. Au atala sawa khatin abhaiya non roe hai jeke na hai u roiga na bhaiya jangli jekar khapet mein bhook lagal hai chota chota ladkan hai maiya ke na hai bappa ke na hai ka kari bhai tab us sab ke muh mein se sarap nikriga दुख होई आँख मसे पानी चोई और ये रखे रे ऊंची जुआ ना देखे है और ना देखे तो अब बोले संतोखी समय पे हम लोग के पैसा ऑप्टाइट मिलत रहा और अब ना मिले है तो ये सब शराब लगी भैया सबके शराब लगी खाई क्यों है आदमी लोग के इस्तलीफ बहुत है जो उतर पास ना है तो कुछ ना है वो तो हुआ धर के आदमी बेस पे चल सके है वो तो हुआ ना रही प्रॉब्लम ना है बुरा मुआ ना है प्रॉब्लम ना है फिल्मुआ ना गई ले देखे प्रॉब्लम ना है मैं घरवा में खाइकवा चाहिए रहे के तो इस सब के साथ हम इस सब के दुख में हम शामिल है एंड या व्हाट मुतिक शेख में से अब जनता जनता मुते खून खलूल थे अब पैसा लेनी ही नहीं करके अब अपन जीवन को रकम तुलन प्रॉब्लम ऑप्लोस कर तो दत 1800 नेट वेर एन गेस्टोर्ट वर्ड हमारी जनता और आगे हम जाई है हाइटियान के भैया हाइटी देर द हेल वेका हाइटी खदवंगन तो नहीं तो वैसे कर फन वेका और लोग सिंबोलिक ओकर देश में बड़ा लड़ाई हुए है और तू जा रहे ईरान के और कौन कौन देश के कपड़ी लोन जो लड़े उस सबके नाम अमेरिका में वेकुआ हुए तरी से बता दे तो ये सब बात है हमारे जनता और हाइती बोले हैं ओपनिंग वेस्ट रहे जो फीफा में रहा वर्ल्ड कैंपियंस का पे खुद दोंगन है अंतवेरे फन द टीनी तो फरांदर ना द वर्ल्ड फुटबॉल बॉन्ड अन अफबेली फन ओरलॉक सेन ऑफ द शर्ट फॉरबोट कि तो के वोट अपन ट्राई पे नमक है कुछ और लोग के चीज के तीकन फीकन करे के और एक मारे उसे आपके फरबीर के तो के कौन कम तू सपोर्टर बाटे तू सपोर्टर बाटे भैया तो के चाहेगा स्पोर्ट के चीज जाए के और लोग फल लोग के चीज कौन चीज जो है आप कपड़ा फपड़ा पे धर के हुआ पे स्टेडियम में करिए तो ठीक करी से हमारे कहना ये है आज स्पोर्ट मैन मैन द मुझे स्पोर्टिव ओक आई कैन यू हैप्पी नेक्स्ट टाइम आके मैंने और लोग फन वेरल ए वार दर ओ मन दैट नो मी दैट मुझे खेन स्पोर्ट सो इस मेंस सो इस तो तुलन जाने नीदरलैंड भी बलवा खेली हाँ तो और आइए भी बाल खेली दोस्तों एक बारे में आप लोग जइयो और हमारा दोस्त राजन द्वार का स्पोर्ट के बारे में जाना बतिया है तो कर काम में हम दखल नहीं वो ओकर काम है तो अब देखा भाई ले पोलन पोलन क्लिंप ए सुंदर ए टोनी हाँ पोलन भैया कुछ बताई तू बड़ा जोर पोलन जा है तो The Poland claimed a sundering of Europese migrasi pact. ओकर मतलब है गा भैया पोलन है गा इस नर एक अपरेश उ बोले यूरोपी से जो यूरोपा के असील सुकर से

migratie. Ter vrijdag in werking is getreden. Het land zal geen extra asielzoekers accepteren. Oese bolem ikko extra asielzoekers. Namangila Polen bole he. To bole hega. Het land is vrijgesteld van de herverdeling van migranten binnen de Europese Unie. En daarbij horen de onkosten. Dus Tony, jij mag gaan. Jij bent geen asielzoeker, jongen. Dus vakantie je kooi mangen jij. Dan mag je gewoon naar de Polen gaan. Dit is puur namelijk voor die immigranten. Doen aanweer bij jou. De kok kan bijl hem. Aur aage ko apna hum program ko zunate hai. Aur zunate hi rahenge. Aur yahan pe dekho bhaiya Suropa Viro jo bole 300 million bhaiya dwangsom ho ke hai ga janta ke bhare ke lanti ke bhare ke aur jitra aadmi ke hai khadom jagara conference ne conference ke okay mange hai sab tarah kare to aasha samujh bhi aa gaya hai to cubans aurat bhaiya cuba ek aurat ke baare naam mein bada dher cuban hui hai na aasha ji तो यहां पे बतावे क्यूबांस फ्राउन बेफ्राइड uit mensenhanden derde slachtoffer meldt zich op een op de luchthaven भैया इसबके सबन लेके आवे है सूरीनाम देश में क्यूबान के इसबसे ले जा प्रोटेस्टवे हौसल करवावे भैया जबरदस्ती चलो हौसल करो जाने कौन हौसलवा ना चापू वाला हौसलवा मौसी समझ गए तो कौन हौसलवा करे राकेश मौसी से जाने है बतिया ई है कि औरत के समान लावे है क्यूबा के औरत के और बोले चल तो के हुआ पे हम मोई मोई काम देबे रेस्टोरेंट में जइयो बामी बनइयो नासी गोरिंग बनइयो नहीं मोई मोई काम करी और ले जाए के प्रोस्टोस्टवी में धकेल ले है और ना कि शहर में ले जाए के जंगल वाला प्रोस्टोस्टवी में धर दे भैया कि जाओ हौसल करो और ऊपर जाओ हौसल कर लो पर शरीर बेच लो बाटे तो तोर पैसों ऊ ले लेवे तो ये अत्याचार है कि ना वो औरत अपन शरीर बेची से प्रोटेस्टवी करी से और वो सब औरत के तू जबरदस्ती लाई के मैं आंध्र बदूले और प्रोटेस्टवी में धर देले बाटे फॉर वेंसन ना सुरीनाम से खबरा और बोले 9 तारीख के एक क्यूबा के औरत या भगल है भैया भगल है और जाए किसी पाही नालिश करी से डियर वार्निंग पर मारी फॉर ब्लेफन मोक्स लाख तो फॉर वार फॉर मेंशन हैंडल और जाए के नालिश करी से तो एमा पकड़ान है आदमी भैया और बोले है तेजस अक्सी वर्न ट्वी फॉर मीन द लाख तो फॉर आन कट्रोफन दुगो मिलल है और बताए गए हैगा फॉल्स बिलीफ द लाई से और बोले लाई से का अनफरक्लारबार स्कूल फन 6000 अमेरिकन डॉलर के बोले उसे के स्कूल दे से ना आन कम सो हिन एन अनफरक्लारड स्कूल फन 6000 Amerikaanse dollars zijn opgeleerd, ook zouden zijn beperkt in hun bewegingsvrijheid. De vrouwen verklaarden verder dat zij verder gedwongen om de om als prostitute usapke zo waren bole 6000 dollar toe bharie ab jao kamai kamai humme bharo to ye baat hai to kumar shanu casino ke baat cheez kare hai ki ab dekho क्या हो रहा है हमारे जब देखो भौजी के का भइल है हमारे प्यारी भौजी के का भइल है हां हवा पंप करे आरजेस तो बात ये हुए भैया भौजी के का भइल हमारे भौजी के कटली से दौरैले माटे नानी ई चक्कल से देख हमार श्री नाम में और एको मन फाल पार्टनर एंड स्कॉन्शियस भौजी के और पापा आन में कटली से भैया मारी से ओ तो के आईना फैना सब झाड़ के न चक्का चूर कर दे से ई बात हुए भैया बनवारी स्त्रात है बुधवार के तो बतावे सरनाम में पार्टनर एंड हर्शियस और बोले हैगा अन अन गटलीस लेके गया अनफाल करी से ओ तो फोटो तोड़ दे से हो टाइम के सिपाही एकर बारे में गइल है और पार्टनर अल टू इयर्स सामन ऑफ एन एड्रेस वुंडन फॉर द फ्रॉम द मदर इज फ्रॉम बेबी तो ये सब बात है हमारे भौजी के सब कोई भौजी के देवे कुकू खाई के भौजी से प्यार करे है आई भौजी के कटली से गइला काटे आप लोग जानो है और ये हैगा यशरून के बारे में सफीरा
Gavira Yesru Maya Amerika Merha van de OAS top me, top, top medewerker ra. Aur ek sab diplomat passport sab leke aur dhar de sega punchik bare mein Amerika diplomat visum ekar jo raha Yesru ke Safira je ingetrokken en ik jij ke langer rechtmatig feest me verblijf kretra hoor het Amerika me api Suriname chiliail he Amerikaanse minister van buitenlandse zaken bole ke visum intrekkeli he om de Suriname ik strafrechtelijke onderzoek naar vermoedelijke corruptie tegen Yesri loop corruptie bayaatje yo ham suna suna thak gai ni sarname bhaiya itna corruptie deswa khali corruptie se chale bhaiya 1 ghanta hui ye hamara news wa हाँ ये घंटा होई गया ये घंटा ये होई गया तब तो समझ गए ले क्या होने वाला है तो दोस्तों इसी प्रोग्राम से Never know, those never know. हमारा प्रोग्राम हर शुक्रवार को शाम को 6 से 7 बजे तक चलते हैं मंगलवार को शाम को 6 बजे सब रविवार को दिन में 1 बजे हम हर हाल करते हैं

दोस्तों हम चलते हैं एक मस्त भरी गाना के ओर, लता जी और राजकुमार। और इस फिल्म बहुत पुराना फिल्म है, फिल्म साधना का ये गाना है। लता जी इसमें यानी कि इस गाना को गाया है दोस्तों, और इस गाना आओ मिलकर सुना जाए। कुछ पुराने गाने से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे।

बसी हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, ये एक बहुत मस्त भरी पुराना गाना है दोस्तों। और ये है लता जी, इसका गाना इस फिल्म में यानी कि इस गाना को गाया है। और आगे को हम अगला गाना की ओर बढ़ते हैं और आज हम आप लोग को मस्त भरी गाना से, और जैसे हर हर प्रोग्राम में चलाते हैं आज भी हम चलाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम और आगे चला जाएं, और ये भी एक पुराना गाना है, सब कुछ सीखा, सब कुछ सीखा है हमने, मैं सिर्फ एक ही बात नहीं सीखा है, और वो क्या है भैया, हम तो है अनारी, और जो अगर अनारी होगा तो क्या सीखेंगे, ये बात हम नहीं कहते हैं, मुकेश जी कहते हैं, आओ मिलकर सुना जाए।

0: सब कुछ सीखा हमने और सिर्फ एक बात जो नहीं सीखा है तो वो है होशियारी। दोस्तों होशियारी, हम अपना प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाते हैं और मस्त भरी पुराने गाने से आप लोग को आज हम फिर सेवा करेंगे हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों। और कहते हैं जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग तो तुम भी गुनगुनाने लगोगे। तो हमारा आपसे यही बात है कि जो गाना हम यहाँ पर चलाने जाते हैं रवि जी की है फिल्म जो इसमें काम किए हैं वो शमी कपूर आशा परेक ने। और अगर आप ये गाना सुनेंगे तो मुझे यही विश्वास है, यही गारंटी है कि आप भी गुनगुनाने लगेंगे। मुझे यही उम्मीद है दोस्तों। तो आओ मिल के सुना जाए कि जॉनी कौन गाना द्राई करे कि हम में भी बैठ के गुनगुनाने पड़ेगे। तो आओ सुना जाए।
1: तुमसे यही सवाल किया था
2: क्या
1: मैं तुम्हें भूल जाऊं तो
2: तुमने क्या जवाब दिया?

और जो तुम मुझे भुला ना पाओगे जब तुम मुझको देखोगे तो कैसे आप आएंगे। ये बात मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाई है दोस्तों, अपना प्रोग्राम को हम और आगे को बढ़ाते हैं और आज भी आप लोग के मस्त भरी पुरानी गाने से हम आज आप लोग को सेवा करेंगे। हम चलते हैं, राज कपूर का फिल्म है और मुकेश जी ये गाना को गाए हैं।

उस देश के वासी हम हैं, और वो देश कौन है दोस्तों, जहाँ पे मुकेश रहते थे, और वो है गंगा जहाँ पे बहते हैं, और हम उर देश के वासी है दोस्तों, सूरीनाम के देश के वासी तो हम सब है। और मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाए हैं दोस्तों, जो अगर जो आप मुकेश की सुन चुके होंगे तो हम चलते हैं रफ़ी जी के, रफ़ी जी के गाना भी सुनना चाहिए, और वो है इशारों इशारों में क्या होता है, इशारों इशारों में तो कभी दिल चला जाता है, नहीं दिल दिल को चुरा लेता है, दोनों होता है ना। तो आओ मिलके सुना जाए मोहम्मद रफी जी की आवाज।

इशारों इशारों में दिल देने वाले परमान श्री मोहम्मद रफी की आवाज में इस गाना के आपने सुना है और आशा भोसले की आवाज में दोस्तों। और अगर रफी जी जब पिक सुनाया है तो हम तुरंत जाते करोड़ों दिल को चुराने वाले, और वो है मुकेश फिल्म का नाम है श्री 420 1955 तक का ये फिल्म है जिसमें राज कपूर और नरगिस ने काम किया है दोस्तों। आओ मिलके सुना जाए।

और फिल्म श्री 420 का ये गाना हमने निकाल कर आप लोग को सुना दिए है। नई खदीर 55 का फिल्म राजकुमार और नरगिस का इस गाने में गाया है मुकेश जी और लता जी। दोस्तों हम बढ़ते हैं फिर अगला गाना की ओर, वो है परमाशी मोहम्मद रफी का ये गाना है और इसमें काम किया है शायरा बानो राजेंद्र कुमार। फिल्म का नाम है अरमान, फिल्म के नाम है अरमान और ये गाना क्या है धोरो मस्त भरी पुराने गाने से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे। मिशिक है शंकर जय किशन का और इस गाना को लिखा है हसर जयपुर का ये गाना है और आओ मिलकर सुना जाए।

तुम्हारी हर बांस पे है मुझे बहुत नाज दोस्तों। शेरा बानू राजेंद्र कुमार ने फिल्म अरमान में काम किया है और परमाशी मोहम्मद रफी जी के गाना है हसर जयपुर के साथ में। और हम और आगे को चलते हैं अपना प्रोग्राम को लेकर हमारे दोस्तों, और ये फिल्म का नाम है और देवानंद उषा किरण फिल्म के नाम है पतिता का ये फिल्म है। दादा हेमंत कुमार और दीदी लजा जी के आवाज में इस गाना को आओ सुनिए।

दादा हेमंत जी के आवाज में आप लोगों इस गाना को सुना है और एक मस्त भरी रोमांटिक हिंदी सॉन्ग है दोस्तों। इसमें काम किया है देवानंदनी और उषा किरण ने। फिल्म का नाम है पतिता दोस्तों। और उसके बाद हम चलते हैं और एक गाना के ओर और वो भी है फिल्म के नाम है, ये भी एक बहुत पुराना फिल्म है, अलबेला का ये गाना है। हमारे दोस्तों लता जी इस फिल्म में इस गाना को गाया है और इसमें भगवान ने बहुत कमाल किया है दोस्तों। आओ मिल के सुना जाए ये गाना क्या है।

भोली सूरत दिल के खोटे, और नाम बहुत बड़ा है कितरूर कितरे को, लेकिन कर्म बहुत छोटे है दोस्तों। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े हैं बाकी दिल से बहुत खोटे हैं हमारे दोस्तों। और हमारे दोस्तों, और ये गाना को जिसके सपने में हम रोज आते हैं, और महेंद्र कुमार और लता जी बताए गए हैं, नई खंती सेफन तक का ये गाना है, आओ मिल के सुना जाए।

जिसके सपने हमें रोज आते रहे और गुना गुनगुनाते रहे, वो कहती कि क्या तू ही रह ले भैया। और जो गाना अब हम आप लोग को सुनाएंगे ये है गोरी तेरी नैनों में हम बस गए हैं, हम बस गए हैं। गोविंदा करिश्मा का ये फिल्म है और ये गाना को गाया है हमारा कुमार शानू, कुमार शानू।

वाह क्या बात है शारदा जी, शारदा जी आपको सुनाएं ये शानदार गीत हमने पेश किया ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए एक नंबर हमने और रखे हैं, जी हाँ, क्या ख्याल अगर जब मैं आपको ये सुनाऊं इस तरह से।

वाह क्या बात है, मुस्कुराए जा दर्द भाग जाएंगे। ये शानदार गीत चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, तो क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊं? जी हाँ, ये बहुत पॉपुलर गीत था अपने ज़माने में, तो आप सोच रहे होंगे कौन सा गीत है। चलो सुनते हैं।

कभी भूला कभी याद किया, अलका जी और मुकुल अग्रवाल, ये दोनों मिलके ये शानदार द्वैत आपको सुनाए हैं फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम पर। आप चुने जो लोग चुन की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए, क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊं रफ़ी साहब के फिल्म तुम हसीन ए तुम हसी मैं जवां, नई गिनती सईफ अंत का ये गीत।

दिल अच्छा है, अच्छी सूरत। रफ़ी साहब छेड़छाड़ रहा था ना, तो रफ़ी के छेड़छाड़ देखकर सुनकर और जानकर तो महेंद्र कपूर जी भी भड़क उठे। तो लीजिए, महेंद्र कपूर भी कहता है चलिए मैं भी छेड़खानी करूँ ना। इसलिए महेंद्र कपूर जी इस तरह से फिल्म किस्मत में से निकितिन अख्तर शास्त्री का ये गीत

1, 2, 3, बेबी या, ये शानदार गीत चला ओबेन अय्यर के साज पर, हमने फिल्म किस्मत में से निकाले हैं। तो मुकेश जी कह रहा है, भैया अगर आप लोग छेड़खानी कर रहे हो तो मैं भी पीछे थो रही हूँ।

जाना तुम्हारे प्यार में शैतान बन गया हूँ, ये गीत आपको सुनाया गया मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, ये भी एक शेरखानी का गीत था। तो चलिए आशा जी और शमशाद बेगम जी, आशा और शमशाद बेगम जी भी अपने में छेड़खानी कर रहे हैं, तो चलिए आप सुनते हैं इस तरह से आशा जी और शमशाद बेगम का छेड़खानी।

आयशा जी और शमशाद बेगम मिलके आपको सुनाए ये गीत और हमने पेश किए कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो है, चलिए आशा जी, आशा जी चलिए सुनते हैं वो कौन सा राज बताना चाहती है। हाँ मैं भी सुन जानना चाहता हूँ, आप भी जानना चाहते होंगे, तो लीजिए आशा जी के राज क्या है।

0: अच्छा तो ये बात है, आशा जी ने न कहा भी और न बताया भी। चलो अच्छा अभी सुन लेंगे कैसा राज वो बताना चाहती थी। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चून हैं, तो अगर जब आप चून हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, तो हम आपको ये गीत सुनाते हैं।
1: अय्या।

दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। जी हाँ लता जी, आप खुद सुनाए निगदी से इब्ने सस्तक का ये गीत 1967 का ये गीत फिल्म शागिर्द में से निकाल कर हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए सुनते हैं मंगल सिंह क्या कह रहा है, ये भी छेड़खानी की बात कर रहा है। चलो सुनते हैं मंगल सिंह क्या कह रहा है।

टाइटल सॉन्ग रफ़ी साहब की हम आपको सुनाए हैं और शंकर जय किशन के साज पर फिल्म प्यार ही प्यार में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, ये गीत आप सुनिए, बस इस तरह से आ रहा है श्याम जी। हाँ ये गीत

मैति मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए ये शानदार गीत फॉन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने निकाले हैं नेघिनती नेघिन शस्त्र से 1969 से ये गीत। चलिए प्रोग्राम में हम पेश करते हैं क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊं। जी हाँ, एवरग्रीन किशोर कुमार फिल्म धर्मात्मा में से नेघिनती फैफ से इफ तक का ये गीत 1975 का ये गीत क्या ख्याल है। हाँ

एवरग्रीन किशोर कुमार, आपको सुना है ये शानदार गीत नेगेटिव फाइव से ही मित्र को 1975 का ये गीत फिल्म धर्मात्मा में से हमने निकाले हैं। चलिए आप भी हैं और मैं भी हूँ, मैं चला रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप सबका हृदय से स्वागत है। आपका स्वागत करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं इस तरह से।

जी हाँ, तुम बिन रफ़ी साहब की आवाज़ में सुनाया गया ये शानदार गीत काफ़ी प्रचलित था, अब भी है और शायद ऐसा रहेगा भी, यानी बहुत पॉपुलर था, है और पॉपुलर रहेगा। ये शानदार गीत हमने पेश की। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं राहत फ़तेह अली खान। जी हाँ, राहत फ़तेह अली खान आपको क्या सुना रहा है।

0: राहत फतेह अली खान जी और सुशांत जी मिलके फिल्म दे दना दन में से हमने निकाल कर आपको सुनाए हैं। चलिए विज्ञापन से पहले हम आपको ये गीत सुनाते हैं, क्या ख्याल है अगर जे ये हम आपको सुनाएं।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

0: वाह क्या बात है, लता जी की आवाज़ में आपने सुने ये शानदार गीत फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के www.faunfm.nl पर। आप चुने जो लोग चुन की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है और कार्यक्रम आप सुन रहे जहाँ भी होंगे जो भी कर रहे होंगे एक बार फिर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा आपको हृदय से स्वागत किया जा रहा है।
1: Geschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden.

मधुमन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। फिल्म साजन बिन सोहागन निगतिन अख्तसेफिन तक येसुदास उषा खन्ना के साज पर हम आपको ये गीत सुनाए हैं। आप चुने फान हिंदुस्तानी रेडियो पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आप कार्यक्रम नज़दीक से बैठ कर सुन रहे हैं जहाँ तक मेरा ख्याल पता चला है, तो हम आपको ये सुनाते हैं इस तरह से।

आतिफ असलम आपको सुनाएं। ये शानदार गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए हमने ये गीत रखे हैं, क्या ख्याल है? आ रही है सलमा आगा जी। जी हाँ, सलमा आगा जी।

0: सलमान का आपको सुनाए ये शानदार गीत और हमने पेश की कार्यक्रम में, आपको अवश्य अच्छा लगा होगा ये गीत। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है, चलो सुनते हैं ये गीत। हाँ
1: सुने

0: लता जी आपको सुनाएं हंस परदेसी और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग ऐप करते हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कार्यक्रम सुन रहे हैं। जैसे अल्फानंद रैन के रहने वाला श्रीमान, चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं। और क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये सुनाऊं
1: के आ गई रुत मस्तानी ओढ़ो।

ढोल सजना ढोल जानी रफ़ी साहब और लता जी मिलके आपको सुनाए हैं, ये कार्यक्रम में हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, क्या ख्याल है? चलो सुनते हैं कि राहत फ़तेह अली खान जी, जी हाँ, अपने झड़कने वाले जिया के बारे में क्या कह रहा है। चलो सुनते हैं, बहुत दिन हुए हम भी नहीं सुने कि धड़कते हुए दिल कैसा होता है। राहत फ़तेह अली खान जी।

जिया धड़क धड़क जाए। तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं। क्या देखते हैं शारदा जी, राहत फतेह अली खान के धड़कने वाला दिल को राहत दे सकती है। चलो सुनते हैं।

0: तितली उड़ी उड़ जो चली शारदा जी। शारदा जी आपको सुनाए ये शानदार गीत। ये शारदा जी की पहली गीत थी जो फिल्म सूरज में निकला है शंकर जी के जय किशन के साज पर।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling Sales

वाह शाबाश, क्या बात है लता जी की आवाज़ में हम पेश किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में शकील बदायूं की लिखी हुई गीत लता जी की आवाज़ में फिल्म आदमी में से निकालकर नौशाद अली के साज पर। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, ये भी एक लता जी का गीत है और साथ दे रही लता जी और मुकेश मेरी सूरत तेरी आंखें में से निकाल रहे हैं। ये प्यारा गीत सुन लीजिएगा मुकेश जी और लता जी।

ये किसने गीत छेड़ा और किसने किसकी जुल्फ बिखरी। जी हाँ लता जी और मुकेश जी मिल के आपको सुनाए हैं फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें में से निकाल कर हमने पेश किए। चलिए आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, बहुत आप पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ इस तरह से।

फिल्म सुर में से निकाल कर महालक्ष्मी ने आपको सुनाई। द्रमर तो पीट पाट कर द्रम रख दिया। बहरहाल फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, जो लोग चुन के मीटर पर, आपका स्वागत है। फिल्म सुर में से निकाले जैसे मैंने कहा और हमने पेश की। चलिए अगला गीत। ठहर जाओ अगर आपको कहीं जाना है थोड़ी देर रुक जाओ, हाँ थोड़ी देर रुक जाना।

थोड़ा सा ठहरो, लता जी आपको सुनाए ये शानदार गीत फिल्म फिक्टोरिया तूनो द्री में से निकाल कर हमने पेश किया है ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और ये है एवरग्रीन किशोर कुमार और आशा जी आर डी बर्मन के साज पर। फिल्म तो आपने अवश्य देखे होंगे, फिल्म सीता और गीता नेगतिन तुएजी में 1972 का ये गीत है, 72 का ये फिल्म है और रमेश सिप्पी और जी पी सिप्पी बनाने वाले इस फिल्म का। रमेश सिप्पी, जी पी सिप्पी, ये दोनों सिप्पी जो है ये दोनों फिल्म शोले के बनाने वाले हैं और साथ मिलकर क्या नाम है सलमान खान का पिता का, सलीम खान, सलीम खान और जी पी सिप्पी ने मिलकर ये फिल्म बनाए हैं फिल्म सीता और गीता। हम इसे निकाल कर ये गीत हम आपको सुना रहे हैं।

आशा जी और किशोर कुमार जी फिल्म सीता गीता में से निकाले हैं और आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं। जी हाँ, ये गीत रफ़ी साहब का ये गीत है, बहुत पुराना गीत है, निगेटिव फिर शस्त्र का। ये गीत को लेकर कितने बैठक गाना में भी गाए हैं, लेकिन ये बैठक गाना निकाले कहाँ से? फिल्म जी हाँ, फिल्म सजनी से भैले मुलाकात। फिल्म का नाम है सजना से भैले मुलाकात। फिल्म का नाम है सजना से भैले मुलाकात। रवि साहब आपको सुना रहे हैं निकिति फिर शस्त्र का ये गीत, सुन लीजिएगा।

रफी साहब की आवाज में आपको सुनाया गया है ये गीत, जब से दिखली सूरतिया तोहार गोरिया। जैसे मैंने कहा नहीं कि थी, फिर से अशक का गीत है, फिल्म है सजना से भैले मिलनवा, उसी फिल्म में से निकाल कर हम आपको सुनाए हैं। तो क्या ख्याल है अगर हम ये चलाएं आपके लिए कि लोग तो कहते हैं लेकिन पता नहीं निर्णय आपका क्या है, दिल उसे ही देना चाहिए जो आपके लिए जान दे, पता नहीं सुनते हैं।

उदित नारायण जी आपको सुनाए चांद की चांदनी गुलाबों की कली मेरे लिए तुझे रब ने बनाया है। हमने बहुत कोशिश की ढूंढने के लिए कौन सा फिल्म का या नॉन फिल्म का होगा, मुझे नहीं पता। अगर आपको पता हो, अगर मुझसे बता देते तो बहुत अच्छा होता। हमने बहुत ढूंढे, नहीं मिला, और शायद सुनने वालों श्रोताओं को भी अच्छा लगे। ये फिल्म का नाम, कौन सी फिल्म का ये गीत है, चलिए गीत हम आपको सुनाते हैं। चलिए जी हाँ, रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत है।

0: जले।
1: रफी साहब आपको सुनाए शमा जले या न जले। www.pintfaun.fm.nl पर आप चुने जो लोग चुनती है मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और बढ़ाते हुए चलिए हम पेश कर रहे हैं ये गीत इस तरह से।

दीवाने को प्यार से देखो, प्यार से पूछो। रफी साहब ने तो छेड़ दी। जी हाँ, प्रेमिका को छेड़ दी तो क्या मुकेश जी ये कह रहा है, अगर आपने प्रेमिका को छेड़ दी तो चलो उनकी तारीफ कर देते हैं हम। दर्पण को जे देखा माई तो मुकेश द हार्ट ऑफ

दर्पण को देखा जब तूने किया सिंगार, बार बार किया सिंगार। मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए ये शानदार गीत, इस तरह से फिल्म उपासना में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

फ्रॉम द मूवी जवान से हमने पेश किए है सुनने वालों जिंदा बंदा शहजादा है फिल्म का नाम। चलिए इसी फिल्म से ये नाइस सॉन्ग हम पेश करते हैं छेड़खानियां।

0: शहजादा है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं छेड़खानियाँ। छेड़खानियाँ के बाद चलिए मिलकर सुनते हैं मैं निकला। क्या लेकर मैं निकला? गड़ी लेकर।
1: ओ मैंने एक मोटरसाइकिल दिला दो ना।
2: कुछ और मंग लेना, मोटरसाइकिल लो।
3: दिला दीजिए ना।

मैं निकला गड्डी लेके, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी गदर 2। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते वत झुमका।

झुमका रॉकी और रानी की प्रेम कहानी इसी फिल्म से हमने पेश की है वो झुमका जुग जुग जियो इसी फिल्म से चलिए द पंजाबन सॉन्ग

द पंजाबन सॉन्ग अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी जुग जुग जियो। तू झूठी मैं मक्कार फिल्म का नाम है सुनने वालों, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं शो मी योर ठुमका।

शो मी योर ठुमका फ्रॉम द मूवी तुम झूठी मैं मक्कार, इसी फिल्म से हमने पेश की है। सुनने वालों एक और गीत हो जाए फ्रॉम द मूवी जवान से, नॉट रमैया वस्तावैया।

रमैया वस्तावैया भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी जवान से। गणपत है फिल्म का नाम। इस न्यू फिल्म से हम पेश करते हैं हम आए हैं।

फ्रॉम द मूवी गणपत से आपने सुने हैं हम आए हैं, पठान है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से आप सुनेंगे बेशरम रंग।

हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी पठान से हमने पेश किए हैं मेरा पिया घर आया।

अभी आप सुन रहे थे कुड़ ये नी तेरी, और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं, गीत का बोल है तुम क्या मिले।

The title from the movie तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया भी आप सुन रहे थे सुनने वालों। Fighter है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं इश्क जैसा कुछ।

0: फ्रॉम द मूवी फाइटर से भी आप सुन रहे थे इश्क जैसा कुछ। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, इसी फिल्म से एक और गीत हम पेश करने वाले हैं आप सभी के वास्ते, अखियां गुलाब।
1: लाइन मार लेना।

अखिया गुलाब अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। जवान है फिल्म का नाम सुनने वालों, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं चलिया।

फ्रॉम द मूवी जवान से भी आप सुन रहे थे चलिया। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी इसी फिल्म से हम पेश करते हैं वो झुमका।

अभी आप सुन रहे थे वो झुमका, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से हमने पेश की है सुनने वालों। पठान है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से ये सॉन्ग हो जाए।

हमें तो लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी पठान से हमने पेश किए हैं सुनने वालों। दिल का टेलीफोन ड्रीम गर्ल टू से आप सुनेंगे।

दिल का टेलीफोन अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी ड्रीम गर्ल, तो उसे हमने पेश किए हैं सुनने वालों। टाइगर ट्री है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं लेके प्रभु का नाम।

लेके प्रभु का नाम अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी टाइगर 3 से हमने पेश किए हैं। जरा सा हम देखे, जी हाँ, फिल्म का नाम है डंकी और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं लुटपुट गया।

लुटपुट गया अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी डोंकी से हमने पेश किए हैं सुनने वालों जवान। इसी फिल्म से एक और गीत हम चलाने वाले हैं नौतरमैया वस्तावैया।

फ्रॉम द मूवी जवान से भी आप सुन रहे थे रमैया वस्तावैया। हीरिये रेस्त्री इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते, चलिए मिलकर सुनते हैं।

0: Subscribe now.
1: हीर ये अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी रेस 3 से हमने पेश किए हैं ला पीली अखिया फ्रॉम द मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया।

0: But
1: useless. Okay.

लाल पीली अखिया भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फाइटर। इसी फिल्म से एक और गीत हम चलाने वाले हैं, शेर खुल गई।

फाइटर है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं शेर खुल गए, मैंने पी रखी, फ्रॉम द मूवी तू झूठी मैं मकार।

अभी आप सुन रहे थे मैंने पी रखी है फ्रॉम द मूवी तू झूठी मैं मक्कार, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते।

दिल लेके दर्दे दिल दे गए फ्रॉम द मूवी वांटेड से हमने पेश किए हैं। सुनने वालों, मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, अरिजीत सिंह आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी फटा पोस्टर निकला हीरो।

रंग शरबतों का मैं मीठे घाट का पानी, अभी आप सुन रहे थे फटा पोस्टर, यानी फिल्म का नाम है फटा पोस्टर निकला हीरो, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे।

तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह जी की आवाज़ में तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, द डर्टी पिक्चर है फिल्म का नाम।

मेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी द डर्टी पिक्चर। अतीफ असलम आपको सुनाने वाले हैं दिल मेरी ना सुने।

दिल मेरी ना सुने, अभी आप सुन रहे थे अतीफ असलम की आवाज़ में। सुल्तान है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं जग घूमिया थारे जैसा ना कोई।

जग घूमे आधारे जैसा न कोई, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी सुल्तान से हमने पेश किए हैं। तेरे नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे।

मेरे नैना बड़े काते हो मार ही डालेंगे। अभी आप सुन रहे थे फलक तक चल साथ मेरे।

फलक तक चल साथ मेरे, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी दशन से हमने पेश किए हैं। सजदे की ये है लाखों लाखों दुआएं मांगे, पाया है मैंने फिर तुझे। खट्टा मीठा है फिल्म का नाम, चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, और फ्रॉम द मूवी फिदा से हम पेश करते हैं

अभी आप सुन रहे थे दिल मेरे ना और इंतज़ार कर फ्रॉम द मूवी फिरा से हमने पेश किए हैं सुनेवा।

हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है अब द प्लस रेडियो पर नतीलक उक्त बलैस्त्र इंटरनेट के लहर द्वारा फाहुन एफएम पिंटनल पर ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम। अनतिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल एंड बदंते जहां पर भी हो, जिस हाल में हो, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार और प्रेम मोहब्बत के साथ आप सभी तक पहुंचे। मैं थिल फील लाइस्टर प्लेजियर के साथ नतिलक। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइश हो, जरूरी खबरें, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर, या तो आप एक ऑर्गा मैन हो, ऑर्गा वुमन हो, इन्फॉर्मेशन और खानी साथ, और तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं या अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान करवाना यारो, तो देखना कैसे चमककार पे चमककार हो जाएगा। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तमाम लोग फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। किफायत सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी स्टार बेयोंस ऑफ द ईस्ट प्लाट्स। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अब 07-213-65-98 पर, या तो आप तार करें अब 07-365-22-47 पर। तो जो भी रेडियो का काम हो, देंक ऑन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना यारो, चर्चा करते रहना, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, और फुल टीम की तरफ से इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, तो गुजारिश बिनती निवेदन प्रार्थना किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और ओ को भी बनाए। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें तैरेंस कंटोर यूरो अपनोल सीवंतक ट्वी डर्टीन फेवन सीवंतक फेंसेस्टर 98 होना चाहिए 07-213-65-98 पर आप तार करें, या तो आप 07-365-22-47 पर। तो जो भी रेडियो का काम हो, देंक ऑन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, या तो आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने औरों को भी बनाए। En niet te vergeten om een beetje reclame voor ons te maken. Fahun Hindustani Radio, 24 hours at your service. Wat ik moet ik net maar zoena, dit aan op je dono bhai ben jo jaren 80 mein duniya bhar mein halchal macha di thi. Met het nummer aap jaisa koi mere zindagi mein aaye. एक अति सुंदर बयान है, भाई बहन हमने मिल के गाए हैं, बीबीसी लाइव 1980, तेरे कदमों को चूमूंगा, नासिया एंड सोहेब हसन।

0: ब्यूटीफुल सॉन्ग तेरे कदमों को चुमूंगा, भाई और बहन सोहेब अंत नासिया हसन के मधुर आवाज में इति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। 1980 बीबीसी लाइव ऑन द हाईक्यू ऑडियो टेलीविजन स्टूडियो। तो दोस्तों, वादा के मुताबिक जैसे मैं आप सभी से कह चुका था, कुछ कहानियां और कुछ बातें सुनेंगे आप ये महान गाने वाली के बारे में। महान अभिनेत्री बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का तबस्सुम ने एक इंटरव्यू लिया था एडियार तख्तख इन बॉलीवुड मुंबई। तो मिल के सुनते हैं
1: ये शेर। सुनिए, फूल खिलता है बिखरने का तसव्वुर लेकर, फूल खिलता है बिखरने का तसव्वुर लेकर, जिसको हंसता हुआ पाओगे परेशान होगा। पाकिस्तान की मशहूर सिंगर नाजिया हसन से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनका इंटरव्यू लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई थी। लेकिन उस वक्त बहुत ज्यादा तकलीफ हुई जब मैंने ये सुना कि उनकी डेथ हो गई और वो भी सिर्फ 35 साल की उम्र में, उन्हें कैंसर हो गया था। और उसके बाद उनकी बहुत सी प्यारी प्यारी बातें मुझे याद आने।
2: उनसे जब दिल की बात होती है, वजद में कायनात होती है, क्या करें बात बेवफाओं से, बात वालों से बात होती है। आइए आज उस लड़की से बात करें जिसके एक ही गाने से फिल्म इंडस्ट्री में उसकी बात बन गई, नाजिया हसन। नाजिया
3: जी,
2: कैसी हैं आप?
3: ठीक ठाक।
2: बिल्कुल ठीक ठाक। मैं ये चाहती हूँ कि आज प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले क्यों ना हम आप ही की आवाज़ में, खालिस शुद्ध आपकी आवाज़ में, यानी बगैर साजों के, वो गाना सुन लें जिसने तहलका मचाया था।
3: आप जैसा कोई।
2: बिल्कुल
3: ठीक है,
2: जरा गुनगुनाइए।

0: ठीक है
1: बस बस। अरे रे रे रे, ऐसा लगा जैसे दिल चलते चलते दिल की धड़कन बंद हो गई हो।
0: आगे बढ़ने से पहले मैं जो आपको देख रही थी उसे देखते हुए एक ख्याल मेरे जहन में आ रहा है, वो ये कि आप में निस्वानियत ग्रेस बहुत ज़्यादा है, और ये लोच ये लचक खासतौर पे गाते हुए जो आप मगन हो जाती हैं और आपके अंग अंग से रिदम फूटा पड़ता है, ऐसा लगता है कि आपने डांस भी सीखा है।
2: नहीं
0: नहीं सीखा?
2: नहीं।
0: तो यानी सारी कारस्तानी जो है बगैर सीखे हुए हो रही है?
2: कारस्तानी
0: कारस्तानी मतलब ये कयामत, ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट जो है बगैर सीखे हुए सब चला आ रहा है। तो आपको ये महसूस नहीं होता कि अगर आप थोड़ा सा पॉलिश करने के लिए अगर वाकई गाना भी और सीख लें और डांस भी सीख लें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा?
2: पता नहीं, अभी तो नहीं सीखा। अभी स्कूल है ना तो इतना टाइम नहीं मिलता, जब शायद स्कूल के बाद या कॉलेज के बाद देखूंगी, लेकिन अभी तो नहीं कर रही कुछ।
0: कर तो कुछ नहीं रही हूँ, लेकिन करने की ख्वाहिश है, तमन्ना है कि वाकई और सीखा जाए और ज्यादा परफेक्ट हुआ जाए इस लाइन में?
2: नहीं
0: नहीं, ये तमन्ना बहुत बहुत खुशकिस्मत हो, वरना तो लोग इतनी ज्यादा तमन्नाएं करते हैं कि तमन्नाओं के बोझ से दम निकल जाता है। अच्छा, हमने सुना है और अखबारों में भी बहुत पढ़ा है कि आपको फिल्मों में काम करने की ऑफर भी मिल रही है।
2: जी,
0: तो क्या आप एक्सेप्ट कर रही है?
2: नहीं,
0: मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ।
2: क्यों?
0: बस जो मैं सवाल करती हूँ उसका जवाब आप देती हैं नहीं
2: नहीं
0: ये जी और नहीं, नहीं चलेगा
2: नहीं,
0: बिल्कुल।
2: मैं आपको बताती हूँ जी, ऑफर्स हैं लेकिन मुझे शौक नहीं है फिल्म में एक्ट करने का, तो मैंने सबको कहा कि नो, तो सब कहते हैं नो, आई सेड नो।
3: एक शेर याद आ गया, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। ऐसी ही यादें आपके साथ शेयर करती रहूंगी, देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़।

0: तो अभी आप श्रोताओं ने सुना कुछ बातें तबस्सुम, महान अभिनेत्री हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का इंटरव्यू कर रही थी मशहूर गाने वाली नासिया हसन जी को। अब आप सुनेंगे कुछ अनसुनी बातें इस महान गाने वाली की, जो 14 साल की उम्र में हलका मचा दी थी हमारे दुनिया भर के सभी संगीतकारों, सभी संगीत प्रेमियों के दिलों में। She created history in Bollywood at the age of 14. But आगे सुनिए।
1: वो ऐसी कलाकार थी जिन्होंने भारत और पाकिस्तान में म्यूजिक इंडस्ट्री का नक्शा बदल डाला था। उन्होंने महज 15 साल की उम्र में संगीत जगत में ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए जो आज भी कायम हैं और फिल्म जगत में एक मिसाल हैं। उनकी आवाज और खूबसूरती को देखकर दोनों देश ही नहीं दुनिया भर से फिल्मों में काम करने के प्रस्ताव आने लगे थे और फिल्म निर्माता उन्हें ब्लैंक चेक तक दे रहे थे। आप जानते हैं कि संगीत के शिखर पर पहुंचने के बावजूद ये गायिका एक्टिंग और ग्लैमर से कोसों दूर रहती थी।
2: मुझे दिलचस्पी नहीं है अदाकारी से।
3: कोई दिलचस्पी नहीं?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जरूर है कि मुझे अपनी एजुकेशन से बहुत लगाव है।
1: क्या आप सोच सकते हैं कि इस गायिका को अपनी सीधी सादी जिंदगी जीने के बदले पति के धोखे और घरेलू हिंसा जैसी कीमत तक चुकानी पड़ी थी?
4: लेकिन मेरा
1: और क्या आप यकीन करेंगे कि बहुत कम उम्र में ही इस गायिका की मौत हो गई और उनकी लाश को भी सुकून पाने के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़ा।
5: The fancy?

0: मंथली ये सिंगिंग सेंसेशन जिसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर गाना शुरू किया और तहलका मचा दिया। क्या खासियत थी उनकी आवाज में जो आज दशकों बाद भी उनका जादू कम नहीं हुआ है। क्यों इतनी उपलब्धियों के बावजूद निजी जिंदगी में नहीं मिल पाया उन्हें कोई सुख, और क्यों उनके दिलफेंक पति पर लगा था उन्हें जहर देने का संगीन आरोप, जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आरजे कंगना। जी हाँ, वही फिल्में किस्से वाली आरजे कंगना। जो लोग बॉलीवुड को कुछ दशक पहले से जानते हैं उन्हें समझ में आ गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं 80 और 90 के दशक की मशहूर गायिका नाजिया हसन की। की पीढ़ी बेशक इनके नाम से कम वाकिफ होगी, लेकिन उस दौर के संगीत प्रेमियों के लिए नाजिया की आवाज दीवानगी से भी कहीं बढ़कर थी। दुनिया नाजिया की आवाज की दीवानी थी, लेकिन उनकी निजी जिंदगी दर्दनाक थी। आज हम आपको सुनाएंगे इस गायिका को 15 की उम्र में मिली करिश्माई पॉपुलैरिटी और 35 साल में हुई दर्दनाक मौत के दरमियानी उथल पुथल भरे 20 साल की अनसुनी दास्तान। लेकिन उससे पहले एक नजर उनके छोटे से शुरुआती जीवन पर। नाजिया हसन का जन्म 3 अप्रैल 1965 को कराची, पाकिस्तान में हुआ। ये पाकिस्तान के नामी बिजनेसमैन बासिर हसन और सोशल वर्कर मुनीजा बासिर की बेटी थी। कराची में जन्म लेने के बाद इनकी परवरिश और पढ़ाई लंदन में हुई। नाजिया हसन की माँ मुनीजा और हिंदी फिल्मों की जानी मानी अदाकारा जीनत अमान अच्छी दोस्त थी। एक दिन वो बासिर दंपत्ति के लंदन स्थित घर पहुंची तो कमरे में उनके नजर गिटार पर पड़ी। वो झट से पूछ बैठी, अरे ये कौन बजाता है? मुनीजा ने जवाब दिया, मेरे दोनों बच्चे म्यूजिक में दिलचस्पी रखते हैं। नाजिया उस समय घर पर ही थी। उन्होंने जीनत को एक गाना सुनाया जो सभी को काफी पसंद आया। एक दिन बाद जीनत ने मुनीजा को कॉल किया और कहा, इंडिया में एक्टर फिरोज खान एक फिल्म बना रहे हैं और उन्हें इसके लिए एक नई आवाज की जरूरत है। मुझे लगता है नाजिया की आवाज उन्हें पसंद आएगी। ये किस्सा नाजिया की मां ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में सुनाया था। मुनीजा ने पहली बार में तो इनकार कर दिया, क्योंकि मुस्लिम परिवार की लड़कियों को इतना खुला माहौल नहीं दिया जाता था। लेकिन इसके बावजूद जब जीनत अमान ने जिद की तो उन्होंने कहा कि वो पति से बात करके ही कोई जवाब देंगी। शुरू में तो बासिर नाराज हुए, लेकिन कुछ मिनटों की बहस के बाद उन्हें अपनी पत्नी मुनीजा के आगे झुकना पड़ा। जीनत ने मुनीजा और नाजिया की मुलाकात फिरोज खान से करवाई। इस फिल्म के गानों और स्कोर के लिए वैसे तो कल्याण जी आनंद जी म्यूजिक दे रहे थे, लेकिन कुछ गानों के लिए उन्होंने लंदन के एक भारतीय मूल के संगीतकार बिद्दू से बात की थी। बिद्दू आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्रों से कमाल का संगीत बना रहे थे, जो उन दिनों पश्चिमी देशों में बेहद लोकप्रिय था। 15 साल की नाजिया की आवाज से इम्प्रेस होकर फिरोज खान ने उन्हें अपनी फिल्म कुर्बानी में गाने का मौका दिया, जो 1980 में रिलीज हुई थी। नाजिया ने फिल्म के लिए बिद्दू के संगीत निर्देशन में आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए गाया, जो चार्टबस्टर साबित हुआ।
1: Deze ultra comfort lokvleugels zijn zo ontworpen dat het maandverband beter...

0: की रिकॉर्डिंग यूके में ही हुई थी, जिसके लिए नाजिया अपने स्कूल से हाफ डे की छुट्टी लेकर स्कूल ड्रेस में ही रिकॉर्डिंग के लिए जाती थी। रिकॉर्डिंग के बाद नाजिया अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो ये गाना चार्टबस्टर साबित हुआ। एक दिन मुनीजा के पास मशहूर निर्माता निर्देशक राज कपूर का कॉल आया। उन्होंने कहा कि इस साल बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड नाजिया को मिलेगा। फिर पूछा, क्या आप अवार्ड लेने भारत आएंगी? ऐसा पहली बार हुआ था कि 15 साल की उम्र में किसी कलाकार को फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया हो। भारत में दिया जाने वाला ये पुरस्कार इससे पहले किसी पाकिस्तानी को नहीं दिया गया था। उनसे पहले और बाद में आज तक फिल्म फेयर अवार्ड के इतिहास में ऐसा दोबारा नहीं हुआ। संभवतः पहली बार इस अवार्ड को पाने वाले को फंक्शन से पहले ही बता दिया गया था। बहरहाल साल 1981 में पूरा परिवार भारत आया और नाजिया को शोमैन राज कपूर के हाथों ही फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। बेस्ट फीमेल सिंगर का ये पुरस्कार नाजिया को आप जैसा कोई गाने के लिए दिया गया था। अवार्ड नाइट के दिन जिस होटल में नाजिया ठहरी थी वहां दर्जनों मीडिया कर्मियों का जमावड़ा उनसे बात करने के लिए इंतजार कर रहा था। पहले गाने के बाद ही कम उम्र की नाजिया एक नेशनल सेंसेशन बन गई। उन्होंने 1981 में ही संगीतकार बिद्दू के साथ मिलकर म्यूजिक एल्बम डिस्को दीवाने लॉन्च किया। ये एल्बम भारत और पाकिस्तान का बेस्ट सेलिंग एल्बम बन गया। भारत में तो पहले दिन ही इसके 1,00,000 रिकॉर्ड्स बिक गए। साथ ही इसे फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया के अलावा साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, लैटिन अमेरिका और रशिया में भी काफी पसंद किया गया। अपने पहले ही एल्बम से नाजिया इंटरनेशनल सिंगर बन गई थी। इससे पहले विदेशों में भारतीय फिल्मों के गाने ही लोकप्रिय होते थे, लेकिन डिस्को दीवाने पहला ऐसा नॉन फिल्मी एल्बम था जो बॉलीवुड संगीत पर भी भारी पड़ा। ब्राजील में ये पहला कोई दक्षिण एशियाई एल्बम था जो चार्ट बस्टर बना था। बेहतरीन सिंगर होने के साथ साथ नाजिया बेहद सुंदर भी थी। उनके पॉपुलर होने के बाद हर नामी फिल्म मेकर उन्हें अपनी फिल्म में साइन करना चाहता था। कहते हैं फिल्मों के प्रोड्यूसर उन्हें ऑफर में ब्लैंक चेक तक दे देते थे, लेकिन हर बार नाजिया ऑफर ठुकरा दिया करती थी। दरअसल परिवार वाले मानते थे कि नाजिया के लिए पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। एल्बम डिस्को दीवाने इतना पॉपुलर हुआ कि नाजिया जहां जाती थी वहां भीड़ लग जाया करती थी। एक बार जब वो कोलकाता एयरपोर्ट पहुंची तो उन्हें देखने भर के लिए 1,00,000 लोग जमा हो गए थे। नाजिया की बढ़ती पॉपुलैरिटी देखते हुए बिद्दू ने उन्हें अगले साल 1982 में अपने म्यूजिक एल्बम बूम बूम में एक्टिंग करने का भी ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ गाना गाया। बाद में इस एल्बम के गानों पर बॉलीवुड की एक फिल्म भी बनी जिसका नाम था स्टार। रिलीज हुआ नाजिया और जोहेब का एल्बम यंग तरंग पाकिस्तान का पहला एल्बम था जिसमें म्यूजिक वीडियो था। ये उस जमाने का एशिया का सबसे पॉपुलर एल्बम था। 1986 में नाजिया ने बॉलीवुड फिल्मों में गाने गाए जिनके नाम थे दिलवाला, इल्जाम और मैं बलवान। उसी साल उन्होंने अफ्रीका में बनी भारतीय फिल्म अफ्रीकाडली शीला के लिए भी प्लेबैक किया। ।1987 में नाजिया और जोहेब ने एक एल्बम बनाया जिसका टाइटल था हॉटलाइन। नाजिया गाने तक ही सीमित रही, लेकिन फिल्मों में काम करने के ऑफर उन्हें लगातार मिल रहे थे। कहते हैं अपने जीवन के आखिरी दौर में जब राज कपूर अपनी फिल्म हिना के लिए हीरोइन की तलाश कर रहे थे, तब उन्होंने नाजिया हसन को भी अप्रोच किया था, लेकिन उन्हें भी निराशा ही हाथ लगी। 1992 में नाजिया ने अपने भाई जोहेब के साथ म्यूजिक एल्बम कैमरा कैमरा रिलीज किया, जिसके ठीक बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये उनका आखिरी एल्बम है। नाजिया का परिवार वैसे तो पढ़ा लिखा था, लेकिन वो फिल्मों में काम करने को नीचा समझता था। पर्सनल लाइफ में फोकस करने के लिए नाजिया ने 1992 में हमेशा के लिए गाना छोड़ दिया। लंदन की रिचमंड अमेरिकन यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1991 में नाजिया ने यूनाइटेड नेशंस में वुमेन्स इंटरनेशनल लीडरशिप प्रोग्राम में इंटर्नशिप की और बाद में उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नौकरी भी की। उन्होंने लॉ की डिग्री भी हासिल की। 30 मार्च 1995 को घर वालों ने नाजिया की शादी कराची के बिजनेसमैन मिर्जा इश्तियाक बेग से करा दी। इश्तियाक से नाजिया की अरेंज मैरिज थी। 1997 में नाजिया ने बेटे अरेज को जन्म दिया। हालांकि सूत्रों का कहना है कि शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच अनबन होने लगी थी। नाजिया का पति इश्तियाक बेग एक दिलफेंक किस्म का इंसान था।
1: Roger, meeting you, you look prettier, huh? You look smarter, you look younger. What is the secret of
2: Botox, darling?
0: कहते हैं उसका एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस से अफेयर था। जैसे ही ये बात उन्हें पता चली तो घर में झगड़े और बढ़ गए। ऐतराज करने पर पति उनके साथ मारपीट करने लगा। नाजिया को बाद में पता चला कि उससे पहले इश्तियाक की 2 शादियां हो चुकी थीं, लेकिन ये बात उनके घर वालों से छिपाई गई थी। नाजिया से पहले इश्तियाक ने फिलीपींस की डांसर हेजल से शादी की थी, जिससे एक बेटा इमरान बेग था। उसकी दूसरी शादी पाकिस्तानी एक्ट्रेस शाजिया से हुई थी। दूसरी पत्नी ने बेग की मेंटल कंडीशन खराब होने पर तलाक ले लिया था। दोनों शादियां नाजिया के परिवार से छिपाई गई थी। 21 जून 2000 को नाजिया ने पाकिस्तान के नामी न्यूज़पेपर डेली जंग को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने पहली बार मारपीट और पति के जुल्मों पर खुलकर बात की। नाजिया ने बताया कि उनका पति मारपीट कर उन पर दबाव बनाता था कि मीडिया में ये कहा जाए कि उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल चल रही है, हालांकि ऐसा नहीं था। इस बीच नाजिया गंभीर रूप से बीमार पड़ी और उन्हें फेफड़ों का कैंसर डिटेक्ट हुआ। नाजिया पर दुखों का पहाड़ तब टूट पड़ा जब उनके पति ने कैंसर के इलाज का खर्च उठाने से भी इनकार कर दिया। नाजिया कहती थी पति इश्तियाक बेग के साथ रहने की जगह वो मरना ज्यादा पसंद करेंगी। नाजिया के भाई जोहेब ने भी एक स्टेटमेंट में बताया था कि उनकी बहन को उसके पति ने बंदी बनाकर रखा था। परेशान होकर नाजिया ने साल 2000 में मुस्लिम लॉ के तहत पति से तलाक ले लिया था और अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगी। इसके बाद नाजिया का इलाज उनके घर वालों ने लंदन में करवाया। वहां नाजिया की 5 कीमोथेरेपी हुई। इलाज के दौरान नाजिया ने अपने वकील और कुछ गवाहों के सामने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि पति उन्हें जहर दे रहा था और स्लो पॉइजन के असर से उनके शरीर के अंग खराब हो रहे हैं। कहते हैं ये बात लंदन में नाजिया का इलाज कर रहे डॉक्टर्स भी जानते थे। नाजिया ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि अगर उनकी मौत हो जाती है तो इस बात की जांच की जाए। 10 अगस्त 2000 को नाजिया की हालत बिगड़ने पर उन्हें लंदन के नॉर्थ लंदन हॉस्पाइस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान उनकी हालत सुधर रही थी और डॉक्टर्स उन्हें घर भेजने वाले थे, लेकिन वो घर नहीं लौट सकी। 13 अगस्त 2000 को सुबह करीब 9:15 बजे हॉस्पिटल से नाजिया की मां मुनीजा को कॉल कर जानकारी दी कि उनकी बेटी जोर जोर से खांस रही है। मां अस्पताल के लिए निकली, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही नाजिया की मौत हो चुकी थी। हालांकि नाजिया की मौत बीमारी से हुई थी, लेकिन उनके शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। वकील द्वारा नाजिया का आखिरी स्टेटमेंट मिलने के बाद लंदन पुलिस ने दोबारा नाजिया की ऑटोप्सी करवाई। इस हाई प्रोफाइल केस की गहराई से जांच करने के लिए नॉर्थ वेस्ट लंदन पुलिस ने नाजिया के पेरेंट्स का गोल्डर्स ग्रीन स्थित घर और पति का घर सीज कर दिया। दोनों घरों में फॉरेंसिक टीम ने डिटेल में जांच की। यूके में कुछ महीनों बाद एक जांच रिपोर्ट जारी की, जिसमें स्कॉटलैंड यार्ड के अनुसार नाजिया की मौत का कारण लंग कैंसर बताया गया था। उन्होंने पाया कि ये एक नेचुरल डेथ थी। पाकिस्तान के नामी न्यूज चैनल जियो टीवी के अनुसार 13 अगस्त को हुई नाजिया की मौत के बाद 5 महीनों तक जांच के लिए उनका शव लंदन के मुर्दा घर में रखा गया था। परिवार को उनका शव 5 महीने बाद 9 जनवरी 2001 को सौंपा गया था। नाजिया का अंतिम संस्कार लंदन के हिंडन कब्रिस्तान में हुआ था। पहले उन्हें पाकिस्तान लाया जाना था, लेकिन शव मिलने में देरी होने से लंदन में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया था। नाजिया के पति ने उनकी मौत के बाद तलाक की बात को निराधार कहा। उसने कहा कि मौत के समय भी नाजिया उनकी पत्नी थी। हालांकि घर वालों का कहना था कि नाजिया ने मौत से 3 महीने पहले ही उसे मुस्लिम लॉ के तहत तलाक दे दिया था। इश्तियाक आज भी नाजिया को अपनी पत्नी मानता है, जबकि नाजिया के बेटे अरेज की कस्टडी उसे नहीं दी गई। नाजिया की मौत के बाद 2002 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने उन्हें प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड दिया। नाजिया की जगह ये अवार्ड उनकी मां लेने पहुंची थी। उनकी मौत के बरसों बाद 2012 में एक बॉलीवुड फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में उनके गाए गाने का कवर वर्जन बनाया गया, जिसमें उनकी ओरिजिनल आवाज का भी इस्तेमाल किया गया था। इसी साल एक और फिल्म मिस लवली में भी उनके गाए पुराने गाने का इस्तेमाल किया गया था, जो खासा फ्रेश लगा। नाजिया हसन बेशक संगीत और फिल्मों में अपना लंबा करियर नहीं बना पाई, लेकिन उनकी पहचान बेहद सशक्त थी। वो दिल की बहुत दयालु थी और गानों से मिलने वाली अपनी सारी कमाई पाकिस्तान के जरूरतमंद बच्चों को दान कर देती थी। इसके अलावा वो फंड इकट्ठा करने के लिए भी कई कॉन्सर्ट्स करती थी। इन्होंने बैटल अगेंस्ट नारकोटिक्स यानी बैन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन भी शुरू किया था, जो ड्रग्स के इस्तेमाल को रोकने की दिशा में काम करता था। नाजिया अक्सर स्कूल में जाकर बच्चों को खिलौने बांटा करती थी। ये अपना हर बर्थडे बच्चों के साथ मनाती थी। मौत के बाद आज भी इनका परिवार ऐसे ही इनका जन्मदिन मनाता है। नाजिया ने यूनिसेफ के साथ भी काम किया था। उनके बेहतरीन काम के चलते उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लीडरशिप प्रोग्राम की स्कॉलरशिप भी मिली थी। हालांकि कैंसर डिटेक्ट होने के बाद वो ये कर ना सकी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। अगर आपके पास भी नाजिया हसन से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।
2: होता है यारो ये दर्द से भरा हुआ कहानी आपने सुने, महान गाने वाली नाजिया हसन के कुछ नगमे और अंत में कैसा उनका आखिरी सांसें छूटी, ये सब बातें आप सुने, मेरा तो दिल भर आया। क्योंकि पहला दिन से जब मैं ये महान गाने वाली की नगमे सुने, निगदी ताख्तक फ्रॉम द मूवी कुर्बानी, आप जैसा कोई, वे वार ओक या इन दी टाइम ओक बेसिक मेट म्यूजिक एक्सपेरिमेंटेरस, वे हैव दिस नंबर फाक लाइव गेस्पेल्ड आप जैसा कोई, दिस इट ब्लाइव मी ऑलवेज व्हाट डूइंग। तो एक आखिरी बयान आप सुनेंगे आज के इस हसीन प्रोग्राम में, स्पेशल द ग्रेट ग्रेट ग्रेट गाने वाली नाजिया हसन के। तो उसके बाद कुछ बॉलीवुड नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स तैयार है आप सभी को सुनाने के लिए। तो उनके यादें तो हमेशा रहेंगे हम लोगों के पास। तुम पसंद नुमर ओम अफ़्शाइद नी फन हार्त नीम मेडिट प्रोग्रामा तेरी याद द ग्रेट नाजिया हसन।

याद द ग्रेट ग्रेट नाजिया हसन। और यही उम्मीद है, आशा है कि आप लोग ये महान गाने वाली को हमेशा याद रखेंगे। अगला बयान कैसे बढ़ते हैं, बिल्कुल नया सॉन्ग है और सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को इस जमाने के मशहूर गाने वाला द ग्रेट जुबिन नौटियाल जी, जिनका कॉन्सर्ट भी आने वाले शनिवार को है सामदाम में। Ik denk dat ik er naartoe ga met mijn dochter en een hele lieve nichtje van ons. Dus ja, ik verheug me erop. Oude saad, dere hi hei, nechma. Joap, suninge, mashur, ganewali, izzamanika, de great Palak Mushel. Mahan sangeetkar, de great Himesh Reshamiya ka likha hua aur compose kiya hua ye beautiful song. Naya pyar, naya ehsaas. Special आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम। न्यू

अति सुंदर बयान, नया प्यार, नया एहसास, महान गायक इस जमाने का द ग्रेट जुबिन नौटियाल और द ग्रेट पलक मुशल के आवाजों में हिमेश रेशमिया का लिखा हुआ और कंपोज किया हुआ ये सुपर हिट सॉन्ग।

अब के सावन में पानी बरसा बहुत, अब के सावन में पानी बरसा बहुत, पानी की हर बूंद में वो आए याद बहुत। इस सुहाने मौसम में साथ नहीं कोई, इस सुहाने मौसम में साथ नहीं कोई, बादलों के साथ इन आंखों से पानी बहा बहुत, और वो भी उनकी याद में। तो आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में एक आखिरी बयान आप सुनेंगे। यारो वक्त भी धीरे धीरे करीब आ गया है, और ये अति सुंदर बयान सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को इस जमाने के महान गायक द ग्रेट अरिजीत सिंह, साथ दे रही है मशहूर गाने वाली द ग्रेट नीति मोहन कुणाल वर्मा का लिखा हुआ अति सुंदर बयान, कंपोज बाय तानिक बख्शी एंड कृष्ण कपूर। तेरे संग इश्क हुआ,

इश्क हुआ और वो भी तेरे संग इश्क हुआ। ब्यूटीफुल सॉन्ग आप श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया महान गायक अरिजीत सिंह और नीति मोहन के आवाजों में। कुणाल वर्मा का लिखा हुआ अति सुंदर बयान कंपोज बाय मैस्त्रो तानिक बाक्षी कृष्ण किशोर। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, यही तक था आज का मेरे हिस्से का कार्यक्रम जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाला है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का महान अनाउंसर साथी दवानंदोली मास्टरो अमित कुमार जी। तो मुझे आप सभी इजाजत दे या शोमीद लेकर घर को जा रहा हूँ यारो कि मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम, ये आशा उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर पसंद आया हुआ होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले दिनों में मैं फिर आप सभी से मिलने वाला हूँ आवाज के जरिए यारो। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। और जाते जाते हमेशा की तरह

न्यू DAB प्लस रेडियो सुनाते हैं साफ और स्पष्ट आवाज, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग की राज। आप भी ले द प्लस रेडियो और दूर दूर

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेते होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 3 2 6 9 8 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

पावन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है द प्लस रेडियो पर नतुलक उक्त बलैस्त्रफिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाहुन FM.NL पर यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फूल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। जहाँ प्रिपियो जी साल में हो, घर पे हो या तो मोटर कार में आप सफर कर रहे हो, दुनिया के जो भी कोने में कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुँचे। अब हमारे फूल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक शुभ दिन प्रकट हो। मैं थील फील लजतर प्लेजीर के साथ तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को भी एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। अनतिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स अनतिलक बदंत है। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइश हो, जरूरी खबरें या तो एपिक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर, या तो आप एक ऑर्गामन हो इवनिमेंट और खनिसात और या तो ऑर्गा वुमन भी हो सकते हो, जैसे कल हम लोग बड़े समारोह के साथ एवंस एवनमेंट यानी डेस्टिनी एवंस के जरिए ऑर्गेनाइज किया हुआ जबरदस्त शो जो फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से भी ब्रॉडकास्ट और उन लोगों का कमर्शियल हम लोग भी रोजाना एक दो बार चलाए थे। और आप देखें ना, हाउसफुल था कल, बड़ी जबरदस्त शो था। महान गायक हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का इस जमाने का रमेश खफराद आर्टिस्ट मैस्त्रो जुबिन नौटियाल जी का जबरदस्त शो कल हम लोग बड़े समारोह के साथ मिलकर सुने, खूब नाचे, खूब मस्तियाँ किए, मज़े किए। एन तिलक मेट हेल फील फ्रेंड एंड कैनिस गजामलक वॉस हेल ड्रुक एंड गजेलग। तो आप भी अपना कमर्शियल जरूर फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना, तो देखना कैसे चमककार पे चमककार हो जाएगा। यारो, ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं द प्लस रेडियो के लहरों द्वारा या नित्य प्रकाशित इंटरनेट के लहरों द्वारा वर्ल्ड वाइड। किफायत सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो अब मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार ही आप चाहेंगे बंद हो उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप सभी से यही कहते आ रहा हूँ यारों कि फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंडेश भर में नहीं मिलेगा यारों। आप आजमा कर तो देख, सभी जानकारी आप तार करें तो एडेंस कंतोर यूरोप न्यूज़ीफ तक ट्वी दैर दिन फैन सेस्तक, या तो आप तार करें अपने फैन सेस्तक ट्वीन ट्वीन फेर तक पर। तो जो भी रेडियो का काम हो, डेंक ऑन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। लिट फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो टू गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और ओ को भी बनाए। आपको तो ढेर सारा फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें op 070-213-6898 पर, या तो op 070-365-2247। तो आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और रो को भी बनाए। इवेंट वन हार्ट वेलकम। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार और रिक्लाम बनाते रहना, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। और हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। वादा के मुताबिक एक दम लेकर चलते हैं आप सभी को कार्यक्रम की तरफ, और कुछ सरनामी संगीत, इंडियन सरनामी पॉप म्यूजिक आप सुनेंगे। कुछ नौजवान कलाकार हैं जो काफ़ी नाम कमा चुके हैं हमारे सरनाम देश हॉलैंड देश में, तो कुछ नगमे आज के लिए मैं सेलेक्ट किया हूँ। जैसे कि मिस्टर के फ्रॉम सूरीनाम, महान गायक कविश कालका जी का ये ब्यूटीफुल सॉन्ग आदत।

moment om trots op te worden. The great Mr. Keke from Suriname, Kawish Kalka. फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चून है हमारे प्रिय श्रोताओं, जो तो से सरनामी संगीत चल रहे है। अगला बयान एक और महान गाने वाली हमारे सूरीनाम देश का फुल टैलेंटेड कलाकार फरानास चिरागली के मधुर आवाज में आप सुनेंगे। यही वो जगह है, सेल्फ स्क्राइव एन कॉम्पोनियर्ट डोर ब्रूर नाटिक भाई बहन का ये जो जोड़ी है ना, जिस पे हमें नाज है, म्यूजिक दिया है डेवन बीट्स हमारे सुरीनाम देश का। मिलके सुनते हैं अ ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल आप सभी प्री सुनने वालों के नाम।

जगह है अति सुंदर बयान आप श्रोताओं की सेवा में पेश किया गया। गाने वाली थी हमारे सुरीनाम देश का मशहूर गाने वाली फरानास चिराग अली। अगला बयान एक और महान गाने वाली हमारे सुरीनाम देश का, जिस पे हमें नाज है, गर्व है और होना भी चाहिए, क्योंकि ऑफ इन फन हार न्यूमर्स फॉर इन सुरीनाम्स आर्टिस्ट मेयर दान 3 miljoen views krijgen, mag ook gezegd worden, natuurlijk om trots op te zijn. The one and only Nisha Madaran with King Colony, Dangerous.

यस यस शी इज डेंजरस, सूरीनाम देश के मशहूर गाने वाली मिस निशा मदारन साथ दे रहा था किंग कॉलोनी, ब्यूटीफुल सॉन्ग, म्यूजिक कंपोज्ड एंड अरेंज बाय मामबॉय एट MSD स्टूडियो। तो इसी तरह से कुछ सरनामी संगीत आप श्रोताओं के सेवा में सेलेक्ट किया हूं, आई होप यू गाइस लाइक इट। अगला बयान एक और मशहूर गायक हमारे सूरीनाम देश का, फ्रॉम द म्यूजिक फॉर्मासी द जूनियर्स फ्रॉम सूरीनाम, प्रशांत राम जतन का ब्यूटीफुल कॉफरेट सॉन्ग बाय मैस्त्रो प्रशांत की मेरी नैना सावन भारो, ब्यूटीफुल सॉन्ग, स्पेशल क्वालिटी।

फाउंटेन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेते होने के लिए तार कीजिए 9735 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखे, आपकी तमाम उलझने ऊपर वाला सुलझा देगा। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं फिर आप सबके लिए प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ, जिसका नाम है सोपन विज्ञान।

सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं फिर आप सबके लिए प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा। मैं आप सबके लिए प्रोग्राम लेकर आई हूँ जिसका विषय है स्वप्न विज्ञान यानी सपने। सपने तो हम सबको ज़रूर आते हैं, कभी अच्छे सपने तो कभी बुरे सपने। अच्छे सपनों में हम खुश होते हैं, बुरे सपनों में हम डर जाते हैं। सपने भी बहुत प्रकार के होते हैं सुनने वालों। सपने हमें क्यों आते हैं, सपनों का मतलब क्या है, सपनों से जुड़ी और भी बहुत सी जानकारी है जिसे सुनकर आप सबको कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिलेगी।

संबंध तो सुधामा और कृष्ण जैसा होना चाहिए। एक ने कुछ मांगा नहीं, दूसरे ने सब देके जताया नहीं।

तो उसकी यात्रा अच्छी होती है। प्रवास करते समय यानी यात्रा पर जाते समय एक बार बोले तो चोरी का भय, दो बार बोले तो धन की प्राप्ति, तीन बार बोले तो दुर्घटना का भय, चार बार बोले तो किसी से झगड़ा, पांच बार बोले तो राज्य से सम्मान मिले। सुनने वालों, यदि हम यात्रा पर जा रहे हैं और हंस एक बार बोलेगा तो उससे हमें चोरी का भय होता है कि चोरी होगी, अगर वो दो बार बोलता है तो हमें धन की प्राप्ति होगी कि हमें रुपया पैसा मिलेगा, अगर हंस तीन बार बोलेगा तो दुर्घटना का भय कि हमें चोट लगने का भय हो सकता है, अगर हंस चार बार बोलेगा तो किसी से झगड़ा भी हो सकता है सुनने वालों, और पांच बार बोलेगा तो राज्य से सम्मान मिलेगा।

अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। टिटहरी, टिटहरी एक पक्षी है, छोटी सी है चिड़िया जैसी, और ज़्यादातर खेतों में बोलती है। अगर वो हो तो उससे क्या लाभ है, अब मैं ये बताती हूँ आपको। टिटहरी प्रवास करते समय इसकी आवाज़ शुभ होती है। जब ये पक्षी बोलता है और हम यात्रा पर जा रहे हैं और इसकी आवाज़ कानों में पड़े तो शुभ मानी जाती है सुनने वालों। मोर, मोर तो आप सबको पता है सुनने वालों। मोर भूख से पीड़ित या उड़कर बाईं ओर आकर बोले, मिष्ठान की प्राप्ति। अगर मोर पक्षी हमारी बाईं ओर आकर बोलेगा तो हमें मीठा खाने को मिलेगा या मिठाई खाने को मिलेगी। यदि प्रवास कर रहे व्यक्ति को देखकर बोले एक बार तो धन की प्राप्ति, दो बार बोले तो स्त्री सुख, तीन बार बोले तो राज्य दंड का भय, चार बार बोले दुर्घटना का भय, पांच बार बोले कार्य की सिद्धि। सुनने वालों, मोर भी अगर हम कहीं यात्रा पर जा रहे हैं और किसी भी व्यक्ति को देखकर अगर वो एक बार बोलता है तो हमें धन की प्राप्ति होती है, दो बार आवाज़ करेगा या बोलेगा तो स्त्री का सुख होगा, तीन बार बोलेगा तो राज्य में दंड का भय कि हमें कोई दंड भी मिल सकता है किसी भी कारणवश, अगर चार बार बोलेगा तो दुर्घटना का भय तो चोट लग सकती है, पांच बार बोलेगा तो कार्य की सिद्धि, हम कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो उसमें हमें जरूर सफलता प्राप्त होगी। सुनने वालों,

मैना, हमेशा हम तोता के साथ मैना की कहानी जरूर सुनते हैं सुनने वालों। तोता मैना का एक जोड़ा होता है। तो मैना, यदि प्रवासी को मैना दिखे तो राह में अशुभ, किसी से झगड़ा तथा धन हानि। बिल्कुल सामने मैना दिखाई दे तो चोर डाकुओं से धन की हानि। पीछे की तरफ मैना दिखाई दे तो मित्र से धन हानि। बाईं ओर मैना दिखाई दो पत्नी को रोग। दाईं ओर मैना दिखे किसी पूजनीय से मन मुटाव। सुनने वालों, जब हमें मैना राह चलते दिखाई दे तो अशुभ, किसी से झगड़ा या धन हानि होती है। हमारे बिल्कुल सामने उड़कर आ जाए तो चोर और डाकुओं से धन की हानि होती है। हमारी पीठ पीछे आ जाए तो मित्र से धन की हानि होती है। बाईं ओर से आ जाए तो पत्नी को रोग होता है। दाईं ओर से आ जाए तो किसी पूजनीय से मन मुटाव, कि जो आपसे बड़ा है, पूजनीय है, उससे हमारा थोड़ा मन मुटाव हो जाएगा, हम उससे गुस्से हो जाएंगे या वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे। सुनने वालों, अब हम एक गाने की ओर बढ़ते हैं सुनने वालों।

सुनने वालों, ये जो गीत आपने सुना है ये हमारे महान गायक सूरीनाम के महान गायक श्री रामदेव चेतू जी की आवाज़ में था। अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। बटेर, बटेर भी एक पक्षी है। यदि यात्रा करते समय बटेर दाहिनी तरफ आगे आकर वापस लौटे और यात्रा में वापस आते समय बाईं ओर आगे जाकर वापस लौटे तो उस व्यक्ति का आने वाला समय अति उत्तम व्यतीत होता है। तीतर, तीतर भी एक पक्षी है सुनने वालों। तीतर प्रवास कर रहे व्यक्ति के यदि तीतर बोलता है दाईं ओर बोलकर पूर्ण बाईं ओर उड़े तो उत्तम फल प्राप्त होता है। लौटते समय विपरीत अर्थात पहले बाईं ओर बोलकर बाद में दाईं ओर उड़े तो अर्थ लाभ होता है। बाईं ओर तीतर बोले कार्य में सफलता मिलती है। पहले पीछे बोलकर फिर दाईं ओर बोले अभीष्ट सिद्धि। पहले पीछे बोलकर फिर बाईं ओर बोले कार्य सफल नहीं। उच्च स्वर में आवाज़ करे कार्य में सफलता। विषम संख्या में आवाज़ करे शुभ। आकाश की ओर मुँह करके धन हानि। दोनों ओर आवाज़ करे उत्तम शगुन। सुनने वालों, तीतर अगर किसी यात्री के दाईं ओर बोलकर पूर्ण बाईं ओर उड़े तो उससे उत्तम फल अच्छा फल प्राप्त होता है। लौटते समय विपरीत अर्थ पहले बाईं ओर बोलकर बाद में दाईं ओर बोले तो अर्थ लाभ कमती मिलता है। बाईं ओर तीतर बोले कार्य में सफलता मिलती है। पहले पीछे बोलकर फिर दाईं ओर बोले अभीष्ट सिद्धि तो उसका गलत परिणाम होता है। सुनने वालों, पहले पीछे बोलकर फिर बाईं ओर बोले तो कार्य सफल नहीं होता। उस स्वर में आवाज़ करे कि ऊंची आवाज़ में बोले तो कार्य में सफलता मिलती है। सुनने वालों, विश्व संख्या में आवाज़ करे कि और भी ऊंचा बोले तो शुभ होता है। सुनने वालों, आकाश की ओर मुंह करके बोले तो धन की हानि होती है। दोनों ओर आवाज़ करे तो उत्तम शगुन, अच्छा शगुन माना जाता है। सुनने वालों,

खंजन, सुनने वालों खंजन भी एक पक्षी है, यदि यह इन स्थानों पर बैठा दिखाई दे। घुड़साल, फिलखाने, बाघ, महल, लिपि भूमि, दही का बर्तन, छायादार पेड़, फूल पत्ते, फल वाला वृक्ष, तो धन लाभ की आशा। नदी, तालाब, कमल का फूल, गाय की पीठ, पत्ते उपले, दूध वाले पेड़, भवन के मुख्य द्वार, अगर इस जगह पर दिखाई दे तो समस्त वेदियों का नाश। लता, कांटेदार वृक्ष, सूखा वृक्ष, पत्थर, अधजली हड्डी, मदिरा के घड़े, सुने घर में यज्ञ स्तंभ, अपमान और रोग प्राप्त होता है सुनने वालों। नीलकंठ, नीलकंठ तो आप सब जानते हैं कि एक बहुत नीले रंग की गाय है, यदि यह दिखे तो दाई और सदैव फलदाई, सामने दिखे अनेक विधन। नीलकंठ और कौवा दोनों दाई और उड़े और कौवा आगे निकल जाए धन हानि, इसके विपरीत नीलकंठ आगे निकल जाए यात्रा सफल, धन का लाभ होता है सुनने वालों।

हम आगे चलते हैं। सुनने वालों, श्यामा चिड़िया, आपने श्यामा चिड़िया का नाम तो सुनना हो, सुना ही होगा, क्योंकि रामायण में जब मन का 108 है उसमें भी राम जी कहते हैं श्यामा चिड़िया तू ही बता दे कि सीता जी कहाँ पर है। यदि श्यामा चिड़िया दिखाई दे बाई और बोलती कोयल अच्छे फल, दक्षिण और बोलती अनिष्ट फल, सामने आकर बोले यात्रा स्थगित के संकेत कि यात्रा टाल देनी चाहिए, पीठ पीछे बोलती शुभ सूचना सफलता, प्रसन्न भाव में क्रिया करती हुई सामने कार्य सिद्धि, प्रसन्न मुख इधर उधर फुदके धन लाभ सफलता, दाएं भाग को खुजाती हुई शत्रु नाश मित्र से लाभ, दाएं भाग को फड़फड़ाती हुई विजय, दोनों ही भागों में शुभ समाचार सफलता, चोंच पैरों से बाई आँख खोलती हुई वस्त्र आभूषण लाभ, भोजन की तलाश करती हुई सिद्धि अच्छे भोज्य, भोजन पर झपटती हुई अति शीघ्र सफलता, रमन करती हुई स्त्री से लाभ, सूखो बियाबान से हरे भरे की तरफ आते हुए उत्तम फलदायक उन्नति की सूचना, दासियों में आ मिले प्रिय जन्म मिलन, पैरों से दाहिने नेत्र को खुजाती हुई प्रिय जन्म मिलाप, पूछ जल्दी जल्दी ऊंची नीची करती हुई प्रेमिका मिलन, चोंच से सामने या गुप्त अंगों को स्पर्श करती हुई सुंदर से समागम, पैरों से मुंह खुजलाती इच्छित वस्तु प्राप्त, निर्जन सरोवर में नहाती हुई भू संबंध संपत्ति का लाभ, टेढ़ा मुंह करके देखे या भाग जाए झगड़ा हो, आलस्य भरी या बीट करे धन नाश विपत्ति, मुंह के आहार को नीचे फैलाती हुई सांचे धन की समाप्ति, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाती हुई एक जगह झगड़ा दूसरे पर सफलता।

सुनने वालों, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये सब बातें स्वपन विज्ञान से निकाली गई हैं। अब हम एक गीत की ओर बढ़ेंगे सुनने वालों।

सुनने वालों, जो भी आपने गीत सुना वो हमारे सूरीनाम के महान गायक देसी रघु सिंह जी की आवाज़ में था।

सुनने वालों, मैं आप सबको सुना रही थी श्यामा चिड़िया के बारे में। अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। जोड़े से अलग भागे, स्त्री से कष्ट हानि, पति पत्नी दोनों के बीच में से पहले चिड़िया फिर चिड़िया निकले, निश्चय कार्य में सिद्धि। इसके विपरीत पहले चिड़ा फिर चिड़िया निकले, सिद्धि में संशय। नीचे से उड़कर ऊपर जाए, उत्तम फल। नीचे की तरफ जाए, अवनीत की सूचना। बाईं तरफ बोलती हुई अच्छी, दोनों तरफ बोलती हुई अति उत्तम फल। उड़कर किसी गंदगी पर बैठे, यात्रा टाल देनी चाहिए। किसी पतंगे को पकड़ने दौड़े और एक के बजाय दो पकड़ ले तो दो गुना लाभ की आशा।

पशु शकुन विचार। अब हम पशुओं की ओर चलते हैं सुनने वालों। बिल्ली संबंधी शकुन। यदि यात्रा आरंभ में बिल्ली हमें मिले तो क्या क्या शकुन होते हैं सुनने वालों, और क्या क्या हानि होती है। बिल्ली अगर रास्ता काट ले हानिकारक, बाईं से दाईं और रास्ता काटे निष्ठ फल, मुख में आहार लेकर आए शुभ, मुख में मांस भरे सामने आए सफलता, किंतु बोले भी तो शुभ, खाली मुख बंद करे शुभ नहीं असफलता, परस्पर लड़ती दिखे तो अशुभ, बाईं ओर रहे शुभ कार्य, घर लौटते समय दाईं ओर रहे श्रेष्ठ, सोते समय ऊपर आ पड़े मृत्यु कारक, किसी के पांव सूंघे स्वास्थ्य खराब रोग, माथे को चाटे राजभय पत्नी विरोध, किसी स्त्री के हृदय को चाटे पुत्र को अनिष्टकारक, किसी स्त्री के पांव को चाटे अहितकारक यानी हानि, घर में आकर शीघ्र चली जाए रोग शत्रु का नाश।

सुनने वालों देखो, हमें अगर रास्ते में बिल्ली दिखाई दे, अगर हम यात्रा पर जा रहे हैं, अगर हमारा रास्ता काट ले, तो वो सभी जानते हैं कि हानिकारक है, वो अशुभ माना जाता है। अगर बाईं ओर से दाईं ओर हमारा रास्ता काटे तो नेष्ट फल, वो भी थोड़ा सा अच्छा फल है। मुख में आहा लेकर आए, अगर उसके मुंह में कुछ है तो शुभ माना जाता है। सुनने वालों, मुख में मांस भरे सामने आए तो सफलता होती है। सुनने वालों, किंतु बोले भी तो, अगर बिल्ली बोलती है तो शुभ माना जाता है। अगर मुंह में कुछ भी नहीं है, खाली मुख है, खाली मुख शब्द करें तो असफलता होती है। सुनने वालों, अगर बिल्ली लड़ती दिखाई दे तब भी असफलता होती है। सुनने वालों, बाईं ओर आ रही हो तो शुभ कार्य, तो अच्छा माना जाता है। घर लौटते समय दाईं ओर से दिखाई दे तो श्रेष्ठ, तो भी अच्छा माना जाता है। सुनने वालों, सोते समय ऊपर आ पड़े कि अगर कोई सो रहा है तो किसी ने घर में बिल्ली रखी हुई है तो वो अशुभ माना जाता है। सुनने वालों, वो मृत्यु का कारक होता है, कारण होता है। किसी के पाँव सूंघे, अगर बिल्ली किसी के पाँव सूंघती है तो स्वास्थ्य खराब और वो रोगी हो जाता है। और माथे को चाटे किसी के तो पत्नी विरोध, तो पत्नी से झगड़ा हो जाता है। सुनने वालों, किसी स्त्री के हृदय को चाटे तो पुत्र को अनिष्ट कारण, तो पुत्र को हानि पहुंचती है। सुनने वालों, किसी स्त्री के पाँव को चाटे तो अहित कारक, तो वो भी अशुभ होता है। सुनने वालों, घर में आकर शीघ्र चली जाए कि घर का चक्कर लगा के फिर बाहर चली जाए तो रोग और शत्रु का नाश हो जाता है। सुनने वालों,

ये है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो सुनने वालों, आपका अपना फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो जो आप हर समय सुनते हो। अब हम एक गाने की ओर बढ़ेंगे सुनने वालों।

मस्तक को थोड़ा झुका कर देखिए, अभिमान मर जाएगा। आँखों को थोड़ा भिगा कर देखिए, पत्थर देर पिघल जाएगा। दांतों को आराम देकर देखिए, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। जीवा पर विराम लगा कर देखिए, कलेश का कारवां गुजर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटा कर देखिए, खुशियों का संसार नज़र आएगा। सुनने वालों, अगर हम ये थोड़ी सी चीज़ें करके देखें तो कुछ ना कुछ सुधार अवश्य होगा।

जीवन में परेशानियाँ चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और बड़ी हो जाती हैं, खामोश होने से काफ़ी कम हो जाती हैं, सब्र करने से ख़त्म हो जाती हैं और परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती हैं। सुनने वालों, जीवन में परेशानियाँ तो सबकी होती हैं, चाहे जितनी भी हो, अगर हम चिंता करेंगे तो वो और बढ़ जाती हैं, कम नहीं होती, और खामोश होने से थोड़ी कम हो जाती हैं। अगर हम खामोश रहेंगे तो थोड़ी सी कम हो जाएंगी, सब्र करने से ख़त्म हो जाती हैं। अगर हम भगवान का शुक्र करेंगे कि परेशानी आई है तो भगवान ही दूर करेंगे तो उससे थोड़ी ख़त्म हो जाएगी, और परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती हैं। सुनने वालों, हमें हर समय परमात्मा का, भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए।

किसी अवसर की प्रतीक्षा में बैठना व्यर्थ है। आज का दिन जो किस्मत से हमें मिला है, यही अवसर है, इसे जाया ना करें। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि वो खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। कठिन रास्तों से कभी घबराना नहीं चाहिए। कठिन रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिल तक लेकर जाते हैं, ऑक्सीजन हो या मनुष्य के विचार। एक बार स्तर नीचे आ जाता है तो जोखिम बढ़ जाती है। मन के अनुकूल हो तो हरि कृपा और मन के विपरीत हो तो हरि इच्छा। जिसने इस तत्व को धारण कर लिया उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। देर मैंने ही लगाई है तुझे पहचानने में मेरे ईश्वर, वरना तूने जो दिया उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। जैसे जैसे मैं सिर झुकाता गया वैसे वैसे तू मुझे उठाता चला गया।

नीचे झुककर किसी को ऊपर उठाना इससे अच्छा व्यायाम दिल के लिए कोई और नहीं। सुनने वालों, मैं आप सबसे यही आशा करती हूँ कि जो मैंने आप सबको बातें बताई उसमें से कुछ ना कुछ आपने अवश्य लाभ उठाएंगे। और ये सब मैं स्वप्न विज्ञान से खोज खोज कर लाती हूँ। तो आशा करती हूँ अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगे तो कमेंट देना। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा।

क्रटुंडा महाकाया सूर्यकोठी संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्व कार्यशु सर्वदा। रुद्ररू मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा, अथ शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसीलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है और हम सब यहाँ से कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश लेकर आपके साथ जुड़ गए हैं, जो होलंद डेनहाग शहर से ब्रॉडकास्ट किया जाता है। हमारे साथ शांता खेमई जी भी है और बबली आसरा जी भी है, और अभी दूर से सही पर भारत से हमारे मास्टर जी राजेंद्र सिंह जी भी जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। तो दोस्तों, हम पहले बबली आसरा की ओर बढ़ेंगे, फिर शांता खेमई अपना एंट्री लेते हैं।

की खूबसूरती कहीं से भी मिले चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

हाँ सुनने वालों, अभी आपने सुने संजय जी और संजय से बात, आप सुने बबली जी की और मेरी है, मैं तो शांता जी हूँ। तो शुरुआत करने से पहले और आगे बढ़ने से पहले ये ज़रूर कहूँगी कि कदम कदम चाहे छोटे हो या बड़े, मंजिल को पाने के लिए बस चलते रहना वो ज़रूरी है। स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी राम राम।

0: सुनने वालों, हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेंद्र सिंह जी, जो भारत देश से, और हम हमारे साथ जो कार्यक्रम में और सहयोग देते हैं। तो राजेंद्र जी, आप अपना एंट्री लीजिए और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
1: यहाँ पे सब लोग खुशी से हैं, सबको दिक्कत नहीं है। तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी श्रोताओं को हम सब लोग का भारत से हार्दिक शुभकामना और अभिनंदन। आज जो हमारा विषय रहेगा वो बहुत ही बढ़िया विषय रहने वाला है, जो कि नया विषय है। और उस विषय के जो बारे में बातचीत रहेगी, वो जो विषय है बहुत जबरदस्त विषय है। एक तो जौ जो होते हैं, जौ यानी बार्ली, उसका पानी पीने से क्या फायदा होता है। और दूसरा जो बात करेंगे, बातचीत रखेंगे हम लोग, वो ये रखेंगे भक्ति और विश्वास। भक्ति और विश्वास में क्या अंतर है, किस प्रकार भक्ति होती है, कैसे उसका विश्वास होता है, यही सब चीज की बातचीत रहेगी।
0: राजेंद्र जी, आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है। और किशुन सिंह जी भी भारत से ये कार्यक्रम को सुन रहे, जो हर बार दनहाक का संदेश लेकर और कार्यक्रम में सहयोग देते हैं। तो आप सभी को हार्दिक से स्वागत करते हुए हम उस ओर बढ़ेंगे। तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डड़े। राजेंद्र जी, पहले वही गीत चलाते हैं, फिर हम सभी जो इस कार्यक्रम जो और बनाया जाता है, और ख़ास करके 188 देशों तलक इस कार्यक्रम को भी सुना जा सकता है। आज का संदेश, जैसे कि अभी आपने विषय रखी चुके हैं, तो हम पहले वही गीत की ओर बढ़ेंगे और सभी के साथ जुड़ जाएंगे।
1: जरूर।

0: सुनने वालों, यहाँ तक जो कार्यक्रम में ये सुंदर सा गीत रखा गया हरिओम सरन से, हम सब जो उन्हीं के गाया हुआ गीत जो हम सब हर बार ये कार्यक्रम में रखते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारत से और राजेंद्र सिंह जी, जो अभी हम सब के लिए अपने ओर से संदेश रखने वाले। तो राजेंद्र जी, ज़रा आप अपना संदेश हम सब को लिए और रखिए।
1: हाँ, जैसा कि हमने बात करी थी कि आज बातचीत करेंगे भक्ति और विश्वास के बारे में, इसी के बातचीत रहेगी। भक्ति क्या है, विश्वास क्या है, इसी को समझते हैं। तो भक्ति है समर्पण का नाम और भक्ति विश्वास का नाम है। भक्ति समर्पण का भी नाम है और भक्ति विश्वास का भी नाम है। भक्ति सदगुरु के प्रति श्रद्धा का नाम है। जो जैसे कि कोई सदगुरु है उसकी प्रति जो श्रद्धा रखते हैं उसका नाम भी भक्ति है। जब जीवन में प्रेम एवं विश्वास का समावेश होता है तभी भक्ति संभव होती है। जो जीवन है हमारा उसमें प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जब दोनों चीज हो जाती है तब भक्ति का जन्म होता है। माता सबरी को प्रभु श्री राम ने नवदा भक्ति का सार समझाया एवं पूरी जानकारी दी, तभी वो भक्ति पथ पर दृढ़ता से चल पाई। कहा भी गया है, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोई। यानी एक दोहे में समझाया है कि कोई एक सूरमा भक्ति करे और जाति जो वर्ण है उसमें खो जाए। यानी भक्ति सभी के हिस्से में नहीं आती। सदगुरु की जब अपार कृपा होती है तभी भक्ति मिलती है। सदगुरु मतलब जो गुरु रहता है उसकी जब महान कृपा होती है तब भक्ति होती है। इतिहास साक्षी है कि माता सबरी को भक्ति का दान मतंग ऋषि से मिला था, जिनकी उन्होंने खूब सेवा की थी। सबरी की बात आप जानते होंगे कि सबरी जो है जंगल में रहती थी, उसकी बहुत लंबी कहानी है सबरी की। कि जब सबरी की शादी हुई थी तो पहले क्या करते थे कि लड़की को देखा देते कि ना करते थे और केवल बातचीत करे आते थे। लेकिन जब वो उसकी शादी हुई और उसके घूंघट ओढ़ के आ रही थी और जंगल से उसका पति और वो जा रहे थे, तो एक जगह पे क्या हुआ कि उनका घूंघट उड़ा और पति ने उसका मुख देख लिया। जैसे देख लिया तो एकदम डर गया, इतनी वो अच्छी सूरत नहीं थी, तो उसने छोड़ दिया उसको। तो वही जंगल से वो जाके ऋषियों के साथ वहाँ आश्रम में रहने लग गई। तो ऋषि केवल वो दिन में साफ सफाई करती थी और भगवान की भक्ति करती। तो ऋषि जब ऋषि चले गए तो ऋषि ने बोला कि तुम्हारी जो भक्ति है, इस भक्ति के एक दिन भगवान राम तुम्हें स्वयं यहाँ मिलेंगे। तो उनको अपने जो गुरु थे मतंग ऋषि, उन पे पूरा विश्वास था कि अगर गुरु जी ने ऐसा बोला है तो जरूर मिलेंगे। तो उन्हीं का वो प्रेम है भक्ति का। कुटिया को सुबह शाम साफ सुथरा करती, फूलों की माला गूंथती, मीठे फल लाती और श्री राम जी के आने की वाट जोती। यानी वो रोज ये सोचती कि आज भगवान आएंगे, राम आएंगे, कल आएंगे, आ जाएंगे, कल आएंगे। ऐसे रोज जो फूल लाके कुटिया साफ करके सजाती कि भगवान आएंगे दिखाएंगे।
0: राजेंद्र जी, सुंदर सा नखमा के बाद हम सब फिर ये जो वृतांत आप हम सब के लिए रख रहे हैं उसे आगे सुनेंगे। तो शांता जी जो पनेल के पीछे बैठे हुए हैं और वो एक प्लेयर पे एक सुंदर सा गीत रख चुके हैं।

0: सुनने वालों, ये सुंदर सा गीत जो निकाला गया रामायण में, ये गीत को चलाया गया था माँ शबरी के अंतर्गत और गीत रखा गया प्लेयर पे। हमारे साथ जुड़े हुए भारत से राजेंद्र जी, और राजेंद्र जी आगे का संदेश आप ले चलिए।
1: हाँ, जैसे कि बातचीत चल रही थी कि रोज जो कुटिया साफ करती थी और गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा थी, गुरु ने कहा था कि एक दिन भगवान राम स्वयं इस कुटिया में आएंगे, तो श्री राम जी सबरी की कुटिया में एक दिन आए और अति सही प्रेम में सबरी के जूठे बेर भी खाए। प्रभु श्री राम भक्तों के मन की पीड़ा को समझते हैं, उनकी भक्ति को समझते हैं। राजमहल में रहने वाली मीराबाई ने भक्ति के रस में डूबकर राजमहल का मोह त्याग दिया और गुरु रविदास जी के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की दात पाकर बिना जग की प्रभा के गाने लगी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जो राजमहल में मीराबाई रहती थी वो इतनी भक्ति के प्रेम में डूब गई कि उन्होंने बोला कि जो मैंने क्या पाया, राम रतन धन पाया। और किसकी कृपा हुई? सदगुरु की कृपा हुई। इसलिए गुरु की जो भक्ति है, गुरु के प्रति जो भक्ति है, उसकी जब कृपा होती है तो वही आगे जाके काम आता है। मीराबाई ने भक्ति के मार्ग पर चलकर समाज को नई सीख दी कि संसार की धन दौलत से बढ़कर भक्ति। संपूर्ण अवतार वाणी में भी लिखा है, प्यार बिना ना भक्ति हुई, बिन भक्ति नैया पार नहीं। यानी प्यार के बिना कोई भक्ति नहीं। भक्ति में जो प्रेम है उसमें विश्वास अनिवार्य, मतलब वो चाहे, भक्ति में जो प्रेम है उसके बहुत विश्वास चाहिए उसमें, तभी भक्ति आगे बढ़ती है। और भक्ति का सुहाना अवसर सदगुरु की कृपा से ही हमें सुलभ हो पाता है। सदगुरु और भक्त का रिश्ता निश्चल प्रेम पर आधारित है। जब सदगुरु और भक्त जो होता है, जो निश्चल प्रेम, यानी उसमें कोई कपट नहीं होना चाहिए, गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होना चाहिए, और तब वो भक्ति उसको शिष्य को मिल पाती है गुरु की। जब निश्चल प्रेम, मतलब उसमें कोई छल नहीं, तभी भक्ति संभव है। तो क्यों ना एक सुंदर सा नगमा की तरफ बढ़ लिया जाए, फिर आगे की बातचीत रहेगी।
0: जरूर राजेंद्र जी, एक सुंदर सा नगमा के और हम सब जरूर और बढ़ते हैं और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, हम सब अभी आपके साथ फिर दोबारा जुड़ जाएंगे।

0: वाह रे, जैसे कि शांता जी ने कार्यक्रम में और ये सुंदर सा गीत जो निकाल करके रखे अपने पिटारा से, तो राजेंद्र जी भक्ति और विश्वास इस अंतर्गत में आपने संदेश सुनाए। यहाँ बबली जी भी बैठे हुए, शांता जी भी पैनल के पीछे है, तो इसमें थोड़ा से और संदेश रख दिया जाए, क्योंकि बबली जी आपको क्या लगते हैं भक्ति और विश्वास किस प्रकार से और जैसे कि अभी संदेश में रखा गया करना चाहिए और कैसे विश्वास रखना चाहिए?
1: जब देखो विषय की तरफ हम जाएं तो भक्ति और विश्वास, भक्ति तभी हो सकती है अगर हम विश्वास से करेंगे, विश्वास है तो भक्ति होगी, अगर मन में विश्वास नहीं है तो भक्ति भी नहीं हो सकती।
0: राजेंद्र जी इसमें आपके ओर से क्या संदेश है?
2: भक्ति और विश्वास एक दूसरे के पूरक हैं। जब विश्वास होगा तब भक्ति होगी, जब भक्ति होगी तब विश्वास होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मीराबाई का और सबरी का और बहुत सारे लोगों का आता है, लेकिन जैसे हमने मीराबाई और सबरी का बताया, विश्वास बहुत बड़ा चीज होता है। कि जो गुरुजी एक बार अपने शिष्य को बोले कि मलूक दास जी के बारे में बातचीत है कि मलूक दास एक हुए हैं गुरुजी, वो एकदम कहते थे कि कुछ नहीं होता, ऐसे होता है, ये होता है, विश्वास नहीं करते थे। लेकिन एक आदमी ने बोला, गुरुजी ने बोला कि विश्वास करो। वो बोले कि अगर नहीं हम कुछ करेंगे तो खाएंगे क्या? उन्होंने बोला विश्वास करो कि खाना मिल जाएगा। तो जब उन्होंने विश्वास नहीं किया तो उनकी परीक्षा हुई और वो पेड़ में जा बैठे कि मेरे को खाना यहाँ कैसे पहुँचता है। और उसी समय चोर लोग जा रहे थे नीचे से और वो किसी का भोजन चुरा के लाए और वहाँ नीचे रख दिया। जैसे वो डाकू लोग वहाँ से आए, वो भाग गए वहाँ से। तो फिर जब डाकू लोग आए, देखे ऊपर में कोई बैठा पेड़ के ऊपर, उन्होंने पहले उसको उतारा कि तुम जो है ये खाना खाओ, ये हो सकता है इसमें जहर हो। तो जब उन्होंने जबरदस्ती उनको खाना खिलाया तब फिर वो उस दिन से मलूक दास हुए। और मलूक दास की मलूक पीठ है वृंदावन के आगे, बहुत बड़ा, आज इस समय 10,000 गाय है वहाँ पे, और उन्होंने बहुत बड़ा बनाया वहाँ पे। और विश्वास किया उस दिन से कि हाँ भक्ति में शक्ति है। और धीरे धीरे करके बहुत सारे शिष्य हुए, शिष्य बनाए अपने। अभी राजेंद्र दास जी महाराज वहाँ के शिष्य हैं, जो कि बहुत बड़े गुरु हैं। और यही भक्ति का एक दूसरे के पूरक बताया गया कि जब तक विश्वास नहीं तब तक कुछ नहीं। तो भक्तमाल एक कथा है, भक्तमाल की उन्होंने लिखी है, और वही कथा के माध्यम से बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं भक्ति के और विश्वास के।
0: राजेंद्र जी ने अपने ओर से उदाहरण के माध्यम से हम सबके लिए जो संदेश रखे सुनने वालों, और इसमें शांता जी आप भी कुछ कहने वाले हैं, जरूर हम सबको सुनाइए।
3: राजेंद्र जी एकदम भारत देश से हम लोग के यहाँ ज्ञान भी दे रहे हैं, तो बात ये सही है, अगर जब तक विश्वास नहीं है तो भक्ति नहीं होगा। आप जानोगे सोचोगे, पर आप जब विश्वास नहीं करोगे तब तक भक्ति आप कर नहीं पाओगे। और जब विश्वास करके और भक्ति आप जैसे करोगे, जैसे अभी राजेंद्र जी ने उदाहरण में दी है, तो आप एकदम आनंद में रहोगे, एकदम बेफिक्र रहोगे, उसमें इतना आनंद मिलेगा कि उसे शब्द में हम बोल नहीं सकते, उसका सिर्फ अनुभव करना पड़ता है।
0: शांता जी जैसे अभी संदेश में रखे कि उसमें आनंद को और प्राप्त करेंगे, तो आनंद प्राप्त करने के लिए तो हमारे देश में, हमारे भारत में कुछ चीज़ें हैं जो, और ऐसा ऐसा पकवान भी बनाया जाता है, और वो जो अपना अपना सीजन के माध्यम से यानी उसमें बनाया जाता है, उस अंतर्गत में आप हम सब के लिए क्या सुनाने वाले? क्योंकि मेरे ख्याल से बेल का जो एक फ्रूट होता है ना।
2: हाँ, जैसे कि बेल पत्री सूरिनाम में भी होती है और बेल का फल भी होता है। तो जो बेल का जो फल होता है, वो बेल पत्र तो 3 पत्ते का होता है, कोई एक कहीं एक 4 पत्ते का भी मिलता है हजारों में से। तो जो बेल का फल है वो बहुत ही अच्छा होता है, पेट के लिए अच्छा माना जाता है, ठंडक लाता है, पेट को ठीक करता है, खास करके पेट के लिए शीतलता देता है। शंकर जी यानी शीतल, तो उनका जो फल है वो भी तो शीतल ही होगा। तो आजकल भारत में बेल बहुत बढ़िया चल रहा है और जगह जगह बेल का जूस, हम लोग भी बेल का जूस बनाए, आज कल भी बनाए, परसों भी बनाए। तो जो बेल का जूस होता है वो गर्मी में पीना चाहिए, पेट के लिए एकदम बहुत अच्छा होता है, उसका जूस कैसे बनाया जाता है ये भी विधि समझने वाली है। बेल को लो, उसको दो भाग में तोड़ो, बीज का जो गूदा है उसको निकाल लो और फिर उसको पानी में मिक्स कर लो। अगर आपको लगे मीठा कम है तो थोड़ा चीनी मिला सकते हैं, गुड़ मिला सकते हैं, और फिर उसको मोटी छन्नी यानी सूप की छन्नी से छान लो और जितना पतला चाहिए उतना पानी मिला लो, जितना गाढ़ा चाहिए उतना कम मिलाओ। फिर जब छान लोगे तो सारे बीज और उसके जो गूदा बचा हुआ है उसमें निकल जाएगा और बेल एकदम रेडी हो जाएगा पीने के लिए। तो इसका शरबत पीने से बहुत ही अच्छा महसूस होता है गर्मी में। तो भारत में तो गर्मी की खूब भरमार है, बड़ी कृपा है गर्मी की, सूर्य भगवान की पूरी कृपा रहती है भारत में गर्मी से। तो उसके अनुसार यहाँ पे बहुत मात्रा में बेल भी होता है और लोग भी इसको पीना पसंद करते हैं।
0: जो बेल का और फ्रूट होता है उसका और शरबत बना दिए।
2: हाँ, शरबत एकदम तैयार है और पीने के लिए हम लोग उत्सुक है।
0: पीने के लिए उत्सुक है और जैसे कि आप कह रहे हैं उत्सुक है, तो हम लोगों भी यहाँ से भी उत्सुक हो रहे हैं, पर क्या हम लोगों का कभी अवसर मिलेगा ये जो शरबत आपने बनाया? क्योंकि देखिए राजेंद्र जी, पहले ऐसा होता था ना, सूरीनाम में जब जाओ कहीं पर, और जैसे कि कोई शहर से सरमक्का जाए, सरमक्का एक सेती होता है वहाँ पर, और जब सरमक्का में पहुँचो तो वहाँ कोई कोला नहीं देते थे कोई, और यानी कि जो आजकल जो शरबत प्राप्त होता है ना वो नहीं मिलता था। उस समय मिलता था, शरबत बनाया जाता था और ब्राउन शुगर से, और मेरे ख्याल से उसमें नींबू डाला जाता था ना, तो नींबू डाल करके, या कहीं कहीं एक और फ्रूट होता उसे कहते हैं सुआलैया, तो उसको गार करके और शरबत बनाया जाता था और गर्मी में दिया जाता था। और इस प्रकार से जैसे कि सूरीनाम में वो शरबत बनाया जाता था, आप लोगों वहाँ भारत में ये बेल का और जो फ्रूट होता उससे बनाते हैं। तो
2: तो बहुत सारे प्रकार का शरबत भारत में बनता है।
0: तो शांता जी, जरा इसे नई दलांस में हम सबको थोड़ा से और सुना दीजिए, ताकि हमारे सभी सुनने वालों इसके बारे में ठीक से समझ पाए।
3: बेल फ्रूट, बेल जो है तो वो जो नहीं है जो शिव भगवान के समर्पण करते हैं, ये एक फ्रूट है जो खाना चाहिए, और एक नई दलांस में नाम है स्लेम एप्पल। ये पहले बार मैं भी सुन रही हूँ, तो जाने गूगल महाराज में जल्दी से सब चीज़ मिल जाता, तो हमने यहाँ गूगल महाराज के सर्च की तब मिल गए अते स्लेम एप्पल, तो आप जानते हैं।
0: हम एक गीत की ओर बढ़ेंगे और गीत के बाद हम सब फिर आपके साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि आज का और राजेंद्र जी ऐसा जो फिल्म डॉन से निकाला गया ये गीत हम सब और प्लेयर पे रख रहे हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन जो और उस समय पे और अपना कला से प्रदर्शन दिए थे। तो शांता जी यही गीत और प्लेयर पे चला रहे हैं।

अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जा। खई के पान बना रसवा।

कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय हाय हाय, कहाँ जान फंसाई मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय, कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, अरे कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से।

कल का ताला।

सूरत मर गई हाय हाय हाय। एक मीठी कटारी हम दिल में उतर गई हाय हाय। कैसी गोरी गोरी पुटी की दिखी छोरी वामा।

किनारे वाला ओ छोरा गंगा किनारे वाला ओ खैके पहन बनाओ रत वाला खुल जाए बंद अकल का।

0: राजेंद्र जी, जैसे कि अभी ये फिल्म डॉन से निकाला गया ये सुंदर सा गीत, गीत जो शांता अपने पिटारा से भर के लाए थे और हम सब चलाए। राजेंद्र जी, जव, जैसे कि आज का विषय में आप अभी शुरुआत में कहे थे कि जव के अंतर्गत आप हम सब के लिए कुछ संदेश रखने वाले हैं, तो जरूर हम सब के उस ओर और छलांग लगाइए।
1: सब लोग जानते हैं कि नीदरलैंड्स में भी होता है और सरनाम में भी। जौ का पानी तैयार करने के लिए कुछ मात्रा में जौ ले लीजिए, यानी एक कटोरी में जौ ले लीजिए और उसे अच्छी तरह साफ कर लीजिए पहले। उसके बाद इसे करीब 4 घंटे तक पानी में भिगोकर छोड़ दीजिए। जब 4 घंटा हो जाए, इसके बाद इस पानी को 3 से 4 कप पानी मिलाकर उबाल लीजिए, पर इसे धीमी आंच पर ही उबाल लें, यानी सिम आंच करना है, गैस को सिम करना है, हल्की आंच रखनी है, उस पे उबाल। लगभग 45 मिनट के बाद गैस बंद करो और इस पानी को ठंडा होने दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे एक बोतल में भर लीजिए और दिन भर 1 से 2 गिलास पीते रहिए। जौ का पानी पीने के जो फायदे हैं, क्या क्या फायदे होता है इससे, अगर आपको यूरिन से जुड़ी कोई समस्या हो, यानी पेशाब से जुड़ी कोई समस्या हो यूरिन से, तो जौ का पानी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसके अलावा किडनी से जुड़ी ज़्यादातर समस्याएं में जौ का पानी बहुत अच्छा होता है। अगर आप वजन घटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, यानी वेट कम करना है, और लाख कोशिश के बावजूद भी आपका वजन कम नहीं हो रहा, जैसे कि हमारा मामा जी का वजन कम नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो उनको जौ का पानी पीना चाहिए। वो रामबाण साबित होगा। जौ का पानी पीने से ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए भी जौ का पानी बहुत फायदेमंद होता है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल बनता है शरीर के अंदर, नसों के अंदर जम जाता है, वो ब्लड के उसमें थक्का बन बोलते हैं, ज्यादा गाढ़ा हो जाता है वो कोलेस्ट्रॉल, जो नसों के अंदर चर्बी बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, वो भी जौ का पानी पीने से ठीक होता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल होने की वजह से दिल से जुड़ी कई तरह की समस्याएं होती है। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हार्ट अटैक आने का खतरा होता है, और ज्यादा बढ़ता तो हो ही जाता है हार्ट अटैक, तो ये ना हो इसलिए जौ का पानी पीना चाहिए। मधुमेह यानी शुगर डायबिटीज के रोगी जो होते हैं, उनके लिए जौ का पानी बहुत फायदेमंद होता है। ये शरीर में शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में बहुत सहायक होता है। जो लोगों को डायबिटीज रहता है, आजकल मैंने देखा है कि 20% लोग डायबिटीज के शिकार हो गए हैं, अभी बढ़ता जा रहा है, तो जौ का अगर पानी पिए तो वो लोग ठीक हो सकते हैं। जौ का पानी पीने से शरीर के भीतर मौजूद विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, जिससे चेहरे पर भी निखार आता है, साथ ही ये इम्यून सिस्टम को भी बेहतर बनाए रखता है। यानी अगर जौ का पानी शांता जी भी पिए तो, और सब लोग जिसको नहीं भी है ये सब चीज, तो सबको पीना चाहिए। चेहरे यानी फेस पे भी ग्लो आता है, अच्छा हो जाता है, और कोई बीमारी होती है, इम्यून सिस्टम जो होता है, मतलब जैसे कोरोना में लोगों का इम्यून सिस्टम जिसका कम था तो उसको कोरोना पकड़ा, जिसका ज्यादा था इम्यून सिस्टम अच्छा था तो उसको कोई दिक्कत नहीं आई। तो इसको बनाता अच्छा करता है जौ, उस सिस्टम को जौ बेहतर बनाता है, मतलब जैसे उससे और अच्छा कर देता है, इसलिए जौ का पानी जरूर पीना चाहिए। और इसमें विधि भी बता दी, फायदे भी बता दिए, तो मैं चाहता हूँ कि लोग इसका फायदा उठाए जौ के पानी का।
0: राजेंद्र जी ने ये संदेश रखे, क्योंकि हमारे विशेषज्ञ लोग और जा करके जो हमारे विषय को खोज करके रखते हैं, तो उसमें जरूर ऐसा बनाया जाता है ये कार्यक्रम, जो अनेकों देशों में सुना भी जाता है और जो उसमें कुछ संदेश होता है, और ये संदेश के माध्यम से हम सब भी अपने जीवन में कुछ प्रभाव ला सकते हैं। और जैसे कि राजेंद्र जी ने जो अभी कहे, तो जौ कहाँ पर और कैसे मिलता है राजेंद्र जी, या हॉलैंड में हम सब ये इंडियन शॉप आदि में ये जौ मिल जाता है? बबली जी जरा आप बताइए, क्योंकि आप हॉलैंड वासी हो, आप स्वप्न विज्ञान का और कार्यक्रम बनाते हो, और जरूर आपको कुछ ना कुछ तो जरूर होगा कि कहाँ पर जौ मिल सकता है।
2: जरूर, हॉलैंड में सब जगह जौ आजकल मिलता है। तुर्की दुकान में चले जाओ, वहाँ पर भी है, इंडियन दुकान में भी है।
0: खुला भी ले सकते हो और पैकेट में भी ले सकते हो, और हम जब जाए और कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि जौ क्या है? क्योंकि राजेंद्र जी, जौ का पहचान के बारे में हम सबको और थोड़ा सा और सुनाइए।
1: जैसे कि जौ की पहचान होती है, जैसे गेहूं होता है, गेहूं एकदम साफ होता है और जौ खुरदुरा होता है। गेहूं का जो कलर होता है वो गेहूं या रंग होता है, और जौ का कलर जो होता है वो हल्का सा भुरभुरा रहता है। तो जो दुकान में बेचने वाला है, सबसे अच्छा तो ये है कि उसको बोलो कि जौ दे दे, तो वो जो बेचता है उसको तो पता ही होता है। लेकिन जो लोग जानते हैं, जैसे भारत के लोग हैं, बबली जी सब जानती है, तो उनके माध्यम से भी लोग समझ सकते हैं कि जौ कैसा है। जब आप जाएंगे इस बार तो बबली जी को लेके जाना और वो दिला देंगे अगली बार, आपको स्वयं पता हो जाएगा। लेकिन जो सुनने वाले लोग हैं वो जो जानते हैं वो तो ले लेंगे, लेकिन जो नहीं जानते वो दुकान वाले को पूछेंगे कि हमें भाई 1 किलो जौ दे दो और 1 कटोरी जौ को भिगा के 4 कटोरी पानी डाल के 4 घंटे पहले भिगाया, इसके बाद 45 मिनट उबाला, 1 बोतल पानी डाल के फिर उस बोतल को दिन में 4 बार पिया, इस प्रकार से इसका सदुपयोग कर सकते हैं।
0: राजेंद्र जी, जरूर आप जैसे कि संदेश में रखते हैं कि अब जाइए दुकान में और कह दो कि जौ दे दो मुझे, तो दुकानदार कहेंगे कि जौ क्या होता है? क्योंकि ऐसा मेरा साथ हुआ एक बार ना शांता जी। अच्छा। ऐसा हुआ कुछ 20 साल पहले, मैं एक बार किसी ने हमें कहा जाइए और पनीर ले आना, तो हमने गया पनीर की खोज में, और पनीर खोजते खोजते और एक दुकान से दूसरे दुकान, दूसरे दुकान से तीसरे दुकान, और मैं और हर बार जहाँ जहाँ मैंने गया और पूछ रहा था कि पनीर मिलेगा, तो वो हमसे पूछ रहे वो क्या है, कैसा चीज़ है। तो बहुत खोजने के बाद एक पहले एक सूरीनामी दुकान था और वहाँ पर गया, तो वो हमें और प्रश्न किया हमसे कि क्योंकि वो सूरीनाम का था और पनीर शब्द शायद उस समय 20 साल पहले तो यहाँ उतना नहीं प्रयोग होता था, तो हमें फिर भी वहाँ पर जा कर के बड़ा मुश्किल से पूरा हॉलंत मैंने छान माला और तभी जा कर के और प्राप्त किया। तो ऐसा है कि यहाँ भी हम दुकान में पहुँच जाएंगे और कहेंगे कि हमें जौ दे दो, तो शायद वही हाल ना हो जाए शांता जी।
3: जो नवरात्र में जो हम उगाते हैं माता के लिए, वो है, वो जौ है।
0: राजेंद्र जी, जैसे कि शांता जी ने ये संदेश रखे कि जौ क्या है, और बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि जौ जो नवरात्रि हमारे आते हैं ना, नवरात्रि जब आता है तो हम खेतरी करते हैं और उसी से और उसी को जौ कहा जाता है। हम न्यूज़ और कमर्शियल की ओर बढ़ेंगे, और न्यूज़ और कमर्शियल के बाद हम सब फिर आपके साथ जुड़ जाएंगे।

0: सुनने वालों, जैसे कि अभी आपने सुने और न्यूज़ और कमर्शियल के बाद हम सब फिर आपके साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी जो भारत से हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, तो राजेंद्र जी संदेशों में संदेश आज और क्या रखने वाले आप?
1: संदेशों में संदेश आज बातचीत करते हैं आत्मा नए शरीर में कैसे जाती है। जो आत्मा होती है, जैसे ये शरीर है और शरीर के अंदर अगर आत्मा नहीं है तो हम लोग मर गए, डेड। तो जैसे ये आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है वो कैसे जाती है, इस विषय में गरुड़ और भगवान विष्णु ने प्रश्न किया। गरुड़ कौन है? भगवान विष्णु के वाहन है, वाहन यानी भगवान विष्णु के गरुड़। तो उन्होंने भगवान विष्णु से प्रश्न किया कि मृत्यु के बाद आत्मा कैसे शरीर के बाहर जाती है, कौन प्रेत का शरीर प्राप्त करता है, क्या भगवान के भक्त प्रेत योनि में प्रवेश करते हैं। तीन प्रश्न किया। तो भगवान विष्णु ने गरुड़ को उत्तर दिया। गरुड़ पुराण में देख सकते हैं, जैसे हमारे मामा जी भी गरुड़ पुराण बोलते थे वहां, तो मृत्यु के बाद आत्मा निम्न मार्गों से शरीर के बाहर जाती है। आंख से, नाक, त्वचा यानी स्किन, और स्थिर रंध्रों से, मतलब जो सूक्ष्म ग्रंथि होती है उनसे। तो ज्ञानियों का आत्मा मस्तिष्क के ऊपर सिरे से बाहर, जो ज्ञानी लोग हैं उनका जो मस्तिष्क है उनकी आत्मा कहां से जाती, ऊपर निकलती है, सिर से निकलती है। पापियों का आत्मा उसके गुदा द्वार से, यानी गुदा द्वार जो होता है वहां से निकलता है। ऐसा पाया गया है कि कई लोग मृत्यु के समय मल त्याग करते हैं या आत्मा को शरीर से बाहर निकलने का मार्ग है। जो पापी लोग हैं उनका मल द्वार से जाती है। शरीर को त्यागने के बाद सूक्ष्म शरीर घर के अंदर कई दिनों तक रहता है। सूक्ष्म शरीर जो होता है वो घर के अंदर कई दिन तक रहता है जब शरीर त्याग दिया जाता है। अग्नि में 3 दिनों तक, जो अग्नि है उसमें 3 दिन तक रहती है, और घर में स्थित जल में 3 दिन तक, जो घर में जल है उसमें भी 3 दिन तक। जब मृत व्यक्ति का पुत्र 10 दिनों तक मृत व्यक्ति के लिए उचित वैदिक अनुष्ठान करता है, तब मृत व्यक्ति की आत्मा को 10वें दिन एक अल्पकालिक शरीर दिया जाता है जो अंगूठे का आकार का होता है। इस अल्पकालिक मतलब कम समय के लिए शरीर के रूप में आत्मा 10वें दिन यमलोक के लिए प्रस्थान करता है। 3 दिनों के बाद अर्थात 13वें दिन यह यमलोक पहुंचता है। यमलोक में 13वां दिन यानी 13वीं जब करते हैं उसके बीच में जो कार्यक्रम होते हैं वो आत्मा की शांति के लिए होते हैं। यमलोक में चित्रगुप्त जीव के सभी कर्मों का लेखा यमराज को प्रस्तुत करते हैं। उसके आधार पर यमराज जीव के लिए स्वर्गलोक या नरकलोक जाता तय करते हैं। यमराज है वह निर्णय होता है कि इस आदमी ने अच्छे कार्य किए कि खराब कार्य किए। अगर अच्छे काम किए तो स्वर्गलोक भेजता है और गलत कार्य किए तो नरकलोक जाना पड़ता है। जीव अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरकलोक में रहता है। अगर अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो नरकलोक में जाएंगे, और फिर उसके बाद वह पृथ्वी पर पुनः एक नए शरीर के रूप में जन्म ले लेता है। प्रेत योनि में कौन सा जन्म लेता है? कुछ मनुष्य जो कुछ विशेष प्रकार के कर्म करते हैं वे यमराज द्वारा वापस पृथ्वी पर प्रेत योनि में भेजे जाते हैं, जिसमें वे एक निश्चय समय तक रहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के है, निम्न प्रकार के हैं कर्म करने वाले लोग प्रेत योनि में को कैसे प्राप्त करते हैं। क्यों ना हम एक सुंदर सा नगमा की ओर बढ़े और इसके बाद जो कर्म हैं इस प्रकार से आते हैं वो रहते हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे।
0: कहते हैं इसे कि बहुत महत्वपूर्ण बात जो हम सबको आप सुनाए, और जरूर एक गीत के बाद हम सब फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और जो संदेश आप रख रहे हैं। तो शांता जी जो पैनल के पीछे बैठे हुए हैं स्टूडियो में, और शांता जी जो प्लेयर पे रख चुके हैं एक सुंदर सा और गीत, तो हम अभी सभी उनके साथ आपके साथ जुड़ जाएंगे।